107.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी की एफएम प्रसारण सेवा का ये लखनऊ केंद्र है। आज ज्येष्ठ मास की तीसरी तिथि शक संवत 1948 तदनुसार 24 मई 2026 दिन रविवार प्रातः के 5:55 हुए हैं और अब हमारी सभा आरंभ होती है।

मन की चंचलता में संसार है और मन की स्थिरता में परमात्मा। परमात्मा की आराधना भक्ति संगीत की साधना। कार्यक्रम पुष्पांजलि।

नमस्कार, सुप्रभात। भोर की पहली किरण जब मंदिर की घंटियों से टकराती है तो मन खुद ब खुद उस असीम शक्ति की ओर खिंचा चला जाता है। नमस्कार, मैं हूं स्वेच्छा और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पुष्पांजलि, जहां सुरों की खुशबू है और श्रद्धा के फूल। तो आइए अगले कुछ पलों के लिए खो जाते हैं भक्ति के इस पावन सागर में।

किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत उनके नाम के बिना अधूरी है। जो विघ्न हरता है और बुद्धि के सागर भी। तो आइए इस वचन के माध्यम से सुमरण करें, नमन करें रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान श्री गणेश जी को।

आइए इस भजन के माध्यम से सुमिरन करें, नमन करें रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान श्री गणेश जी को।

शिव जी की महिमा शब्दों में समा जाए ये आसान नहीं, लेकिन भक्ति जब दिल से निकले तो हर पंक्ति उनकी मौजूदगी का एहसास करा देती है।

तरफ अनंत वैराग्य और दूसरी तरफ अटूट शक्ति। शिव और शक्ति का मिलन ही इस सृष्टि का आधार है। जहां महादेव का मौन है, वहीं महापार्वती की ममता और दृढ़ता। चलिए चलते हैं उस पावन पर्वत की ओर जहां गूंजता है ओम नमः शिवाय का स्वर।

हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और माता सीता का नाम लेते हैं तो याद आता है त्याग, धैर्य और अटूट विश्वास। एक ऐसा रिश्ता जिसने युगों युगों को जीवन जीने की कला सिखाई।

राम जी की बात हो और हम हनुमान जी की बात ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। इतना पावन महीना हनुमान जी को समर्पित ज्येष्ठ मास चल रहा है, तो ऐसे ही एक और बड़ी ही सुंदर कथा हनुमान जी से संबंधित। हनुमान जी हमें विश्वास जीतना सिखाते हैं। कैसे, हम बताते हैं। हनुमान जी को अपनी शक्तियों के बारे में बस अभी अभी पता ही चला था जब वो समुद्र लांग कर लंका गए थे। काफी उत्पात मचाया और लंका भी जलाई। फिर अशोक वाटिका जाकर उन्होंने माता सीता से कहा कि आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए, मैं आपको लिए चलता हूँ प्रभु श्री राम जी के पास, इससे आप दोनों की पीड़ा समाप्त हो जाएगी। मैं इतना शक्तिशाली हूँ कि रावण समेत पूरी लंका को ले जा सकता हूँ। माता सीता ने पहले तो कुछ बहाने बनाए कि अगर मैं जाऊंगी तुम्हारे साथ तो हो सकता है मैं पानी में गिर जाऊं, या तुम राक्षसों का वध करोगे या मेरा संरक्षण करोगे। फिर जब हनुमान जी नहीं माने तो माता सीता ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, इससे प्रभु श्री राम जी का शौर्य अधूरा रह जाएगा और फिर मैं किसी पर पुरुष को छू भी तो नहीं सकती। अक्सर ऐसे समय पर जो साधारण हम जैसे मनुष्य होते हैं उनका अहम जो है वो बीच में आ जाता है, उनको अपनी शक्तियों पर घमंड हो जाता है और लगता है कि सामने वाला हमें समझ नहीं रहा। पर जब हनुमान जी ने ये बात सुनी तो उन्होंने कहा, आप सही कह रही हैं, आपको ले जाते हुए अगर कोई क्षति पहुंच गई तो प्रभु श्री राम जी का कार्य अधूरा रह जाएगा। और हनुमान जी ये भी समझ गए कि वो पर्वत तो उठा सकते हैं पर किसी के चरित्र का भार नहीं उठा सकते, किसी धर्म का भार नहीं उठा सकते। और ये भी कहा कि मैंने आपको ले जाने का सुझाव सिर्फ प्रेम और वात्सल्य के कारण किया था, इसके पीछे और कोई मंशा नहीं है। और ऐसे हनुमान जी ने सच कहकर अपने भोलेपन से माता सीता का विश्वास जीत लिया। साथ ही उन्होंने माता सीता की जो सीमाएं हैं उनका आदर करते हुए अपनी बात जब कही तो माता सीता को उन पर विश्वास हो गया और उन्होंने इस प्रसंग के बाद हनुमान जी को अपनी चूड़ामणि उतार कर दी और साथ ही में कौवे वाली कहानी भी कह बताई, जिससे श्री राम जी को ये विश्वास हो जाए कि हनुमान जी उन्हीं से मिले थे। और इसी के साथ कहते हैं ना कि विश्वास कभी मांगा नहीं जाता, उसे जीता जाता है। और इससे जीतने का सबसे आसान तरीका होता है सच बोलकर और सामने वाले की सीमाओं की रिस्पेक्ट कर आदर करके सम्मान करके, क्योंकि आपकी ताकत आपको नायक बना सकती है पर महावीर आप तब बनते हैं जब आप सामने वाले की सीमा की आदर करते हैं, उसका सम्मान करते हैं।

बिना कृष्ण के राधा रानी अधूरी हैं और बिना राधा जी के कान्हा का नाम पूरा नहीं होता। ये प्रेम नहीं बल्कि आत्मा का परमात्मा से मिलन है, जहां बांसुरी की धुन और निस्वार्थ समर्पण की पराकाष्ठा है।

नारी का रूप ममता की मूरत और दुष्टों के लिए साक्षात्कार, यही तो है मां शक्ति। जब संसार में अंधकार बढ़ता है तब भक्ति की ज्योति और मां की शक्ति ही हमें मार्ग दिखाती है। आइए नमन करते हैं उस जगत जननी को जिसकी जिनकी कृपा से ये सृष्टि गतिमान है। 6:56 का वक्त और पुष्पांजलि, कार्यक्रम पुष्पांजलि को यहीं पर समाप्त करने का वक्त भी हो गया है। इसी प्यारे से भजन के साथ आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

यू आर लिस्निंग 102.2 FM रेनबो कानपुर। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। सुबह की ताजी हवा के साथ कुछ ब्यूटीफुल सॉन्ग्स और न्यूज़पेपर की सुर्खियों के साथ अतीत के आईने से लेकर देश और दुनिया की ताजा खबरें अब नहीं रहेंगी आपसे दूर, क्योंकि प्रोग्राम शुरू हो रहा है। गुड मॉर्निंग कानपुर। आज गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम में मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो दोस्त आशीष।

102.2 FM रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग कानपुर। आइए अब आपको बताते चलें आज हमारे

सुबह 8:30 पर सुनिएगा कुछ पुराने नगमे, प्रोग्राम होगा सुरों की पुरानी महफिल। बाहर प्रोग्राम लेकर आएंगे सुबह 9 बजे से। सुबह 9:45 पर सुनिएगा कुछ पॉप सॉन्ग्स, प्रोग्राम होगा पॉप टाइम। सुबह 11 बजे से लेकर आएंगे आपका पसंदीदा प्रोग्राम हम नवाज, जिसे आज आप सुनेंगे ऋतु और आशीष के साथ। दिन में 3 बजे से होगा प्रोग्राम म्यूजिक आवर और शाम 4 बजे से सुनना ना भूलिएगा प्रोग्राम हेलो कानपुर। अभी आप सुन रहे थे आज हमारे केंद्र से दिन भर प्रसारित होने वाले प्रोग्राम्स की जानकारी। 102.2 FM रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप, प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग कानपुर।

दोस्तों जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो सब कुछ पॉजिटिव ही होता है और आपकी पॉजिटिविटी को डबल करने के लिए हम रोज लाते हैं मॉर्निंग मंत्रा। और आज के मॉर्निंग मंत्रा में हम लाए हैं आध्यात्मिक धर्म गुरु दलाई लामा का संदेश। दलाई लामा का कहना है कि अगर हम दूसरों को बदलने की बजाय खुद को बदलें तो दुनिया अपने आप बेहतर हो जाती है। हर दिन हमें खुद को बदलने का अवसर है और यही सच्ची प्रगति है।

दोस्तों, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर बहुत ही अच्छा मैसेज शेयर किया है। उन्होंने लिखा है कि वैश्विक चुनौतियों के दौर में ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता और संसाधनों का संतुलित उपयोग हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। हम संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का संकल्प लें तो मजबूत भविष्य की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा। 102.2 FM रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग कानपुर।

दोस्तों, अतीत के आईने में नजर डाले तो आज की तारीख है बहुत ही इंपॉर्टेंट। आज की तारीख यानी 24 मई 1931 को अमेरिका के बाल्टिमोर ओहियो मार्ग पर पहली बार एसी यात्री ट्रेन चलाई गई थी। 24 मई 1959 को आधिकारिक रूप से साम्राज्य दिवस का नाम बदलकर राष्ट्रमंडल दिवस किया गया था। 24 मई 1896 को अपने देश के प्रसिद्ध क्रांतिकारी करतार सिंह सराभा का जन्म हुआ था। और 24 मई 1954 को माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल का जन्म हुआ था। तो दोस्तों, अतीत के आईने से निकलकर अब हम आ जाते हैं वर्तमान में, और वर्तमान में प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग कानपुर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सुनो सुनो सुनो,

0: गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
4: रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप, प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग कानपुर। मैं हूं आपके साथ आरजे आशीष और इस समय टाइम हुआ है सुबह के 7:32 और 10 सेकेंड्स। आज है 24 मई सन 2026, दिन है संडे का, और जो लोग अभी अभी सोकर उठे हैं उनको भी गुड मॉर्निंग है जी।

गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम में अब बात करते हैं देश और दुनिया की खबरों की। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कल यानी शनिवार को भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। विशेष रूप से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों पर विचार विमर्श किया गया। सिखों के तीर्थ श्री हेमकुंड साहिब के कपाट कल यानी शनिवार को प्रातः 9 बजे से पूरे विधि विधान से खोल दिए गए। नेपाली फिल्म एलिफेंट्स इन द फॉग ने कान फिल्म महोत्सव में इतिहास रचते हुए अनसर्टेन रिगार्ड श्रेणी का जूरी पुरस्कार जीत लिया है। ये पहली नेपाली फिल्म है जिसे दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म महोत्सव में ये सम्मान मिला है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में सेवारत भारतीय शांति रक्षक मेजर अभिलाषा बड़क को मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है।

दोस्तों गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम में अब बढ़ते हैं अपने कानपुर महानगर की कुछ खबरों की तरफ। CSJMU यानी छत्रपति साहूजी महाराज यूनिवर्सिटी से संबद्ध कानपुर नगर देहात उन्नाव फरुखाबाद कन्नौज और औरैया में स्थित महाविद्यालयों में ग्रीष्मावकाश यानी कि गर्मी की छुट्टियां 20 मई से 5 जुलाई तक रहेंगी। संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली की ओर से जिले में पहली बार आज यानी संडे को 16 केंद्रों पर सिविल सर्विसेज की प्री परीक्षा 2026 कराई जाएगी। पहला पेपर सुबह 9:30 से 11:30 तक होगा और दूसरा पेपर दोपहर 2:30 से शाम 4:30 तक किया जाएगा। दोस्तों प्रतिस्पर्धा के दौर में सही करियर चयन की चुनौती से जूझ रहे छात्र छात्राओं के लिए छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय 1 जून से 10 दिवसीय करियर एवं पेरेंट काउंसलिंग कैंप आयोजित करेगा।

स्पेशल ओलंपिक भारत उत्तर प्रदेश की ओर से 25 मई से कैंट स्थित प्रेरणा स्पेशल स्कूल में समर कैंप का आयोजन किया जाएगा। कैंप के जरिए स्पेशल बच्चों को फुटबॉल, क्रिकेट, हैंडबॉल, एथलेटिक्स, स्केटिंग और एक्वा पूल की गतिविधियां कराई जाएंगी। 102.2 FM रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग कानपुर।

दोस्तों खेल जगत से जुड़ी खबरों की बात करें तो राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता में कल यानी शनिवार को भारतीय एथलेटिक्स के लिए ऐतिहासिक दिन रहा। पंजाब के गुरविंदर सिंह ने पुरुषों की 100 मीटर दौड़ 10.09 सेकेंड में पूरी करके एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया। और आईपीएल के कल के मैच में पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। और आज के मैचों की बात करें तो आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जाएगा और दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के साथ खेला जाएगा। 102.2 FM रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग कानपुर।

दोस्तों गुड मॉर्निंग कानपुर। प्रोग्राम में मौसम से जुड़ी खबर की बात करें तो जैसा कि आपने कल देखा ही होगा कि तेज धूप की तपिश के बीच 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली लू ने सड़क पर निकले लोगों को झुलसा डाला। लोग धूप और गर्मी से बचने के लिए छांव और ठंडी जगह तलाशते दिखे। उत्तरी पाकिस्तान से आए पश्चिमी विक्षोभ का असर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी हिस्से में कल यानी शनिवार को दिखा, जिससे हल्के बादलों की आवाजाही रही लेकिन तापमान में कोई राहत नहीं मिली। और चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर एवं भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार जो अधिकतम तापमान था वो 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और आगामी 5 दिनों में आसमान साफ रहने के कारण वर्षा की कोई संभावना नहीं है और हीट वेव का प्रकोप

जो है ना वो 28 मई तक जारी रहने के आसार हैं। तो ऐसे में अपना और अपनों का खास ख्याल रखें, और क्या क्या आपको करना है और क्या क्या आपको नहीं करना है वो सब आपको पता है कि पानी की बोतल आपको ले करके चलना है अगर आपको कहीं बाहर जाना है और बहुत ज़रूरी हो तभी आप बाहर निकलें, और गमछा चश्मा वगैरह ले लें। फिलहाल घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम को अब यहीं पर वाइंड अप करना चाहिए, तो मुझे यानी अजय आशीष को दीजिए इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे देश और दुनिया की ताजा खबरें समाचारों के साथ। तो बने रहिए 102.2 FM रेनबो कानपुर के साथ।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के लवली निगम।

0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना जुलाई से लागू होगी। स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र विशेष जांच दल ने नाशिक TCS दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी, होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तरी, मध्य और पूर्वी भारत में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की। और गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे।
1: क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को होगी। बैठक में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड की परिकल्पना के अनुरूप प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में क्वाड की वर्तमान पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों तथा आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई और बातचीत तथा कूटनीति के जरिए संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील को दोहराया। विदेश मंत्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर अमरीकी दृष्टिकोण साझा किया। उन्होंने भारत को अमरीका का अत्यंत महत्वपूर्ण साझेदार बताया। इस बीच श्री रूबियो ने कहा है कि अमरीका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में अमरीकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमरीका में $20 अरब का निवेश किया है।
2: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थी को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर के संबंध में अगले महीने सहमति पत्र पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलीपुरद्वार, कालिम्पोंग और दक्षिण दिनाजपुर जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने और उत्तर बंगाल के लिए एक नए एम्स के प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजा गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना के साथ साथ स्वास्थ्य विशेषज्ञों, चिकित्सा पेशेवरों का प्रशिक्षण भी बहुत महत्वपूर्ण है। वे कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान बोर्ड के 23वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वस्थ भारत की परिकल्पना विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में प्रमुख भूमिका निभाएगी।
1: हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत बनाना है। जब हम 2047 तक विकसित भारत की बात करते हैं तो स्वास्थ्य

0: और स्वस्थ भारत एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जब हम स्वस्थ होंगे तभी सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
1: सर्टेनली विल बी एबल टू गेट द सक्सेस।
2: सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के तहत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जून तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। एक रिपोर्ट।
3: विकसित भारत जी रामजी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी

0: के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जून तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। एक रिपोर्ट।
1: विकसित भारत जीराम जी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल 4 आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ अतर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में अगले कुछ दिन में 7-8 अन्य आरोपियों के खिलाफ अतिरिक्त आरोप पत्र दाखिल होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल से बातचीत के बाद ईरान के साथ एक समझौते पर काफी हद तक सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि समझौते में होर्मुज जल डमरू मध्य खोलना भी शामिल है। एक रिपोर्ट।
4: श्री ट्रंप ने कहा कि समझौते के अंतिम पहलुओं और विवरणों पर चर्चा जारी है, शीघ्र ही इसकी घोषणा की जाएगी, लेकिन उन्होंने समझौते की समय सीमा के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि समझौते के बारे में इजरायल के साथ सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन से बात की गई है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने अमरीकियों पर विरोधाभासी बयान देने का आरोप लगाया। अमेरिका और ईरान के बीच 8 अप्रैल को युद्ध विराम पर सहमति बनी थी और तब से दीर्घकालिक शांति समझौते के लिए बातचीत जारी है। अमेरिका द्वारा ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी के कारण ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद कर दिया है। समझौते को लेकर मुख्य रुकावटें ईरान के परमाणु कार्यक्रम के भविष्य और होर्मुज जल डमरू मध्य पर उसके प्रभाव तथा क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति से संबंधित रही है। समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा।
0: अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी की घटना हुई है। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेर कर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इस बीच सीक्रेट सर्विस ने घटना स्थल के पास ही एक संदिग्ध व्यक्ति को गोली मार दी। इस दौरान एक नागरिक भी गोली लगने से घायल हो गया। घटना के समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा, टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ के कुछ क्षेत्रों में आज भीषण लू चलने की आशंका व्यक्त की है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों में भी ऐसा ही मौसम रहेगा। गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने 10.09 सेकंड के नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ ये उपलब्धि हासिल की। गुरविंदर का पिछला कीर्तिमान 10.17 सेकंड था। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है।

0: निमेश कुजूर ने 10.20 सेकंड के साथ रजत पदक जीता। प्रणव प्रमोद को 10.29 सेकंड के साथ कांस्य पदक मिला। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। यह मैच दोपहर 3:30 बजे से मुंबई में खेला जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म के 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इस श्रृंखला में पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दी जाएगी। इनका प्रसारण कल और सोमवार को 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर किया जाएगा। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आज और कल सुबह 9:10 से आकाशवाणी से जुड़े रहें। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद लवली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने के दौरान ये कहना कि देश के नौजवानों को मिले ग्लोबल एक्सपोजर लोक सत्ते में है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रधानमंत्री ने कहा, युवाओं को ध्यान में रखते हुए ही हमने किए हैं अंतर्राष्ट्रीय समझौते। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के भारत दौरे को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान कहता है, मोदी से मिले रूबियो, अमरीका आने का न्योता। नवभारत टाइम्स के अनुसार, रूबियो से मिलकर पीएम बोले, बात से निकले संघर्ष का हल। रूबियो की भारत यात्रा पर दैनिक जागरण अपने संपादकीय में लिखता है कि उनके भारत दौरे की शुरुआत के बाद जिस तरह उन्होंने अपने समकक्ष से मिलने की परंपरा को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री से मुलाकात की, ये प्रतीत होना स्वाभाविक है कि वे दोनों देशों के संबंधों को प्रगाढ़ करने में विशेष महत्व दे रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह के महाप्लान स्मार्ट बोर्ड और प्रोजेक्ट पर लोकसत्ते ने संपादकीय में लिखा है कि गृहमंत्री की ये परियोजना वक्त की नजाकत को देखते हुए समीचीन है कि भारत के लिए आवश्यक भी है। अखबार के अनुसार, घुसपैठियों को रोकने के लिए हमारी सीमाएं मुस्तैद और सुरक्षित होनी जरूरी है। केंद्र सरकार का जिमखाना क्लब की जमीन 5 जून तक सरकार को सौंपने का समाचार अमर उजाला सहित सभी अखबारों में है। पंजाब केसरी के अनुसार, सरकार का कहना है कि ये भूखंड रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत और सुरक्षित करने के लिए आवश्यक है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा की आंसर सीट की स्कैन कॉपी के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दैनिक भास्कर ने विस्तार से दी है। देश का बड़ा हिस्सा भीषण लू की चपेट में, शीर्षक से जनसत्ता लिखता है, गर्म हवाओं से मस्तिष्क और आंखों पर पड़ रहा है बुरा असर। पत्र ने चिकित्सकों की सलाह को भी प्रमुखता दी है कि गंभीर सिरदर्द, चक्कर आना और बेहोशी जैसे लक्षण दिखते ही तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। राजस्थान पत्रिका ने इस वैश्विक अध्ययन को प्रमुखता से दिया है कि मुंबई विश्वविद्यालय ने दुनिया को दिए 31 अरबपति। पत्र ने इसे भारतीय सपनों की जीत बताते हुए लिखा है, दुनिया में सबसे अधिक अरबपति बनाने वाले विश्वविद्यालयों की सूची में ये 10वें नंबर पर पहुंच गया है।
0: धन्यवाद फरत। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना जुलाई से लागू होगी। स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र विशेष जांच दल ने नाशिक पीसीएस दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी, होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तरी मध्य पूर्वी भारत में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की। और गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉ एस जयशंकर टू होल्ड बायलैटरल टॉक्स विद यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो इन न्यू दिल्ली टुडे। आयुष्मान भारत स्कीम टू बी रोल्ड आउट इन वेस्ट बंगाल फ्रॉम जुलाई। Swasth Sathi beneficiaries to be included. Maharashtra SIT files charge sheet against 4 accused in Nashik TCS sexual assault and religious conversion case. US President Donald Trump says Iran deal including reopening of Strait of Hormuz largely negotiated. IMD forecasts severe heat wave conditions in some parts of northern, central and eastern India including Delhi today. And in athletics, गुरिंदरवीर सिंह विंस मेंस 100 मीटर

102.2 FM रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप। सुबह के 8:30 हो चुके हैं और हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं प्रोग्राम सुरों की पुरानी महफिल। और आज इस प्रोग्राम में मैं हूं आपके साथ आरजे आशीष। प्रोग्राम का पहला गाना आ रहा है बेमिसाल फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार राहुल देव बर्मन।

0: आवश्यक सूचना सुनिए। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले पद्म पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण के लिए भारत सरकार द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं अपने नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। नामांकन करते समय संबंधित व्यक्ति की उपलब्धियों और सेवाओं का स्पष्ट और विस्तृत विवरण सही प्रारूप में अंकित होना सुनिश्चित करें। पद्म पुरस्कारों से संबंधित नियम और विनियम padmaawards.gov.in पर देखे जा सकेंगे। एक बार फिर हम बताना चाहेंगे padmaawards.gov.in पर आप नियम और विनियम इस अवार्ड से संबंधित देख सकते हैं। नामांकन करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2026। सूचना समाप्त हुई।
1: रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम चल रहा है सुरों की पुरानी महफिल, और अब सुरों की पुरानी महफिल प्रोग्राम का अगला गाना आ रहा है असली नकली फिल्म से। आवाजें हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की, गीतकार हसरत जयपुरी और धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

सुरों की पुरानी महफिल प्रोग्राम का अगला गाना आ रहा है अमर अकबर एंथोनी फिल्म से। आवाजें हैं किशोर कुमार, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और मुकेश की। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: एक आवश्यक सूचना सुनिए। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों के लिए नामांकन आरंभ हो चुके हैं। ये पुरस्कार वीरता, खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले बच्चों को दिए जाते हैं। 5 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा जो भारतीय नागरिक है और भारत में रहता है, इन पुरस्कारों के लिए पात्र है। इस हेतु नामांकन awards.gov.in पर स्थित राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। पुरस्कारों के लिए स्व नामांकन और अनुशंसा दोनों पर विचार किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर जाएं। एक बार फिर से सुन लीजिए awards.gov.in। सूचना समाप्त हुई।
1: 102.2 FM रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम चल रहा है सुरों की पुरानी महफिल और अब आ रहा है अलग अलग फिल्म का गाना किशोर कुमार की आवाज में। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है राहुल देव बर्मन का।

इस सॉन्ग के साथ ही आज का सुरों की पुरानी महफिल प्रोग्राम अब यहीं पर समाप्त होता है। फिलहाल मैं यानी अजय आशीष आपसे मिलूंगा बस थोड़ी ही देर में रसबहार प्रोग्राम के साथ। बने रहिए 102.2 FM रेनबो कानपुर के साथ।

You are listening 102.2 FM Rainbow Kanpur. दोस्तों नमस्कार, मैं आरजे आशीष आपका स्वागत करता हूं रस बहार प्रोग्राम में। दोस्तों आज है संडे और ये संडे वाला दिन कई लोगों के लिए घर का काम निपटाने या नींद पूरी करने में ही फुर्र हो जाता है। हालांकि पूरे सप्ताह के बीच ये एक ऐसा ब्रेक है जो आपको अगले हफ्ते के लिए रीसेट होने का मौका देता है। तो आज रसबहार प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने संडे को सार्थक बनाएं। मेरी

0: दोस्तों रसबहार प्रोग्राम में आज हम बात कर रहे हैं कि हम अपने संडे को सार्थक कैसे बनाएं। वैसे सफल लोग जानते हैं कि आने वाला हफ्ता व्यस्त होने वाला है। आम तौर पर अधिकतर सफल लोग रविवार यानी संडे वाला दिन अपने परिवार और दोस्तों के साथ बिताते हैं ताकि अपनी भावनात्मक ऊर्जा को रिचार्ज कर सकें। कई सारे रिसर्च में ये बात सामने आई है कि अगर वीकेंड को थोड़ी सी प्लानिंग के साथ बिताया जाए तो उसका आनंद कई गुना बढ़ जाता है। वीकेंड सिर्फ आराम का नहीं, खुद को तरोताजा करने, खुशियां बटोरने और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का मौका होना चाहिए। फिलहाल अभी हमारे पास मौका है कि हम आपको सुनवाएं एक बढ़िया सा गाना।
1: प्राण प्रिय

0: समझ है? हाँ
1: बढ़िया।
2: वैसे दोस्तों वीकेंड हर किसी की जिंदगी में नहीं होता। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों मेहनतकश लोगों और जरूरी सेवाओं में दिन रात ड्यूटी देने वाले लाखों कर्मियों के लिए वीकेंड एक सपने जैसा होता है। उनके पास सिर्फ एक साप्ताहिक छुट्टी होती है जो अक्सर शिफ्ट बदलने या जरूरी कामों में ही निकल जाती है। ऐसे में जिन लोगों को दो दिन का वीकेंड मिल जाता है वे सचमुच बहुत सौभाग्यशाली हैं और उनको अपने वीकेंड का भरपूर सदुपयोग करना चाहिए।

0: चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: FM रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप, और इस समय प्रोग्राम चल रहा है रसबहार। आज रसबहार प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि हम अपने संडे को सार्थक कैसे बनाएं। तो दोस्तों, संडे को सार्थक बनाने के लिए कभी कभी कुछ नया काम करना भी जरूरी है, जैसे पौधे लगाना, किसी जरूरतमंद की मदद करना, किसी दोस्त या परिचित के तनाव को कम करने में सहयोग देना या कोई नई गतिविधि सीखना। अत्यधिक कामकाजी परिवारों में ये और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि वीकेंड पर बच्चों और बुजुर्गों को भरपूर समय दिया जाए, उनसे ढेर सारी बातें करना, उनकी तकलीफों को समझना और उनके साथ खेलना, ये सब फैमिली की मेंटल हेल्थ को दुरुस्त रखता है।

दोस्तों अपने संडे को खास बनाने के लिए दिन की शुरुआत थोड़े अलग अंदाज में करें, जैसे मनपसंद नाश्ता बनाएं, कुछ मिनट ध्यान करें या फिर हल्की सैर पर निकल जाएं। इससे पूरा दिन हल्का, सकारात्मक और तनाव मुक्त गुजरता है। वैसे जब हम कोई अच्छा सा गाना सुनते हैं तब भी तो तनाव मुक्त हो जाते हैं, तो फिर देर किस बात की। आपके लिए आ रहा है प्रोग्राम का ये अगला गाना। 102.2 FM रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप, प्रोग्राम चल रहा है रसबहार।

दोस्तों अब बात करते हैं बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की कि वो अपना वीकेंड किस तरह बिताते हैं। अभिनेता विकी कौशल अपना वीकेंड या तो पहाड़ों पर ट्रैकिंग करते हुए या घर पर गिटार बजाते हुए बिताते हैं। उनके लिए प्रकृति और नेचर ही सब कुछ है। वहीं सारा अली खान के वीकेंड यात्रा और रोमांच से भरे होते हैं। कैटरीना कैफ को ऑर्गेनिक गार्डनिंग का शौक है, जिसके लिए वो वीकेंड में समय निकालती हैं। दरअसल छुट्टी के दिन प्रकृति से जुड़ना भी हमें ऊर्जा से भर सकता है।

दोस्तों रसबहार प्रोग्राम में आज हम बात कर रहे हैं कि अपने संडे को सार्थक कैसे बनाएं। दोस्तों संडे वाले दिन घर या सोसाइटी में छोटे छोटे सांस्कृतिक, साहित्यिक या सामाजिक कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं और नई पीढ़ी को भी इससे जोड़ सकते हैं। कोई अच्छी किताब या लेख पढ़ें और परिवार में उसकी चर्चा करें। दोस्तों संडे को केवल ढेर सारे कामों का दिन ना बनाएं। अगर पिछले कुछ संडे सफाई या घर को व्यवस्थित करने में बीत गए हैं तो इस बार खुद पर ध्यान दें, आराम करें और अपनी पसंद के काम करें। फिलहाल हम करते हैं अपनी पसंद का काम और आपको सुनवाते हैं एक अच्छा सा प्यारा सा गाना।

इस सॉन्ग के साथ ही आज का रस बहार प्रोग्राम अब यहीं पर वाइंड अप होता है। फिलहाल मैं यानी अजय आशीष आपसे मिलूंगा बस थोड़ी ही देर में विविधा प्रोग्राम के साथ। बने रहिए 102.2 FM रेनबो कानपुर के साथ।

आशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

102.2 FM रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप। प्रस्तुत है प्रोग्राम विविधा के अंतर्गत पॉप टाइम। पॉप टाइम प्रोग्राम का पहला सॉन्ग आ रहा है शुभा मुद्गल की आवाज में।

पॉप टाइम प्रोग्राम का ये आखिरी सॉन्ग आप एंजॉय कीजिए दलेर मेहंदी की आवाज में, और मुझे यानी आज आशीष को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

प्रणाली को और अधिक सटीक, त्वरित और जन केंद्रित बनाने के निर्देश दिए हैं। कल लखनऊ में राहत एवं आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के दौरान समय पर दी गई सही सूचना अनेक लोगों का जीवन बचा सकती है, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी तंत्र को केवल तकनीकी व्यवस्था तक सीमित न रखते हुए अंतिम व्यक्ति तक प्रभावी रूप से पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने गांवों और संवेदनशील क्षेत्रों में लास्ट माइल कनेक्ट मजबूत करने, IVRS पंचायत स्तर के लाउडस्पीकर, स्थानीय FM रेडियो, मोबाइल अलर्ट तथा सोशल मीडिया का व्यापक उपयोग करने के निर्देश दिए। प्रदेश सरकार ने स्कूली शिक्षा को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने की दिशा में एक पहल की है। माध्यमिक शिक्षा विभाग, समग्र शिक्षा और नेल्को लिमिटेड ने 600 राजकीय माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अत्याधुनिक ड्रीम लैब्स की स्थापना हेतु कल एक समझौता ज्ञापित पर हस्ताक्षर किए हैं। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने कहा कि यह समझौता केवल एक परियोजना नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के युवाओं के भविष्य में निवेश है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी ने अपने संबोधन में कहा है कि यह व्यावसायिक शिक्षा को नई शिक्षा देने वाली एक पहल है। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री AK शर्मा के निर्देश पर विद्युत विभाग में कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की गई है। इस क्रम में मेरठ में पदस्थ अधिशासी अभियंता योगेश कुमार को विभागीय कार्यों में लापरवाही बरतने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वहीं गाजियाबाद में पदस्थ अधिशासी अभियंता राहुल को भी अपने कर्तव्यों के प्रति गंभीर लापरवाही पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। दो पैन कार्ड मामले में रामपुर में MP MLA सेशन कोर्ट ने कल सपा नेता आजम खां और अब्दुल्ला आजम की सजा बढ़ाने की अपील पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने आजम खां की 7 साल की सजा को बढ़ाकर अब 10 साल कर दिया है। वहीं उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की 7 साल की सजा बरकरार रखी गई है, लेकिन उनके जुर्माने में रकम को बढ़ाया गया है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 12 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज डाइट प्लान और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
4: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow।
5: धड़कन लखनऊ की।
6: और श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम पदचिन्ह आकाशवाणी के सेवानिवृत्त वरिष्ठ उद्घोषिका सुश्री महजबी जैदी से सुमोना पांडे जी की बातचीत।

0: बच्चन आकाशवाणी के का ये मासिक कार्यक्रम इस उद्देश्य से हमने शुरू किया है ताकि हम आपकी मुलाकात इस केंद्र पर कार्यरत रहे उन विभूतियों से करवाएं जिन्होंने अपने बहुमूल्य योगदान से प्रसारण के क्षेत्र में इस केंद्र को गरिमा के साथ स्थापित किया और लोगों में लोकप्रिय बनाया। तो इस केंद्र पर जिन्होंने अपने प्रसारण के कार्य को बहुत निष्ठा से किया और आज लगभग 9 दशक से ये श्रोताओं के लिए एक विश्वसनीय और सशक्त संचार का माध्यम बना हुआ है। हमारा आकाशवाणी लखनऊ इस क्षेत्र में कार्य कर रहा है संचार माध्यम में और आज हम जिनके साथ आपको रूबरू करवाएंगे उन्होंने भी आवाज की दुनिया में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। हमारे साथ हैं हमारी बहुत ही वरिष्ठ उद्घोषिका महजबी जैदी जी। जैदी जी आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद। नमस्ते आपको भी और हमारे श्रोताओं को भी।
0: जैदी जी आप एक लंबे अरसे के बाद आकाशवाणी के स्टूडियो में आई हैं, कैसा लग रहा है आपको?
1: मुझे जाहिर है कि अच्छा लग रहा है
0: जी।
1: और इसके पहले हम दूसरों

0: जी। जैदी जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद। नमस्ते आपको भी और हमारे श्रोताओं को भी।
0: जैदी जी, आप एक लंबे अरसे के बाद आकाशवाणी के स्टूडियो में आई हैं, कैसा लग रहा है आपको?
1: मुझे जाहिर है कि अच्छा लग रहा है
0: जी।
1: और इसके पहले हम दूसरों का इंटरव्यू करते थे
0: जी जी जी,
1: और आज आपने इस लायक हमको समझ लिया है।
0: जैदी जी, हमने आपके साथ भी काम किया है और हम जानते हैं आपने कितनी शिद्दत से और कितनी मेहनत से यहाँ के कार्य को किया है। आप एक उद्घोषिका रही हैं, लेकिन हम आपके सफर के बारे में जानना चाहेंगे कि आकाशवाणी से आपका संबंध कब शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ?
1: देखिए, हमारा तो इत्तेफाक ही था
0: जी।
1: इत्तेफाक ही था कि हमारी एक दोस्त ने ऑडिशन का फॉर्म लिया और अपना और हमारा दोनों का भर दिया
0: जी।
1: भरने के बाद ये हुआ कि हमें तो खबर भी नहीं थी। अब एक लेटर हमारे पास आया ऑडिशन के लिए। ऑडिशन में हम लोग हजरतगंज आए हुए थे, तो हमने उससे कहा कि चलो देखते हैं कि होता क्या है यहाँ। तो हम वहां पर जब आए तो वो खत हमारे पास नहीं थे, तो हम लोगों ने बता दिया, हम भूल गए लेटर लाना। तो खैर, उन्हीं ने हमसे कहा कि आप आइए और दे दीजिए, किस लैंग्वेज में देना है। अब हमको ये भी नहीं मालूम कि उसने क्या भरा है, उर्दू या हिंदी। तो मैंने कहा उर्दू, उसने कहा नहीं इसमें तो हिंदी है। हमने कहा दोनों
0: जी,
1: तो उनका अच्छा दे दीजिए आप। ये तो पता था कि नाटक का है
0: अच्छा,
1: लेकिन लैंग्वेज कौन सी थी उसमें, उर्दू या हिंदी थी?
0: तो ये आपकी दोस्त की वजह से आपने आकाशवाणी में समर्पण किया।
1: हाँ,
0: ये भी एक अच्छा किस्सा रहा। और ये किस सन की बात है?
1: ये मेरे ख्याल से बात होगी सन 66 की
0: जी। 1966
1: की बात होगी।
0: और आपको क्या रेडियो के बारे में कोई जानकारी थी कि कैसे?
1: नहीं, जानकारी तो हम लोग खाली बचपन में बड़े सुनते थे, जो रेडियो सिलोन जो अब श्रीलंका है वो सुनते थे। और एक आवाज जो रेडियो से हम करीब आए वो थी अमीन सयानी साहब की
0: जी।
1: बुध को आता था रात को 8 बजे, और सुना ये कि उनका जो प्रोग्राम था वो सुनने के लिए
0: रेडियो के करीब आ जाते,
1: करीब क्या, एक ही तो जुनून था कि पूरा सुने। हमें उस वक्त तक ये तो नहीं अंदाजा था, लेकिन उनका बोलने का अंदाज हमें बहुत अच्छा लगता था
0: जी। तो आपको गाने पसंद थे और आपको लाइक रेडियो की तरफ आने का जैसे आकर्षण होता है, तो वो क्या था और कैसे?
1: रेडियो में आने का हमने कभी नहीं सोचा था
0: जी जी।
1: और जहाँ जाने का सोचा था वहाँ तो हम कामयाब नहीं हो पाए।
0: अच्छा। लेकिन आपने इत्तेफाक से ये फॉर्म भरा, तो उसके बाद आपने किस केंद्र पर कार्य शुरू किया?
1: हमने जब यहाँ से एक लेटर आया कैजुअल अनाउंसर का ऑडिशन देने का, तब हमने यहाँ दिया और उसमें हम सेलेक्ट भी हो गए
0: जी।
1: और होने के बाद ये हुआ कि हम यहाँ ड्यूटीज करने लगे। उसी जमाने में आकाशवाणी गोरखपुर केंद्र खुला था, तो वहां के कई पोस्ट निकली थी, हम ड्यूटी पर ही थे यहाँ
0: जी। आप कैजुअल अनाउंसर के तौर,
1: कैजुअल अनाउंसर के, और हम पढ़ भी रहे थे यूनिवर्सिटी में, तो हम ज्यादातर या तो सवेरे की ड्यूटी करते थे और या फिर रात की करते थे।
0: अच्छा, कभी आपको उस वक्त ये परेशानी नहीं हुई क्योंकि यहाँ सुबह 5 बजे आना होता है या रात पे 11 बजे के बाद घर जाना होता है, तो कभी आपने ये नहीं सोचा कि मैं कैसे करूंगी?
1: नहीं नहीं नहीं, ऐसा था
0: माहौल में भी आपने।
1: ताज्जुब की बात ये थी कि उस वक्त पर हमारे पास अलार्म की घड़ी भी नहीं थी।
0: अच्छा।
1: और हमने वो खरीदी भी नहीं, क्योंकि हमें ये नहीं ये पता था कि हमें रेडियो में ही काम करना है। तो हम अपने आप 4 बजे जाग जाते थे।
0: अच्छा।
1: और पहुंच भी जाते थे, और अब हमारे यूनिवर्सिटी के हिसाब से मॉर्निंग या नाइट लगती थी, तो हम लोग, खैर मजा आया काम करने में, नौकरी भी ढूंढ रहे थे हम। और उसके बाद ये हुआ कि जब गोरखपुर में नया स्टेशन खुला तो कहा गया कि भाई अप्लाई कर दो, तुम भी कर दो, जो हमारे यहाँ पर सीनियर्स थे उन्होंने, हमने भी एक सादे कागज पर अप्लाई कर दिया और भर दिया।
0: किस तरह से होता था उस वक्त?
1: अरे बहुत आसान था, बहुत आसान। यहीं पर पोस्ट पता लगी और हमने एक सादे कागज पर अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद वो ऑफिस में दे दिया, और फिर उसके बाद पता चला कि हमारा कुछ महीनों बाद इंटरव्यू हो रहा है यहीं पर
0: लखनऊ।
1: और इत्तेफाक देखिए कि जब इंटरव्यू हो रहा था जब भी हम ड्यूटी पर थे।
0: अच्छा।
1: मतलब खासकर जाने की जरूरत नहीं पड़ी हमें। तो खैर, उसके बाद ये हुआ कि हम आए यहाँ पर, तो जो उस वक्त गोरखपुर के स्टेशन डायरेक्टर थे गुरटू साहब
0: जी,
1: वो आए थे ऑडिशन लेने के लिए। वो पहले लखनऊ में ASD भी रह चुके थे
0: जी।
1: तो यहाँ आने के बाद उन्होंने जब बुलाया तो वो थे और एक महिला उनके साथ थी
0: जी। मैं इसी मजेदार किस्से के बारे में आपसे पूछना चाहती हूँ।

0: इंटरव्यू के दौरान,
1: इंटरव्यू के दौरान
0: इसके बारे में बताइए हमारे श्रोताओं
1: को। वो तो अब हम जब आए तो उन्होंने हमसे पूछा कि हॉबीज क्या हैं, और जैसे कि सवाल पूछे जाते हैं उन्होंने पूछे, उसके बाद हमने बता दिया कि गाने सुनना, पुराने गाने और रीडिंग। तो उन्होंने कहा कि आपने शिवानी को पढ़ा है? तो हमने कहा कि जी हाँ पढ़ा है। तो उन्होंने पूछा आपको कैसी लगती हैं? तो मैंने कहा कि देखिए, एक तो उनकी भाषा बहुत श्रृंगारिक है, और दूसरी बात यह है कि उनकी अगर आप 3-4 नॉवेलें पढ़ें तो आपको लगेगा कि रिपीट कर रही हैं। वो खामोश हो गए। उसके बाद उन्होंने कोई सवाल ही नहीं पूछा
0: जी।
1: और हमको इशारा किया, हम चले गए बाहर। पता लगा कि वो जो महिला बैठी थी वो खुद शिवानी जी थी।
0: और उन्होंने आपसे खास तौर पे यही बात पूछी और आपने बेबाक होके बताया।
1: हमने बताया, और हाँ। मुझे लगता है कि गोटू साहब ने इसीलिए हमसे दूसरा सवाल नहीं किया कि शायद उनके सामने हम कुछ और ना बोलने।
0: जी जी।
1: लेकिन ताज्जुब की बात ये हुई, आप खैर बड़े पहले लोगों के दिल बड़े होते थे
0: जी।
1: और वो जो होता है कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात वाली बात थी। तो पता चला कि भाई हमारा हो गया सिलेक्शन, जबकि हम तो काफी ना उम्मीद हो गए थे
0: जी। तो वाकई में ये बड़े लोगों का बड़प्पन होता
1: हाँ,
0: है
1: बड़प्पन।
0: और उस वक्त उन्होंने इस बात को दरकिनार कर दिया कि हमारी किताब के बारे में बात हो रही है। ये उन्होंने जरूर जाना कि आप पढ़ने में इंटरेस्टेड रहती है और
1: हाँ,
0: आप में
1: हाँ,
0: गुण है, तो ये बहुत अच्छी बात है।
1: मतलब उन्होंने हमको एज क्रिटिक लिया
0: जी।
1: उनको ये लगा कि जो भी है किताब पढ़ी है उसके बारे में सोचा भी है
0: जी। बिल्कुल सही बात है, और आपने अपने सही उद्गार उन तक पहुंचाए। और हमें लगता है कि कभी कभी ये भी जरूरी होता है कि हम वो पक्ष भी जानें जो लोगों को ना भी पसंद आ रहे हो।
1: हाँ।
0: और जारी जी, हम लोग बात करेंगे आगे भी, हमारा कार्यक्रम चल रहा है पश्चिम आकाशवाणी के, लेकिन एक गीत हम अपने श्रोताओं को आपकी पसंद का सुनवाना चाहते हैं। तो कौन सा गीत आप सुनाना चाहती हैं?
1: अब अगर सुनवाना चाहती हैं आप, हम तो पुराने ही गीत बताएंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल बताइए,
1: क्योंकि हम तो बचपन में भी वो गाने सुनते थे जो पुराने होते थे। पुराने से मतलब ये है कि हमारी पिछली पीढ़ी के।
0: जी, तो आपके पसंदीदा कलाकार?
1: तलत महमूद।
0: तलत महमूद का गाना आप सुनना चाहती, तो आज हम आपको उनका एक गाना सुना।
1: हाँ, तलत महमूद का एक गाना है बेवफा का।
0: तो आइए सुनते हैं ये गीत आपकी पसंद का, और हम आगे आपसे बात करते हैं।

0: पश्चिम आकाशवाणी के कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ उद्घोषिका जैदी जी। जैदी जी, आपको हमने देखा है कार्य करते हुए और आप जो कार्यक्रम करती थी बहुत ही निष्ठा के साथ करती थी, तो आपको किस तरह से ये प्रेरणा मिली या कौन आपकी प्रेरणा रही है या रहे हैं जिनसे आपने ये कार्य यहाँ के सीखे और आपने अपने कार्यक्रम को किया?
1: देखिए, कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनू के आसार और कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं।
0: क्या बात।
1: हुआ ये कि हमको पुराने गानों में दिलचस्पी थी
0: जी,
1: और दिलचस्पी भी इस हद तक थी कि 7:30 बजे बचपन में पुराने गाने आया करते थे रेडियो सिलोन से
0: जी,
1: तो वो हम कान लगा के सुनते थे और उसमें आखिरी गाना आता था स्वर्गीय कुंदन लाल सहगल का, हमेशा ट्रिब्यूट के तौर पे आता था वो
0: जी,
1: तो वो हम जरूर सुनते थे। मतलब जब से सुनना शुरू किए तो पुराने ही, हालांकि वो 10-12 ही साल पुराने होंगे उस वक्त।
0: तो आपको पुराने गाने पसंद है लेकिन आपको पढ़ने का भी शौक है, और आपके ये उद्घोषिका होने के सफर में आपने बताया कि बहुत सारे आपने कार्यक्रम प्रस्तुत किए, तो उन कार्यक्रमों के बारे में कुछ हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: हमने पहला काम तो रेडियो में आने के बाद ये किया कि हर गाना हर रेडियो स्टेशन की लाइब्रेरी में नहीं होता है, तो हमने जितने भी रिकॉर्ड थे लाइब्रेरी में 78 RPM LP EP
0: ये पहले तो वो रिकॉर्ड्स होते थे जो बस
1: रिकॉर्ड्स 78 के होते थे, फिर LP आ गए, फिर EP आ गए, तो हमने अपना रजिस्टर्स बनाए।
0: अच्छा।
1: और उसमें जितने रिकॉर्ड थे सब की कॉपी की, उसमें प्रोडक्शन, सिंगर और उसके साथ साथ उनके सामने लिख दिया, मतलब होली, दिवाली, ईद,
0: यानी वो रजिस्टर आपने तब से मेंटेन कर रखा
1: है? आज भी है हमारे पास,
0: क्या बात है। और आपके पास वाकई एक संग्रह है।
1: हाँ, उससे एक फायदा तो ये होता था कि जो रिकॉर्ड हम शेड्यूल करते थे वो नहीं मिलते थे, ऐसा नहीं था, मिल जाया करते थे। और दूसरी बात ये थी कि हमें पता लग जाता था एक ही जगह से, तो अब कौन सा है, मैं लोक संगीत देश है तो उसके आगे ये सब लिखा होता था, कव्वाली है, गजल है, भजन है, रामनवमी पे है, जन्माष्टमी पे है, मतलब
0: ढूंढने में आसानी,
1: ढूंढने में नहीं है उसे, अरे जन्माष्टमी में तो हमने
0: शेड्यूल करने में
1: शेड्यूल इस तरह किया, जैसे जन्म हुआ कृष्ण जी का, मोरा नन्हा कन्हैया घर आया री, है ना, अब ये शुरू हुआ, उसके बाद हमने धीरे धीरे उनको पड़ा किया, एक दूसरा गाना बजाया, अंगना में उजियारा, मेरी गोदी में नंदलाला,
0: क्या बात,
1: अब बड़े और हो गए तो मटके पे मटका, खाली नहीं जाता निशाना नटखट का।
0: क्या बात है। अजारी जी, बाकी में आपको एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है और आज भी आप इतने विस्तार से, इतने अच्छे से बता रही हैं कि आपको ये सारी चीजें अभी भी इतने अच्छे से याद है।
1: और इसी तरह हमने फिर आखिर में जाके जो गाना बजाया है वो फिर राधा और कृष्ण का था।
0: क्या बात है।
1: तो बड़ा कर दिया, मतलब जन्म हुआ और जन्म के बाद उनका राधा के साथ आखिरी गाना था
0: जी। तो यानी कि अगर कोई भी कार्यक्रम आप लोग प्रस्तुत करते थे उन जमाने में और आज भी करना भी चाहिए, आप लोग पूरी उसका ग्राउंड वर्क करते थे, पूरी तैयारी करते थे और गाने किस तरह से आने चाहिए, कैसे आना चाहिए, वो सारी चीजें आप लोग बहुत सोच विचार कर कार्यक्रम प्रस्तुत करते थे। इसके अलावा आपने बहुत सारे नरेशंस भी किए, कोई ऐसी घटना आपको याद है जो आपको लगता है कि हाँ इसको हम हमारे श्रोताओं के साथ हम शेयर कर सकते हैं?
1: नरेशंस वगैरह तो किए, लेकिन हमें एक जो हमारा कैजुअल अनाउंसर जब हम थे तब एक हमने लाइव बेगम अख्तर को ब्रॉडकास्ट किया था, हम स्टूडियो में थे, वो लाइव गा रही थी।
0: अच्छा, तो कैसा लगा आपको उस वक्त? आपको
1: अरे भाई ऐसा लग रहा था कि वो गा क्या रही हैं, मतलब कोई एफर्ट नहीं, कोई कोशिश नहीं, मुस्कुरा भी रही हैं,
0: बेगम अख्तर जी गा रही हैं और आप सामने देख रहे हैं।
1: अरे
0: क्या
1: भाई बता रहे हैं आपके वो एक हाथ से, और देख के मुस्कुरा भी रही हैं, रिस्पॉन्स हमें भी दे रही हैं, और मुंह में पान है
0: जी,
1: और एक हाथ से हारमोनियम बजा रही हैं।
0: क्या बात।
1: और हमें आज तक ये नहीं भूलेगा कि हमने ऐसा लगता था कि जैसे मतलब गाना कितना आसान है,
0: ये नायाब जो नायाब समय था वो उस वक्त का,
1: अरे क्या
0: वो आप लोगों ने देखा है, हम लोगों ने तो नहीं देखा, लेकिन लाइव प्रसारण के दौरान कई चुनौतियां भी आती,
1: चुनौतियां नहीं, हमें तो इतना एक्साइटमेंट था कि हम कर पाएंगे इनका या नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो आई इतने मुस्कुराते हुए, कंधे पर हाथ रख के अंदर जगी स्टूडियो में, हम बूथ में थे, तो लगा ही नहीं बिल्कुल कि ये बेगम अख्तर कोई इतनी बड़ी कलाकार है।
0: बात।
1: उसके बाद बिस्मिल्ला खान साहब की जहाँ पर रिकॉर्डिंग देखी हमने, काफी लोगों की रिकॉर्डिंग देखी। और ये था कि सबसे मजेदार बात एक ही हुई कि जब ऑडिशन उसमें लाइव होता था तो एक बार पता नहीं क्या गलत फहमी हो गई कि जो नाम कलाकार का था
0: जी।
1: वो तो बदल गया लेकिन वो क्यू शीट में नहीं बदला था।
0: अच्छा, क्यू शीट यानी कि
1: जिससे अनाउंसर जो है वो अनाउंसमेंट करता है
0: जी।
1: उसमें नहीं बदला था। अब सोचिए आप उस आदमी का क्या हाल होगा कि जिसने सबसे कहा आज हम 12 बजे हमारा गाना सुनना और नाम किसी और का जा रहा है, गा वो रहा है
0: और लाइव हो रहा
1: है तो वो कह भी नहीं सकता,
0: कह भी नहीं सकते जी।
1: तो वो मुझको उस बेचारे को देख के इतना बुरा लग रहा था, ये तो मुझे बाद में पता लगा कि नाम बदल गया है और उस बेचारे को क्या तकलीफ में गाना पड़ा
0: जी।
1: ये भी
0: तो कभी कभी ऐसे
1: होता है
0: जी, ऐसे वारदातें भी होती
1: हैं।
0: जी जी, तो आपका पसंदीदा कार्यक्रम कौन सा था जिसको करने में आपको बहुत आनंद आता?
1: देखिए हमें पसंदीदा हमारा जो प्रोग्राम था एक था बारादरी।
0: बारादरी क्या होता था?
1: एक हमारे एसडी आए थे स्वर्गीय के नैयर
0: जी,
1: उन्हीं ने शुरू किए थे कई नए प्रोग्राम जिसमें एक बारादरी था और वो हम लोगों को अपने रोजाना के जो तजुर्बे थे उनके साथ उनके हिसाब से देना होता था। मैं मिसाल के तौर पर बता रही हूँ कि एक बार मैंने जो प्रोग्राम दिया था वो पूरा उसमें बीच में गाने भी बजाना थे। उसमें ये था कि जब हम ट्रेन में बैठे होते हैं और बाहर लोग पीटते हैं दरवाजा तब क्या होते हैं, फीलिंग्स क्या होती हैं, और जब ट्रेन में बैठ जाते हैं और दूसरे दरवाजा पीटते हैं तब फीलिंग्स क्या होती हैं, एकदम बदल जाती हैं। क्योंकि जब हम खुद पीट रहे होते हैं तो हमें लगता है इनमें इंसानियत नहीं है, खोल नहीं रहे, ट्रेन चल देगी, लेकिन जब हम अंदर चले जाते हैं तो हमें लगता है और भीड़ बढ़ जाएगी, क्यों आ गए। मतलब इंसान की सोच जो है वो कितने सेकंड्स में बदलती है। मैंने इस तरह के थे इंसिडेंट्स के जिसमें आप दावा नहीं कर सकते कि आप हर सिचुएशन में यही सोचेंगे
0: जी,
1: तो उस तरह के प्रोग्राम उसमें दिए थे हम लोगों ने।
0: तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी।
1: देखिए मेहनत क्या, एहसास तो होना चाहिए आदमी को ना, अपनी कमी का भी होना चाहिए कि जब हम इस सिचुएशन में होते हैं तो हम भी वही करते हैं जो दूसरा करता है,
0: यानी कि रोजमर्रा की
1: रोजमर्रा
0: जिंदगी में जो अनुभव होते रहते हैं उनको लोगों के सामने ला लो ताकि वो समझ सके कि हाँ क्या डिफरेंस हो सकता
1: है
0: जब आप इस पार रहते हैं या
1: इस पार या उस पार
0: जी। तो ये तो बहुत ही पॉपुलर प्रोग्राम रहा होगा और लोग
1: हम अकेले नहीं, एक एक संडे बटा हुआ था
0: तो
1: सभी लोग करते थे इसको। सभी लोग करते।
0: तो जैदी जी, हम आपके सफर के बारे में बात कर रहे थे तो आपने कहा कि आपने गोरखपुर से शुरू किया एक परमानेंट जॉब जो तो उसके बारे में कुछ बताइए यार, लखनऊ में कब कैसे आना हुआ?
1: लखनऊ में ये हुआ कि गोरखपुर में हमने जब ज्वाइन किया था उसके बाद
0: अब रहती लखनऊ में,
1: लखनऊ में ही लखनऊ में वहां पर हमने ज्वाइन किया गोरखपुर में। तो वहां पर 15 दिन के बाद हम जब ऑफिस गए तो जो स्टेशन डायरेक्टर थे उन्हीं ने बताया हमको कि आपके लिए एक बुरी खबर है। तो हम बहुत डर गए क्योंकि उस वक्त घर से पहली बार बाहर गए थे तो लगा था पता नहीं क्या हो गया हादसा था। पता चला कि कोई ऑब्जेक्शन लग गया, वो इंटरव्यू नल एंड वॉइड हो गया।
0: अच्छा।
1: और हम इतने खुश हुए
0: जी
1: कि 10 बजे ये बात हुई और 12:30 बजे की ट्रेन लेके हम लखनऊ आ गए।
0: अच्छा, मतलब जो आपने अनाउंसमेंट का एग्जाम दिया था वो कैंसिल हो गया।
1: वो 15 दिन की नौकरी करने के बाद वो इंटरव्यू नल एंड वॉइड हो गया।
0: अच्छा।
1: और जो हमारे साथ लौटे थे लोग वो बहुत नाराज हो रहे थे। मैंने कहा जब मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ ऐसा ही कुछ होता है तो वो कहने लगे आपको हमारी साथ देना था।
0: तो आप लखनऊ वापस आ गए?
1: हम वापस आ गए, अपने ऑफिस आ गए। यहाँ तो कैजुअल अनाउंसर, हमारे पॉकेट मनी निकल रहा था आराम से।
0: तो आप इस बात से खुश थे कि चलो हमें वापस
1: लखनऊ आ गए।
0: फिर लखनऊ में किस तरह से आपने शुरुआत?
1: उसमें फिर लखनऊ में हम आ गए, ऑफिस आए, यहाँ बताया, इन लोगों को पहले से मालूम था तो लिहाजा हम यहाँ पर करने लगे। उस जमाने में 14 दिन का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता था।
0: अच्छा।
1: तो 14 दिन एक हम थे और नूर बख्श जो दूरदर्शन में थे वो थे और एक

0: नीना श्रीवास्तव थी
1: जी
0: और मधु श्रीवास्तव थी। फिर ये हुआ बाद में कि वो लोग तो यही हो गई परमानेंट, और हमें फिर दोबारा इंटरव्यू हुआ और गोरखपुर में ज्वाइन कर लिया। वहाँ 3.25 साल हम रहे।
1: अच्छा, उसके बाद फिर आप लखनऊ?
0: उसके बाद फिर लखनऊ, यहाँ पर एक साहब थे वो जो हमसे म्यूचुअल करना चाहते थे, तो वो अनाउंसर थे, तो उन्हीं ने फिर हमसे म्यूचुअल कर लिया, तो हम लखनऊ पहुंच गए
1: जी। तो जैदी जी, हम आपसे बातों का सिलसिला आगे जारी रखेंगे और श्रोताओं को एक और आपकी पसंद का गीत सुनवाना चाहेंगे, क्योंकि आपकी पसंद हम लोगों को बहुत पसंद आती है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे श्रोता भी उसका आनंद ले।
0: एक गाना जो है वो मन्ना डे और लता मंगेशकर का सुनना चाहेंगे।
1: जी जी, कौन सा?
0: और वो है नैन मिले चैन का।
1: क्या बात है,
0: बसंत बहार का।

0: देखिए आपको अभी तक पिक्चर याद है जिन्होंने गाया ये याद है, तो हम लोग उस वक्त आपके साथ जब हम काम करते थे तो हमें ये पता होता था कि अगर हमें कोई चीज पूछनी है तो हम आपसे पूछ लें क्योंकि आप सारी जानकारी आज तक भी आपने याद रखी है।
1: नहीं अभी क्योंकि दिलचस्पी थी
0: जी,
1: हम क्योंकि अब जब अपना पूरा कैटलॉग हमने तैयार कर लिया जो कि आज भी हमारे पास है।
0: बिल्कुल, यही डेडिकेशन होता है और इसी के साथ अगर आप कार्यक्रम करते हैं तो कार्यक्रम भी बहुत अच्छा होता है। और देखिए जैदी जी, हम आपके बारे में बात कर रहे हैं, हम जानना चाहते हैं उस वक्त श्रोता पत्रों के माध्यम से आपको बताते थे कि हमें ये कार्यक्रम पसंद है या ये कार्यक्रम पसंद है, आजकल मेल का जमाना आ गया है, लेकिन जब श्रोता के पत्र आते थे तो कैसा आप लोगों का रिएक्शन होता था, कैसे आप लोग उसको अपने कार्यक्रम में शामिल करते थे और श्रोताओं से किस तरह से आपका संपर्क रहता?
1: भाई संपर्क ये होता था कि हम लेटर्स जो थे वो अल्फाबेटिकली अलग कर लेते थे। वजह क्या थी, एक गाना अगर एक बार बज रहा है पता लगे कि उस गाने पर 10 लोगों ने 10 बार खत भेजा है, तो हम वो 10ों खत उसी में एक में निपटाते थे कि ये ना हो फिर वही। और उसके लिए हम खाली वक्त में बैठ के और सॉर्टिंग करते थे खतों की,
0: पत्रों की।
1: हाँ, ए से निकाला पहले, बी से फिर निकाल लिया किसी पर्टिकुलर फिल्म या गाने का। अब उसके बाद ये होता था कि जितने थे खत वो उस एक दफा में सिमट जाते।

0: थे और इतने तादाद में पत्र आते थे कि उनको कार्यक्रम में शामिल करना भी एक बड़ा काम होता था। कई बार श्रोता मिलने भी चले आते थे क्योंकि उनको अच्छा लगता था कि उस वक्त की जो पर्सनालिटी होती थी, जो भी अनाउंसर बोल रहा है वही मतलब चेहरा होता था आकाशवाणी का। कभी आपके साथ ऐसा?
1: नहीं, फोन कभी कभार आए
0: जी।
1: और एक फोन मुझे बहुत आज भी मुझे याद है कि जब हम गोरखपुर में थे तो गोंडा में एक लड़की थी जो सुनती थी, उसके बाद हम वहां से ट्रांसफर होके जब आए तो उस लड़की का फोन आया ड्यूटी रूम में और उसका नाम था सबा। उसने कहा कि हम बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे, गोरखपुर से आप नहीं बोल रही थी, आज लखनऊ से आपकी आवाज सुनाई दी, तो हमने आपको फोन किया। मुझे बहुत अच्छा लगा
0: जी।
1: मुझे लगा कि ठीक है, इसका मतलब कामयाब है।
0: बिल्कुल, और वाकई श्रोता बहुत प्यार करते हैं और हमेशा जुड़ने की कोशिश करते हैं। तो क्या आपको कभी किसी कॉन्सर्ट का कोई अनुभव है? जैसे कॉन्सर्ट बहुत पहले होते थे, पहले
1: अरे
0: बहुत
1: नहीं, हम कॉन्सर्ट बहुत नर्वस हो जाते थे करने में। हमने किए हैं, ऐसा नहीं है, कंफर्टेबल नहीं थे उसमें, तो हम अमूमन मना कर देते थे और लोग भाई इस बात का लिहाज करते थे कि हम नहीं करना चाह रहे हैं। तो हाँ, बाकी तो पीर फकीर भिश्ती जितने काम थे, पता चला हमें कर दिया गया, कमर्शियल स्पॉट की डबिंग में लगा दिया गया। अच्छा भाई, अब ये हुआ कि हफ्ते में दो दिन वो भी कर रहे हैं। उसके बाद पता चला न्यूज शुरू हुई उर्दू की, उसमें लगा दिया गया।
0: तो आपने उर्दू न्यूज भी पढ़ी है?
1: हाँ हाँ
0: जी,
1: वो पढ़ी है। और फिर उर्दू सेक्शन में कोई नहीं रहा, वहां लगा दिया गया। तो अब वहां पर भी मतलब मजबूत न्यू कर लीजिए तो दिक्कत नहीं होती है ज्यादा काम में।
0: और कार्यक्रम आपने बहुत सारे यहाँ पे प्रस्तुत किए हैं, एज अनाउंसर भी और एज प्रोड्यूसर भी। तो जैसे उर्दू कार्यक्रम के बारे में बात आपने कही, तो कुछ ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात हुई होगी जिन्होंने आपका बहुत प्रभाव डाला, कुछ उनके बारे में बताएं या कोई ऐसी घटना?
1: सभी यहाँ पर जो लोग आते थे सब एक से एक काबिल, वो आए आपके जो हुमर वाला बंकवी साहब थे वो आए, उसके अलावा मुजफ्फर अली को इंटरव्यू किया, बहुत लोग आए
0: जी।
1: और ये था लेखक भी थे, शायर भी थे, और विशेषर प्रदीप जो राइटर थे उनको किया। और एक प्रोग्राम हमने जो हमारे साथ थे अब्बासी साहब, हम दोनों ने मिल करके ये चलाया था कि उनको ये शिकायत है।
0: अच्छा, ये सीरीज चलाई थी आपने?
1: हाँ हाँ, ये चलाई थी और इसका मकसद था कि वो लोग जो कि बहुत मशहूर हैं, अब मशहूर हैं लेकिन घर में वो बिल्कुल वैसे ही लड़ते हैं या बहस करते हैं जैसे कोई आम हस्बैंड वाइफ हो, चाहे जितने इंटेलेक्चुअल हो, चाहे जितनी बड़ी पोस्ट पे हो, चाहे जितने रिफाइंड हो। तो वो हमारा प्रोग्राम लोगों को काफी पसंद आया था। और उसमें तो ये हुआ था कि विशेषर प्रदीप साहब एक थे, उसके उर्दू के बहुत अच्छे राइटर, तो कहानीकार थे वो, उन्हीं ने तो जब आए तो मुझसे कहा कि आपने मुझको मेरी बीवी को नहीं बुलाया इसमें अभी तक। मैंने कहा आइंदा आप भी आइए। तो उसमें लोग जो थे वो हमेशा जवाब, नहीं नहीं हमारी में सब ठीक है ठीक है। उसके बाद मैंने
0: जब बात होती थी तो हाँ,
1: विनोद चटर्जी साहब, उनकी वाइफ सहाना चटर्जी थी, विलायत जाफरी साहब, उनकी वाइफ, शुरू में सब अरे नहीं हम लोगों में कभी कोई बहस नहीं होती। फिर उसके बाद जब बात
0: निकलती
1: थी तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा उकसाया गया, तो आखिर में ये होता था कि एक ने कहा इनके साथ फिल्म जाने में हमेशा अंधेरे में टटोलते हुए जाना पड़ता है।
0: यानी कि बड़ा ही रोचक हस्बैंड,
1: हाँ हस्बैंड ये कहेंगे। वाइफ कहती थी आपको तो कुछ करना नहीं रहता है, हमें पूरा घर बंद करना रहता है। तो वो बहुत अच्छा वो था, मजा आता था बात करने में उसमें।
0: अब एक और गीत जैदी जी हम अपने श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे, तो ये गाना हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं आपकी पसंद।
1: हाँ

0: दर्शन भिक्षा दे दो मोह दर्शन भिक्षा दे दो आ दो
1: मनोहर मोहन गिरधर हरिओ मुरली मनोहर मोहन गिरधर हरिओ।

0: जैदी जी, अनाउंसर की ड्यूटी बहुत टफ होती है, क्योंकि चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, आपको समय से पहुंचना है, सुबह 5 बजे पहुंचना है या रात में देर तक रुकना है। तो कभी आपको कोई ऐसी मुश्किल का सामना करना पड़ा कि आपको ड्यूटी में पहुंचना है और कुछ ऐसी बात हो गई कि?
1: ऐसा बताएं आपको कि यहाँ पर बहुत बार ऐसा हुआ है कि सवेरे की ड्यूटी में कोहरा बहुत होता था और कई लोगों को लेना होता था ड्राइवर को
0: जी।
1: हम 5 बजे से पहले स्पॉट पे आ जाते थे, लेकिन हम गाड़ी का इंतजार 5:05 तक ही करते थे, क्योंकि अगर देर हो गई तो हम मार्जिन ये रखते थे कि हम पैदल भी पहुंच जाए।
0: क्या बात है।
1: और हम पैदल पहुंचे हैं, कर्फ्यू में पैदल आए हैं।
0: अच्छा। हाँ, तो ये डेडिकेशन है, कार्य के प्रति लगन होती है और वाकई ये हम लोगों के लिए, सबके लिए प्रेरणादायी बात है कि कितना हम सोचते हैं कि हम अब समय से पहुंचे, अपने कार्य के प्रति हमेशा हम लगन से काम करें। एक होता है ना कि सिंसियरिटी जिसे हम कहते हैं।
1: देखिए, जो भी जिम्मेदारी हो, जैसी भी है, उसके लिए आपको ईमानदार होना पड़ेगा। एक दफा हमारे थे कर्फ्यू लगा हुआ था तो रास्ते में एक सिपाही हमें रोज देखता था, उसकी ड्यूटी लगी हुई थी। उसने मुझसे कहा कर्फ्यू लगा है। मैंने कहा आप यहाँ क्यों खड़े हैं? कहने ड्यूटी कर रहे हैं। हमने कहा हम ड्यूटी पे जा रहे हैं। तो उसके बाद ये हुआ कि वो इतना बेचारा वो हो गया कि मतलब फिर उसने टोकना बंद कर दिया। हमने कहा भाई आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हम अपनी ड्यूटी पे जा रहे हैं बस।
0: बिल्कुल। और ये भी एसेंशियल सर्विसेज में आता है, आकाशवाणी का काम तो हमें पहुंचना ही है।
1: पहुंचना ही है।
0: रेडियो कभी बंद नहीं होता तो उसमें तो आना ही है। तो हमारा जो आकाशवाणी है वो 90 वर्ष मना रहा है इस वर्ष, और अभी अभी हमने कुछ दिनों पहले आकाशवाणी लखनऊ का 89वां वर्षगांठ मनाई। तो उसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि अपने आकाशवाणी के कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों में जागरूकता और चेतना पहुंचाएं। तो आपको क्या लगता है, क्या रोल है आकाशवाणी लखनऊ का और क्या परिवर्तन आप देखती हैं हमारे कार्यक्रम में जिसके माध्यम से हम लोगों तक जुड़े, या आप क्या सजेशन देना चाहेंगे?
1: देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं पहले की, यहाँ पर जितने लोग थे जो हमसे सीनियर थे उनको हमने देखा, उनको मालूम हुआ कि एक साहब थे यहाँ बहुत अच्छा गाने वालों में, मुजद्दद नियाज़ी साहब
0: जी,
1: देखा वो पंजाबी में फर्राटे से बात कर रहे हैं किसी से फोन पे। और मैंने कहा अच्छा। उसके बाद पता लगा यज्ञदेव पंडित साहब ने हमसे एक उर्दू की किताब मांगी पढ़ने के लिए।
0: यानी कि लोगों में एक जज्बा था कि हम और सीखें और सीखें।
1: अरे तो यही मैं बता रही हूँ कि आप फिल्म इंडस्ट्री में लोगों को देखिए कि वो कितनी जबानी जानते हैं। अब हमारे यहाँ एक चीज जिसको नजरअंदाज किया जा रहा है वो ये है कि हम एक जबान को भी सही नहीं बोलना चाहते हैं, एक भी जबान। मतलब आप अगर दूसरी जबान नहीं बोल पा रहे हैं तो जो हम बोलते हैं, जो हम सही लफ्ज हैं, उनका उच्चारण तो करें। अब हम लोग क्या करते थे, अगर संस्कृत का प्रोग्राम है और उसको अगर अनाउंस करना है तो यहाँ पर हमारे जो प्रोड्यूसर थे आशा राम जी, हम उनको जाके सुनाते थे कि ये हम कर रहे हैं अनाउंसमेंट के, मतलब सही है उच्चारण उसका या नहीं। अच्छा, वजह सुनाने की यूं होती थी कि एक साहब थे, उनको मैंने सुना वो मकबरे को मकबरा कह रहे थे।
0: अच्छा।
1: अब देखिए, लिखा तो वो है
0: मकबरा,
1: लेकिन जब उन्होंने मकबरा कहा तो मुझे लगा कहीं हम भी तो ऐसे नहीं बोलेंगे संस्कृत में।
0: यानी
1: तो,
0: जो भी भाषा बोले वो पूरा शुद्ध रखें।
1: आप तवज्जो दें तो अपने आप शुद्ध हो जाएगी।
0: जी जी,
1: ऐसा नहीं है।
0: आकाशवाणी की विश्वसनीयता पर हम कभी प्रश्न इसीलिए नहीं लगाते।
1: आप बताइए, पहले लोग रेडियो से टाइम अपना मिलाते थे, रेडियो से जबान अपनी सही करते थे।
0: बिल्कुल।
1: और मतलब साहित्यिक थोड़ा थोड़ा सबका मिजाज होता था।
0: और पढ़ने की आदत भी रहनी चाहिए।
1: पढ़ने की आदत अगर आप में है तो आपकी मालूमात बढ़ेगी, कमी नहीं आएगी।
0: जी बिल्कुल। अब तो संचार के इतने माध्यम हो गए हैं जारी जी, और आकाशवाणी लखनऊ से भी अपेक्षा की जाती है कि खासतौर पे युवा वर्ग के लिए ये मार्गदर्शक का काम करें। तो आप क्या अपना संदेश देना चाहेंगी हमारे युवा वर्ग को खासतौर पे, और जो मीडिया में काम करना चाहते हैं उनके लिए?
1: देखिए, मीडिया में काम करें या जाती जिंदगी में बातचीत करें, बात करने का तरीका, बात करने की तहजीब और बात करने का उच्चारण
0: जी,
1: ये हर जगह मायने रखता है। वो रेडियो हो, दूरदर्शन हो, आम बातचीत हो, आप अजनबी से भी अगर बात करेंगे तो आपके लबो लहजे से वो समझ लेगा कि आप कितना सही बोल रहे हैं।
0: बिल्कुल। और लखनऊ तहजीब के लिए जानी जाती है, बोली के लिए जानी
1: जाती है। अगर आप जिंदा रखना चाहते हैं, क्योंकि लखनऊ तो आप जिंदा रखेंगे तो रहेगा, नहीं जाएंगे तो नहीं रहेगा।
0: बिल्कुल, भाषा एक इतना सशक्त माध्यम है जिसके थ्रू आप बात कर रहे हैं, श्रोताओं से जुड़ रहे हैं और वो भी आपसे सीख रहे हैं।
1: भाई हमें कुछ बच्चों को जब टोका हमने तो उन्हीं ने एक अजीब सी बात कही कि जितना हम जानते हैं उतने में हमारा काम चल जाता है। तो मैंने कहा कि भाई अब हम क्या बताएं। हमने कहा देखो हमारे यहाँ जो एक टॉमी पला था तो उसकी भी वो अपने भाव मतलब समझा देता था कि अगर वो बहुत दुम हिला रहा है, कूद रहा है, बहुत खुश है और वो कान उसने गुछिया लिए तो शर्मिंदा है। मतलब ये सब चीजें जो होती है वो तो जानवर भी कर लेते हैं। तो फिर हमारे पास जब जबान है और जबान भी ऐसी जगह की कि लोग लखनऊ को सुन के ये समझते हैं कि ये, और जबकि शायद लखनऊ में अब वो बात खत्म होती जा रही है।
0: जी, और बिल्कुल सही बात है, हमें अपने संस्कार, हमें संस्कृति अपनी नहीं भूलनी चाहिए और भाषा पर बहुत ध्यान देना जरूरी है। और ये ऐसी संस्था है जहाँ पे हम आवाज के जरिए लोगों से जुड़ते हैं, मिलते हैं। और जैदी जी आपने इसमें बहुत कार्य किया है और आपकी बात वाकई में बिल्कुल शत प्रतिशत हम कहेंगे सही है कि अपने ऊपर भी विचार करने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है। तो आज आप हमारे स्टूडियो में आए जैदी जी और आपने अपने अनुभव हमारे साथ शेयर किए और हमें उम्मीद है कि हमारे जितने भी श्रोता है उनको बहुत आनंद आया होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो चलते चलते हमारे इस 90 वर्ष के गौरवशाली यात्रा में हमारे जो श्रोता है उनको अपनी तरफ से कुछ शुभकामनाएं आप देना चाहेंगी जैदी जी?
1: बहुत बहुत बहुत शुभकामनाएं
0: जी।
1: और ये कि आपने बहुत दिनों के बाद हमको श्रोताओं से रूबरू करवाया, इसकी भी हमें बेहद खुशी है और हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे मतलब जुदाई लंबी हो गई काफी।
0: जी जी बिल्कुल, और हमारी भी ये कोशिश थी कि आपके साथ पुनः हम लोग जुड़े और आपके अनुभव हम श्रोताओं तक पहुंचाए और हम भी उनसे फिर कुछ और सीखे, कुछ नया सीखे। और जरी जी, अगर आप अपने समय के कुछ लोगों के बारे में बताना चाहते हैं कि जिन्होंने आपके साथ कार्य किया और जिन्होंने आपको प्रेरित भी किया कि हम कुछ और अच्छा करें, तो कुछ बताएं हमें।
1: अपने समय के हमारे लोगों में देखो कि ये काम करने में, अब हमारे साथ अरुण जी थे
0: जी।
1: अरुण जी का ये था कि अगर फिलर भी कोई बजा रहा है और उसने तिहाई पर नहीं काटा, गलत काट दिया, वो घर पे सुनते थे, ऑफिस आके डांटते थे।
0: जी जी जी, और कोई डांट का बुरा भी नहीं मानता था, क्योंकि
1: नहीं नहीं, नहीं, नहीं बुरा नहीं मानते थे, बिल्कुल नहीं बुरा मानते थे। बहुत कायदे से हम लोग डांट खा चुके हैं, हम भी खा चुके हैं
0: जी।
1: तो उनका हिसाब तो ये था कि इतना हर काम परफेक्ट होना कि बस मतलब बिल्कुल मशीन की तरह वो काम करते थे, कंप्यूटराइज थे बिल्कुल।
0: कंप्यूटर का अब जमाना है लेकिन उस वक्त लोग ज्यादा डिसिप्लिन्ड होते,
1: बहुत डिसिप्लिन, टाइम से आना, टाइम से जाना, तरतीब से उनके काम चलते थे। और ये होता था कि गलती कोई करे, अगर सुन लिया उन्हीं ने तो अपनी ड्यूटी बात को करेंगे, पहले डांटने उसको जरूर जाएंगे
0: नहीं। लेकिन वाकई में ये एक बहुत अच्छी बात होती है कि हम सिखाना चाहते हैं अपने।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
0: और ये आपकी बातों से हम भी सहमत हैं और हमारे श्रोता भी जरूर सहमत होंगे। जैदी जी आपका बहुत बहुत आभार कि आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे श्रोताओं से रूबरू हुई और हम सबको बहुत खुशी है कि आज आप हमारे साथ हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अच्छा, आपका बुलाने के लिए बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
1: नमस्ते।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पदचिन्ह आकाशवाणी के सेवानिवृत्त वरिष्ठ उद्घोषिका सुश्री महजबी जैदी की सुमोना पांडे से बातचीत।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती हैं नवाबों की दास्तां। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: जनाब
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
3: या दोस्तों, आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की, और आपके साथ हूँ मैं, आपका अपना दोस्त विनय। और आज है रविवार यानी संडे, और संडे बहुत ही स्पेशल होता है। और अभी आपने एक हमारा विशेष कार्यक्रम सुना पदचिन्ह आकाशवाणी की, और साथ ही साथ आज दोपहर 12 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम हेल्थ एंड फिटनेस। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो हमारे दिल के बहुत करीब है, आपकी सेहत का हम पूरा ख्याल रखते हैं। और आज 24 मई को हमारे स्टूडियोज में मौजूद रहेंगे डॉक्टर मनीष झा, जो कि हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, और आज का विषय है गर्मियों में हार्ट का कैसे रखें ख्याल। जानिए क्या गर्मी दिल पर असर डालती है, हार्ट मरीज कितना पानी पिए, गर्मी में कौन सा खाना बेहतर है, और क्या धूप हार्ट के लिए नुकसानदायक है। तो इन सभी बातों को जानने के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर है 0522-2238-852, दूसरा नंबर है 0522-2238-845, और साथ ही साथ हमें मेल भी कर सकते हैं fmakashwani@gmail.com। सुनते रहिए, एंजॉय करते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: 102.2 FM रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप। सुबह के 11 बज चुके हैं और हम लेकर हाजिर हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम हमनवा, जिसमें आज मैं हूं आपके साथ आरजे आशीष और मेरे साथ मेरी हमनवा हैं
1: आरजे ऋतु। सभी श्रोताओं को बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में।
0: जी हाँ, बहुत बहुत स्वागत है ऋतु। और ऋतु देखिए ना, अब हम लोग जब अपने हमनवा प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं तो लगभग रोज ही हम लोग एक टॉपिक पर बात करते हैं जो कॉमन होता है, और वो होता है गर्मी का मौसम।
1: बिल्कुल आशीष, और जरूरी भी है।
0: बिल्कुल, और इसलिए जरूरी है क्योंकि देखिए हम लोग बार बार लोगों को सावधान करते हैं, हालांकि हमारे जो लिसनर्स हैं वो इतने जागरूक हैं कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है इन गर्मियों में अच्छी तरह पता, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं कुछ लापरवाही हो जाती है और लोग बीमार हो जाते हैं।
1: बिल्कुल आशीष, तुमने सही कहा है। तो एक बार फिर से हम अपने श्रोताओं से यही कहना चाहेंगे कि भाई जरूरत हो तो ही घर से बाहर निकलें, और अगर घर से बाहर निकलें तो अम्ब्रेला का यूज करें, कैप लगाएं, पानी की बॉटल जो है अपने साथ रखें, और पानी मतलब बराबर पीते रहें।
0: आपने कहा जरूरत हो तभी घर से बाहर निकलें, और ये जो 11 बजे से लेकर के ये 4 बजे का बीच के जो टाइम है ना, ये बहुत ही मतलब जो है धूप में दिक्कत वाला समय है, तो इस टाइम को बचा ले जाएं। और जब आपको कहीं जाना हो तो 4 बजे के बाद जा सकते हैं, शाम को जा सकते हैं, सुबह जा सकते हैं, तो अभी इस टाइम को बचाना बहुत जरूरी हो जाता है। और अपने आप को तो आपको बचाना ही बचाना है, साथ ही साथ एक छोटा सा निवेदन, एक छोटी सी अपील ये भी रहती है हमारी श्रोताओं से कि अगर आपके यहाँ आंगन या छत पर आप जो जीव जंतु होते हैं, छोटे छोटे चिड़िया होती हैं, पक्षी होते हैं,
1: उनके लिए दाना पानी जरूर रखें।
0: फिलहाल बातें तो बहुत सारी होती रहेंगी, अभी हम शेयर कर लेते हैं कि आज हमनवा प्रोग्राम में क्या टॉपिक हम लाए हैं।
1: बिल्कुल आशीष, तो कॉमनवेल्थ डे पर बात करेंगे आज हम। साथ ही उस्ताद योजना जो कि प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम से जुड़ी हुई है, इस पर भी बातचीत होगी।
0: साथ ही साथ हम बात करेंगे ऑनलाइन शॉपिंग, फायदे और सावधानियां, और बढ़ता स्क्रीन टाइम खतरे की घंटी, यानी कि वीकेंड में स्क्रीन से दूरी कैसे बनाएं, इस टॉपिक पर भी बात करेंगे।
1: बिल्कुल, और स्वयं सहायता समूह में बात करेंगे, त्रिनेत्र स्वयं सहायता समूह की, और साथ में होगी कुछ एक रेसिपी।
0: बिल्कुल, और आज आप हम सभी श्रोताओं से यही कहना चाहेंगे कि भाई आज जो हमारा विषय है, किस विषय पर आप अपनी मेल भेज सकते हैं, तो हमारी मेल आईडी है AIRKANSOMEDIA@gmail.com, और मेल आईडी तो हमने बता दी लेकिन विषय नहीं बताया। ऋतु आप बताइए,
1: विषय तो हमारा बिल्कुल बहुत ही अच्छा है कि ऑनलाइन शॉपिंग आजकल सभी करते हैं मुझे लग रहा है मोस्टली, तो बस हम अपने श्रोताओं से जानना चाहते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग में उन क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, और हम क्या सावधानियां जब ऑनलाइन शॉपिंग करें तो हम क्या सावधानियां बरतें।
0: और एक बार इसके लिए हम फिर से आपको अपनी ईमेल आईडी बता रहे हैं AIRKANSOMEDIA@gmail.com।
1: और अब सुनते हैं आशीष एक प्यारा सा ट्रैक।
0: बिल्कुल।

0: जी हाँ, हमारा और हमारे श्रोताओं का जो साथ है वो भी इतना ही प्यारा है, क्यों रितु?
1: बिल्कुल, और इसीलिए तो हम हर रोज चले आते हैं उनसे मिलने।
0: और हम नवा कार्यक्रम के माध्यम से हम उनसे मिलते भी हैं और कुछ ऐसी बातें करते हैं जो मतलब जो है ज्ञान विज्ञान से जुड़ी होती हैं, कुछ करंट अफेयर से जुड़ी होती हैं। और इसी तरह की एक बात अभी जो हम करने जा रहे हैं वो आप कुछ बताएंगी।
1: आशीष, हम बात करने जा रहे हैं कॉमनवेल्थ डे, उन देशों के आपसी सहयोग, मित्रता, लोकतंत्र, शांति और विकास की भावना को समर्पित दिवस है जो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस नामक संगठन से जुड़े हैं। ये संगठन दुनिया के अनेक स्वतंत्र देशों का समूह है जिनमें कभी न कभी अधिकांश देश ब्रिटिश शासन के अधीन रहे थे।
0: बिल्कुल, आज हम कॉमनवेल्थ डे मना रहे हैं और कॉमनवेल्थ में एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका और ओशिनिया के कुल 56 देश शामिल हैं। भारत भी इसका एक महत्वपूर्ण सदस्य है। कॉमनवेल्थ का मूल संदेश है विविधता में एकता। भले ही सदस्य देशों की भाषाएं, संस्कृतियां, परंपराएं और जीवन शैली अलग अलग हों, फिर भी वे आपसी सम्मान और सहयोग के साथ आगे बढ़ते हैं। यही भावना आज पूरे विश्व के लिए प्रेरणा का स्रोत है।
1: भारत ने हमेशा कॉमनवेल्थ में सक्रिय भूमिका निभाई है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, विज्ञान और तकनीक, खेल या फिर वैश्विक शांति। भारत ने हर क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और आशीष, कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों ने देश का नाम विश्व भर में गौरवान्वित भी किया है।
0: और आज के समय में दुनिया कई चुनौतियों का सामना कर रही है, जैसे जलवायु परिवर्तन, गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक असमानता। ऐसे समय में कॉमनवेल्थ जैसे संगठन देशों को एक साथ मिलकर समाधान खोजने की प्रेरणा देता है।
1: बिल्कुल, और कॉमनवेल्थ डे हमें ये भी सिखाता है कि केवल आर्थिक विकास ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि मानवता, समानता और सहयोग की भावना भी उतनी ही आवश्यक है। यदि विश्व के देश मिलजुल कर कार्य करें तो एक बेहतर और शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण संभव।
0: कॉमनवेल्थ डे केवल एक औपचारिक दिवस नहीं है, बल्कि ये दुनिया के विभिन्न देशों के बीच सहयोग, मित्रता और साझा मूल्यों का प्रतीक है। भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश के लिए ये मंच अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने और वैश्विक विकास में योगदान देने का अवसर प्रदान करता है।
1: तो आशीष, हम सभी को अपने जीवन में भाईचारे, सहयोग और सम्मान की भावना को अपनाना चाहिए, यही कॉमनवेल्थ डे का वास्तविक संदेश है।
0: बिल्कुल।

0: जी हाँ, हमें अपने हौसले को बिल्कुल भी नहीं झुकाना चाहिए, क्योंकि जब हमारे अंदर हौसला होता है तब हम वो कर जाते हैं जिसकी लोग उम्मीद भी नहीं करते हैं। फिलहाल ऋतु, एक बात बताइए कि अचानक से आपको घर में किसी चीज की जरूरत पड़ जाए और आप बाहर भी मतलब मार्केट नहीं जाना चाहती हैं, तो आप क्या करेंगी?
1: भाई इसका जवाब तो बहुत ही आसान है आशीष, मैं तो बस अपना मोबाइल उठाती हूँ और जो भी चीजें हमें जरूरत है उसे ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ।
0: बिल्कुल सही कहा ऋतु, मोबाइल की एक क्लिक पर कपड़े, जूते, मोबाइल, राशन, दवाइयां और यहां तक कि रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजें भी हमारे घर तक पहुंच जाती हैं।
1: और देखो आशीष, इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है और ऐसे में हम बाहर नहीं जाना चाहते हैं, मतलब बाहर जाने का मन नहीं करता है, तो कोई बात नहीं, आपको बस अपना मोबाइल उठाना है और एक ऑर्डर करना है और बस कुछ ही मिनटों में आपकी जरूरत की चीजें आपके सामने होंगी।
0: आपने ये बात कही और मुझे याद आ गई बचपन की बात, जब घर में अचानक से कोई मेहमान आ जाते थे और नाश्ता लेने के लिए मम्मी पीछे वाले दरवाजे से हमको भेज देती थी और हम चुपके से वो नाश्ता लाकर मम्मी को धीरे से दे देते थे, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग ने हमारी जिंदगी को आसान तो बनाया है, लेकिन इसके साथ कई तरह के खतरे भी बढ़ गए हैं ऋतु। आज लोग बड़े बड़े डिस्काउंट, कैशबैक और आकर्षक ऑफर्स के लालच में बिना सोचे समझे ऑनलाइन खरीदारी कर लेते हैं।
1: हाँ आशीष, कई बार ऐसा होता है कि ग्राहक ऑनलाइन कोई महंगा सामान ऑर्डर करता है लेकिन डिलीवरी में या तो गलत सामान आ जाता है या फिर घटिया क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलता है, और ये अक्सर होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और यही जो जल्दबाजी होती है ना, वही नुकसान का कारण बन जाता है। कुछ लोग सोशल मीडिया पर दिखने वाले सस्ते ऑफर्स के झांसे में आकर अपनी बैंक डिटेल्स तक साझा कर देते हैं और ठगी का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में ऑनलाइन खरीदारी करते समय सावधानी बेहद जरूरी है।
1: हमेशा

0: भरोसेमंद वेबसाइट या ऐप से ही खरीदारी करें, वेबसाइट के वेबसाइट के नाम और उसकी सुरक्षा को ध्यान से जांच लें। अगर किसी मतलब किसी ऑफर की कीमत बहुत ही कम लग रही हो तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि कई बार बहुत सस्ता ही सबसे बड़ा जाल होता है, क्योंकि सस्ते जाल में मतलब सस्ती चीजों में लोग फंस जाते हैं।
1: भाई कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज अगर वो उदाहरण के तौर पर 1000 रुपए की है और हम देख रहे हैं कि वो मात्र हमें 150-200 रुपए के बीच में ही मिल रही है,
0: तो इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ है।
1: सबसे जरूरी बात रितु, ऑनलाइन पेमेंट करते समय कभी भी अपना OTP, बैंक पासवर्ड या UPI पिन किसी के साथ साझा ना करें। किसी अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचें और पब्लिक वाईफाई का उपयोग करते समय ऑनलाइन पेमेंट करने से परहेज करें। अब देखिए, अनजान लिंक कैसे आता है कि जैसे अगर हम कोई खरीदारी कर रहे हैं और अचानक से हमारे पास एक ऑफर वाला लिंक आया है ना, कि 1000 रुपए की चीज ही आपको 150 में ही मिल रही। अब आपने बिना सोचे समझे उस लिंक पर क्लिक कर दिया और फिर क्या होता है ये सभी को मालूम है।
0: और आशीष, साथ ही सामान खरीदने से पहले रिव्यू और रेटिंग जरूर पढ़ें, रिटर्न और रिफंड पॉलिसी को भी समझ लें ताकि किसी परेशानी की स्थिति में आपको नुकसान ना उठाना पड़े।
1: याद रखिए, सुविधा तभी तक अच्छी है जब तक उसमें सुरक्षा बनी रहे। ऑनलाइन शॉपिंग समझदारी से की जाए तो समय भी बचता है और फायदा भी होता है, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही आपकी मेहनत की कमाई पर भारी पड़ सकती है, इसलिए जागरूक रहें और सतर्क रहें। फिलहाल हमारे साथ जुड़ रही हैं शुक्लागंज से मनीषा वाजपेयी, आइए सुनते हैं क्या हैं उनके विचार।
2: नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा वाजपेयी हूं और मैं शुक्लागंज में रहती हूं। मैं एक हाउसवाइफ हूं। आज के डिजिटल दौर में ऑनलाइन शॉपिंग हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। घर बैठे कपड़े, किताबें, मोबाइल, राशन और ज़रूरत का लगभग हर सामान कुछ ही मिनटों में मंगाया जा सकता है। ऑनलाइन शॉपिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि समय की बचत होती है, भीड़ भाड़ वाले बाज़ारों में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा अगर हम घर से बाहर जाने में असमर्थ होते हैं तब भी ऑनलाइन शॉपिंग हमें सुविधा देती है। कई बार अच्छे डिस्काउंट और ऑफर्स भी मिल जाते हैं। इसके अलावा अलग अलग ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स की कीमतों की तुलना करना भी आसान हो जाता है। घर बैठे रिव्यू पढ़कर सही सामान हम सब चुन सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सुविधाओं के साथ सावधानी भी बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन ख़रीदारी करते समय मैं हमेशा भरोसेमंद वेबसाइट या ऐप का ही इस्तेमाल करती हूँ। किसी अनजान लिंक पर क्लिक करके पेमेंट करने से हमेशा बचती हूँ। अपनी बैंक डिटेल, OTP और पासवर्ड किसी के साथ भी मैं साझा नहीं करती, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें दिखाया कुछ और जाता है और डिलीवरी किसी और तरीके की होती है, तो इन सब चीज़ों के लिए भी मैं बहुत ही ज़्यादा सावधान रहती हूँ। कई बार बहुत सस्ते ऑफ़र दिखाकर ठगी की कोशिश की जाती है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा सस्ता देखकर तुरंत भरोसा ना करके सामान खरीदने से पहले उसकी रेटिंग और ग्राहक समीक्षाएं ज़रूर पढ़ लेती हूँ। साथ ही डिलीवरी मिलने पर प्रोडक्ट को अच्छी तरह से जांच कर लेती हूँ उसकी। याद रखिए, स्मार्ट ग्राहक वही है जो सुविधा के साथ सुरक्षा का भी ध्यान रखें। तो ऑनलाइन शॉपिंग कीजिए, लेकिन समझदारी और सावधानी के साथ। धन्यवाद।

0: रितु, अभी हम बात कर रहे थे अपने हमनवा के टॉपिक में कि ऑनलाइन शॉपिंग फायदे और सावधानियां, और हमने अपने श्रोताओं से मेल मांगी थी। तो एक मेल हमें भेज रही हैं शिवी मिश्रा, और इन्होंने लिखा है, नमस्कार आशीष जी और रितु जी।
1: भाई नमस्कार शिवी जी।
0: और आगे इन्होंने लिखा है कि ऑनलाइन शॉपिंग आज के समय में सुविधा का बेहतरीन माध्यम बन चुकी है, लेकिन इसके साथ सतर्क रहना भी उतना ही जरूरी है। हमेशा भरोसेमंद वेबसाइट से ही खरीदारी करें और किसी भी अनजान लिंक या लालच भरे ऑफर से बचें।
1: आशीष, और मुझे लग रहा है इन्होंने तारीफ भी लिखी है कि आप दोनों जिस खूबसूरती और सरल अंदाज में इस विषय को श्रोताओं तक पहुंचा रहे हैं वो वास्तव में बेहद सराहनीय है। आपका प्रस्तुतीकरण जानकारी के साथ जागरूकता भी बढ़ा रहा है।
0: भाई शिवी जी, इस जर्रा नवाजी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ऋतु, ये जो हमारा देश है ना, भारत, वो विविधताओं का देश है।
1: बिल्कुल,
0: यहाँ अनेक धर्म, भाषाएं, संस्कृतियां और परंपराएं मिलकर हमारी राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाती हैं। हमारे देश की पहचान केवल उसकी प्रगति से नहीं बल्कि उसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से भी होती है। इसी विरासत को सुरक्षित रखने और अल्पसंख्यक समुदायों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने उस्ताद योजना की शुरुआत की।
1: आशीष, और उस्ताद योजना का पूरा नाम हम बता देते हैं अपने श्रोताओं को, अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स फॉर डेवलपमेंट। ये योजना अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है।
0: हमारे देश में सदियों से अनेक पारंपरिक कलाएं और शिल्प प्रचलित रहे हैं, जैसे चिकनकारी, जरी, जरदोजी, कालीन बुनाई, लकड़ी की नक्काशी, मिट्टी कला, हथकरघा आदि। लेकिन आधुनिकता और मशीनों के बढ़ते प्रभाव के कारण ये पारंपरिक कलाएं धीरे धीरे

0: समाप्त होती जा रही हैं, तो मतलब समाप्त हो रही थी। तो ऐसे समय में उस्ताद योजना आशा की एक नई किरण बनकर सामने आई है।
1: बिल्कुल सही कहा आशीष तुमने। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक कला और हुनर को बचाना, युवाओं को प्रशिक्षण देना और उन्हें रोजगार से जोड़ना है। इसके माध्यम से कारीगरों को आधुनिक तकनीक, डिजाइन और मार्केटिंग की जानकारी भी दी जाती है ताकि उनके उत्पाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी पहचान बना सके।
0: अब देखिए ऋतु, ये जो उस्ताद योजना है ना, ये सिर्फ केवल जो है ना ट्रेनिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आत्मनिर्भर भारत के सपने को भी साकार करती है। जब कोई युवा अपने हुनर के बल पर रोजगार प्राप्त करता है या स्वयं का व्यवसाय शुरू करता है, तब उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है।
1: ये योजना प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम से भी जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री 15 सूत्री कार्यक्रम का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों को शिक्षा, रोजगार, आवास, स्वास्थ्य और आर्थिक अवसरों में समान भागीदारी प्रदान करना है। सरकार चाहती है कि विकास की मुख्यधारा में हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित हो।
0: उस्ताद योजना के माध्यम से ये संदेश भी मिलता है कि भारत अपनी सांस्कृतिक धरोहर को केवल संग्रहालयों में सुरक्षित नहीं रखना चाहता, बल्कि उसे नई पीढ़ी के हाथों में सौंपना चाहता है। जब कोई युवा पारंपरिक कला सीखता है तो वो केवल रोजगार नहीं सीखता, बल्कि अपनी संस्कृति और पहचान को भी आगे बढ़ाता है।
1: तो आशीष, आज आवश्यकता इस बात की है कि अधिक से अधिक युवा इस योजना से जुड़ें, अपने कौशल को निखारें और देश की पारंपरिक कला को विश्व स्तर तक पहुंचाएं। हमें वोकल फॉर लोकल की भावना को अपनाकर अपने कारीगरों का सम्मान करना चाहिए।
0: उस्ताद योजना केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि भारतीय कला, संस्कृति और आत्मनिर्भरता को मजबूत करने का एक सशक्त अभियान है। ये योजना अल्पसंख्यक समुदायों के जीवन में नई आशा, नया आत्मविश्वास और नए अवसर लेकर आई है।
1: और फिलहाल हम लेकर आए एक बढ़िया सा ट्रैक।
0: बिल्कुल।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: 102.2 FM रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप और इस समय प्रोग्राम चल रहा है हम नवा, जिसमें आज मैं हूं आपके साथ आरजे आशीष और मेरे साथ मेरी हम नवा हैं
2: आरजे रितु।
1: रितु, आज का युग टेक्नोलॉजी का युग है। मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट और टीवी हमारी जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। सुबह आंख खुलते ही हम मोबाइल देखते हैं और रात को सोने से पहले तक स्क्रीन से जुड़े रहते हैं। पढ़ाई हो, नौकरी हो, मनोरंजन हो या बातचीत, हर काम स्क्रीन के माध्यम से होने लगा है। और बिल्कुल सही भी है, अगर हम लोग कहीं बाहर निकलते हैं तो भले ही हमारी जेब में कोई चीज हो ना हो, लेकिन मोबाइल हमारी जेब में या पर्स में जरूर होना चाहिए।
2: बिल्कुल, और तकनीक ने जीवन को आसान तो बनाया है आशीष, लेकिन इसका अत्यधिक उपयोग अब हमारे स्वास्थ्य और सामाजिक जीवन के लिए खतरे की घंटी बनता जा रहा है। लगातार स्क्रीन देखने से सबसे पहले तो असर हमारी आंखों पर पड़ता है। आंखों में जलन, सूखापन और सिरदर्द जैसी समस्याएं बढ़ने लगती हैं। डॉक्टर भी चेतावनी दे रहे हैं कि जरूरत से ज्यादा मोबाइल का उपयोग बच्चों और युवाओं की आंखों की रोशनी पर बुरा असर डाल सकता है।
1: और इसके अलावा स्क्रीन टाइम हमारी मानसिक स्थिति को भी प्रभावित करता है। सोशल मीडिया पर लगातार दूसरों की जिंदगी देखकर लोग खुद की तुलना करने लगते हैं। इससे तनाव, चिंता और अकेलेपन की भावना बढ़ती है। कई लोग घंटों तक मोबाइल चलाते रहते हैं, है ना, और

0: उन्हें समय का भी एहसास नहीं होता कि कितना समय जो है हमारा
1: निकल गया,
0: खर्च हो गया है, बीत गया
1: बिल्कुल है। बिल्कुल। और सबसे चिंताजनक बात यह है कि स्क्रीन ने हमारे रिश्तों के बीच भी दूरी पैदा कर दी है। आज परिवार के लोग एक ही कमरे में बैठकर भी आपस में बात नहीं करते, क्योंकि सब अपने अपने मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। धीरे धीरे संवाद कम होता जा रहा है और भावनात्मक जुड़ाव कमजोर पड़ता जा रहा है। ये बात बिल्कुल सही है, हर घर की ये कहानी है।
0: बिल्कुल ऋतु, और ऐसे में वीकेंड यानी सप्ताहांत हमारे लिए एक सुनहरा अवसर बन सकता है। ये समय केवल आराम करने का नहीं बल्कि खुद को डिजिटल दुनिया से थोड़ी दूरी देकर वास्तविक जीवन से जुड़ने का समय है।
1: बिल्कुल आशीष, वीकेंड में स्क्रीन से दूरी बनाने के लिए हमें कुछ छोटे लेकिन महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। सबसे पहले सुबह उठते ही मोबाइल देखने की आदत छोड़नी होगी। दिन की शुरुआत प्रकृति, व्यायाम, योग या परिवार के साथ बातचीत से करनी चाहिए।
0: हमें आउटडोर गतिविधियों को अपनाना चाहिए, पार्क में टहलना, खेल खेलना, साइकिल चलाना या दोस्तों परिवार के साथ समय बिताना मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों के लिए लाभकारी है।
1: हमें मोबाइल फ्री टाइम तय करना चाहिए, जैसे भोजन के समय या शाम के कुछ घंटों में परिवार को मोबाइल से दूर रहना चाहिए। किताबें पढ़ने, संगीत सुनने, बागवानी, चित्रकला और अन्य रचनात्मक गतिविधियों की ओर लौटना चाहिए। ये गतिविधियां जो है वो मन को शांति देती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भी भरती है।
0: अब देखिए, आपने कहा कि हमें मोबाइल फ्री टाइम तय करना चाहिए। हमारा एक मित्र है, दोस्त है, और उसके यहाँ एक ये नियम है कि जैसे घर में दिन के 2 बजते हैं, खाना खाने का टाइम होता है, तो जब संडे वाले दिन या किसी भी छुट्टी वाले दिन जब सब लोग एक साथ होते हैं तो 2 से 4 के बीच का जो समय होता है उनमें जो है सबके परिवार के जैसे 5 सदस्य हैं तो सबके अगर मोबाइल है सबके पास तो मोबाइल उनके जमा कर लिए जाते हैं, एक जगह उनको रख दिया जाता है स्विच ऑफ करके और 2 घंटे बाद ही मोबाइल को छुआ जाता है।
1: बिल्कुल आशीष, ऐसा हम सब भी कर सकते हैं और 2 घंटे ही हम मोबाइल से दूर रहें तो भी बहुत बड़ी बात है।
0: बिल्कुल, तकनीक हमारी जरूरत है लेकिन उसका संतुलित उपयोग हमारी जिम्मेदारी है। यदि हम समय रहते सावधान नहीं हुए तो बढ़ता स्क्रीन टाइम हमारी सेहत, रिश्तों और मानसिक शांति को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है।
1: बिल्कुल, इसलिए हमें ये समझना होगा कि असली खुशी केवल मोबाइल स्क्रीन में नहीं बल्कि परिवार की मुस्कान, दोस्तों की बातचीत, प्रकृति की सुंदरता और अपने सपनों को जीने में है। तो भाई, थोड़ा समय मोबाइल को दीजिए विराम और जिंदगी को दीजिए नया आयाम।

0: ऋतु हमनवा प्रोग्राम में अब हम आप पहुंचे हैं स्वयं सहायता समूह सेगमेंट में, जिसके अंतर्गत हम बात करने जा रहे हैं अपने कानपुर की उन मेहनती महिलाओं की जिन्होंने अपने हुनर, मेहनत और आत्मविश्वास से सफलता की एक नई कहानी लिखी है। ये प्रेरणादायक कहानी है त्रिनेत्र स्वयं सहायता समूह की।
1: हाँ आशीष, अपने कानपुर महानगर में जुलाई 2017 में डूडा यानी जिला नगरीय विकास अभिकरण द्वारा इस समूह का गठन किया गया। त्रिनेत्र स्वयं सहायता समूह की जिम्मेदारी सपना निषाद ने संभाली और महिलाओं को एक नई पहचान दिलाने की शुरुआत हुई।
0: शुरुआत में कुछ महिलाओं ने मिलकर छोटे स्तर पर काम शुरू किया। उद्देश्य केवल रोजगार पाना नहीं था, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें अपने सपनों को पूरा करने का अवसर देना था। धीरे धीरे ये छोटा प्रयास एक बड़े अभियान में बदल गया।
1: जी हाँ, त्रिनेत्र स्वयं सहायता समूह की महिलाएं चमड़े की बेल्टों पर धागों की सुंदर कढ़ाई और बारीक डिजाइन तैयार करती हैं। उनके हाथों की कला और मेहनत ने साधारण चमड़े की बेल्ट्स को डिजाइनर उत्पाद का रूप दे दिया।
0: आज त्रिनेत्र स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाई गई बेल्ट्स कानपुर ही नहीं बल्कि मुंबई, गोवा जैसे बड़े शहरों तक पहुंच रही हैं और विदेशों में भी अपनी पहचान बना रही हैं।
1: और इस कार्य से जुड़कर लगभग 110 महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। आशीष, जो महिलाएं पहले केवल घर तक सीमित थीं, आज भी अपने परिवार की जिम्मेदारियों में सहयोग कर रही हैं, बच्चों की पढ़ाई में मदद कर रही हैं और आत्मविश्वास के साथ समाज में अपनी अलग पहचान बना रही हैं।
0: त्रिनेत्र स्वयं सहायता समूह ने ये साबित कर दिया है कि अगर महिलाओं को अवसर और सही मार्गदर्शन मिले तो वे हर क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकती हैं। ये समूह केवल रोजगार का माध्यम नहीं बल्कि महिलाओं के आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और सशक्तिकरण का प्रतीक बन चुका है।
1: तो आशीष, और अब बारी एक और ट्रैक की।
0: बिल्कुल।

0: आशीष, और अब हम पहुंच चुके हैं अपने प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट पर, यानी कि रेसिपी पर।
1: और आज की जो रेसिपी है वो हम लाए हैं पुदीना सत्तू शरबत।
0: क्या बात है।
1: और इसमें क्या सामग्रियां होती हैं, क्या सामग्रियां पड़ती हैं, इसके बारे में ऋतु आप कुछ बताएंगी?
0: बिल्कुल बताऊंगी। सत्तू लेना है, सबसे पहले भुने चने का आटा वो लेना है 4 बड़े चम्मच। पुदीने की पत्तियां लेनी है 10-12 ताजा, और 2 गिलास ठंडा

0: पानी, नींबू का रस एक बड़ा चम्मच और भुना हुआ जीरा पाउडर आधा छोटा चम्मच, काला नमक स्वाद के अनुसार, हरी मिर्च एक बारीक कटी हुई यदि तीखा पसंद हो आपको, और बारीक कटा प्याज भी आप ले सकते हैं अगर आप डालना चाहें तो।
1: और इसकी विधि कुछ इस तरह से है कि पुदीने की पत्तियों को थोड़े से पानी के साथ मिक्सी में पीस कर पेस्ट बना लें, या आप इसे बारीक काट कर भी डाल सकते हैं। इसके बाद एक बड़े कटोरे या जग में सत्तू लें, अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालें और अच्छी तरह मिलाएं ताकि कोई गांठ ना रहे। देखिए ना, जब सत्तू वगैरह कुछ हम घोलते हैं तो उसमें गुठलियां टाइप की बन जाती है, तो ये ना रहे, उसको ठीक से मिला लें। अब इस घोल में पुदीने का पेस्ट, नींबू का रस, भुना जीरा पाउडर, काला नमक, सादा नमक और हरी मिर्च डालें अगर आप मिर्च खाते हैं तो, और सभी चीजों को अच्छी तरह फेंट लें। अगर आप प्याज डालना चाहते हैं तो अब इसे ऊपर से मिला सकते हैं। ग्लास में डालें, बर्फ के टुकड़ों के साथ ठंडा ठंडा सर्व करें।
0: और आशीष, पुदीना सत्तू शरबत गर्मियों के लिए एक बेहतरीन और ताजा करने वाला एनर्जी ड्रिंक है। ये शरीर को ठंडक देता है और लू से भी बचाता है। सत्तू प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होता है जो इन गर्मियों के दिनों में पाचन क्रिया को भी ठीक रखता है।
1: तो आप लोग पुदीना सत्तू शरबत का आनंद लीजिए, और अभी हम आपको सुनवा रहे हैं प्रोग्राम का ये अगला गाना।

0: और ऋतु घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि हमनवा प्रोग्राम को अब यहीं पर वाइंड अप करना चाहिए। फिलहाल मुझे यानी आरजे आशीष
1: और आरजे ऋतु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला आकाशवाणी पर पीपल्स पदम के तहत 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इन एपिसोड में पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दी जाएगी। इनका प्रसारण कल और सोमवार को 101 आकाशवाणी गोल्ड पर किया जाएगा। इन्हें न्यूज ऑन एयर ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी सुना जा सकता है। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे कल और सोमवार को सुबह 9:10 से आकाशवाणी से जुड़े रहें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि राजस्व मामले के त्वरित, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण को शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि भूमि और राजस्व से जुड़े मामलों में अनावश्यक विलंब किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि निर्धारित समय सीमा के बाद भी लंबित रहने वाले मामलों में संबंधित अधिकारियों और कार्मिकों को जवाबदेही तय करते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। कल लखनऊ में राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों के निस्तारण की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीक आधारित व्यवस्था, जवाबदेही और समयबद्ध कार्यप्रणाली के माध्यम से राजस्व न्यायालयों की कार्यक्षमता को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के तहत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जून तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। हापुड़ की तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर ब्रज घाट में कल होने वाले गंगा दशहरा पर्व को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं पुलिस प्रशासन ने आज डॉग स्क्वाड और मेटल डिटेक्टर के जरिए मेला क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया है। आईपीएल क्रिकेट में आज दो मुकाबले होंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में दोपहर 3:30 से होगा। दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 से होगा। विजेता टीमों को प्लेऑफ में जगह मिलेगी। प्रतियोगिता में कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जॉइंट्स को हरा दिया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 1 बजे प्रसारित होगा।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी,
2: थायराइड इम्बैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
3: 12:05 दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन 100.7 FM रेनबो के लोकप्रिय कार्यक्रम हेल्थ एंड फिटनेस में आप सभी का मैं समरीन स्वागत करती हूं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण विषय में, जो है गर्मियों में हार्ट को कैसे बेहतर रखें और उसका ख्याल रखें। तेज धूप, बढ़ता तापमान, डिहाइड्रेशन और अनियमित दिनचर्या का असर सिर्फ हमारी त्वचा पर और शरीर पर नहीं होता, बल्कि हमारे दिल पर भी इसका खासा असर पड़ता है। खासतौर पर हार्ट पेशेंट्स और बुजुर्गों को इस मौसम में अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत होती है। इन्हीं महत्वपूर्ण मुद्दों पर और बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं चरक हॉस्पिटल के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष झा। डॉक्टर साहब, आपका FM स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
4: FM के श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार।
3: जी डॉक्टर साहब, पहला सवाल जो मैं आपसे जानना चाहूंगी वो है कि गर्मियों के मौसम में दिल की सेहत को किस तरह से बनाए रखें और किस तरह से ये हमारे हार्ट को प्रभावित करता है।
4: गर्मियों के मौसम में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है और उससे हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है। गर्मियों के वजह से हार्ट की धड़कन बढ़ने लगती है, हार्ट को ब्लड 2 से 3 गुना ज़्यादा पंप करना पड़ता है। तो गर्मियों के वजह से दिल की जो नलिकाएँ हैं वो थोड़ी फैल जाती हैं, उसकी वजह से हार्ट को ब्लड सप्लाई ज़्यादा मेंटेन करना पड़ता है और साथ में धड़कन एबनॉर्मल हो जाती है, ब्लड प्रेशर का ऊपर नीचे उतार चढ़ाव भी में होता रहता है, तो हार्ट पे काफी असर पड़ता है। इसलिए हमें हार्ट का, दिल का काफी ध्यान रखने की जरूरत है।
3: जी, तो दिल का ख्याल अगर आप भी रखना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 0522-223-8845 पर, और इसके अलावा दूसरा नंबर है 0522-298-2377 पर। इसके अलावा अगर आपकी कॉल नहीं लग रही है तो आप हमें fmakashwadi@gmail.com पर मेल भी कर सकते हैं। हमारे साथ एक श्रोता जुड़े हैं, आइए जानते हैं कि उनकी दिल से जुड़ी क्या समस्या है। हेलो
5: जी मैम,
3: क्या नाम है आपका, कहां से बोल रहे हैं और डॉक्टर साहब से क्या सवाल है आपका?
5: मैम, मैं बिजनौर से बोल रहे हैं, मेरा नाम प्रीति है।
3: प्रीति
5: जी मैम,
3: प्रीति जी बताइए क्या समस्या आप इस वक्त महसूस कर रही हैं?
5: मैम, हल्का हल्का सीने में दर्द होता रहता है ना हार्ट में, तो यही दिक्कत है। इससे कैसे बचा जा सकता, क्या कर, मतलब क्या उपाय है?
4: प्रीति जी, आपको चलने वलने से दर्द होता है या हर समय दर्द होता रहता है?
5: नहीं, चलने फिरने से सर दर्द नहीं होता है, पर कभी कभी होता है।
4: कभी कभी आप अपना कुछ ब्लड टेस्ट या ECG टेस्ट कराया है?
5: जी सर, करवाया है।
4: और वो ये ECG और वो ब्लड टेस्ट में कोलेस्ट्रॉल टेस्ट कराए हैं, वो नॉर्मल है क्या आपका?
5: जी सर, नॉर्मल है।
4: तो आप एक TMT टेस्ट करा लीजिए, उस वो हार्ट की जो आपकी फंक्शन

0: को अच्छे से देख लेगा और किसी आसपास के किसी जो हृदय रोग विशेषज्ञ है उनसे मिल लीजिए।
1: ओके सर।
2: डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि जब ज्यादा गर्मी होती है तो क्या हार्ट अटैक के या ब्लड प्रेशर बढ़ने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं, और अगर ऐसे में इस तरह की कोई समस्या हम महसूस करें तो तुरंत हमारी क्या कार्रवाई होनी चाहिए?
0: अत्यधिक गर्मी की वजह से हार्ट अटैक की समस्याएं बढ़ जाती है और साथ में ब्लड प्रेशर का भी उतार चढ़ाव होता रहता है। तो अगर हमें इस तरह से कोई दिक्कत लगे, अचानक ज़्यादा पसीना आए या सीने में कोई दर्द होता है, तो तुरंत ही नज़दीकी किसी डॉक्टर या किसी अस्पताल चले जाएं, वहां अपनी सारी जाँचें करा लें।
2: डॉक्टर साहब हमारे साथ एक कॉलर और जुड़ चुके हैं, आइए उनसे जानते हैं।

0: से हार्ट अटैक की समस्याएं बढ़ जाती है और साथ में ब्लड प्रेशर का भी उतार चढ़ाव होता रहता है। तो अगर हमें इस तरह से कोई दिक्कत लगे, अचानक ज़्यादा पसीना आए या सीने में कोई दर्द होता है, तो तुरंत ही नज़दीकी किसी डॉक्टर या किसी अस्पताल चले जाएं, वहां अपनी सारी जाँचें करा लें।
1: डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर और जुड़ चुके हैं, आइए उनसे जानते हैं। हेलो,
2: हेलो,
1: हाँ, सुन पा रहे हैं आप हमें? क्या नाम है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं और क्या समस्या है?
2: हमारा नाम हिमांशी है, बोल रहा हूँ कोकोनाडा जिला सीतापुर से।
1: हिमांशी सीतापुर से बात कर रहे हैं, क्या डॉक्टर साहब से क्या सवाल है आपका?
2: हमारा सवाल है, माथा मतलब दर्द किया करता है।
1: हाँ हाँ, तो ये गर्मियों में ज्यादा बढ़ गया है या हमेशा से आपको सर दर्द की समस्या थी?
2: गर्मियों में बढ़ गया है
1: डॉक्टर साहब।
0: आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करा लीजिए, गर्मियों में जो बड़ा हो सकता है ब्लड प्रेशर के उतार चढ़ाव की वजह से होता है। दूसरा, अगर कोई स्ट्रेस तो नहीं लिया है आपने, तो अगर स्ट्रेस है तो आप स्ट्रेस को कम कीजिए और ब्लड प्रेशर चेक करा लीजिए। इसके बाद भी अगर दिक्कत होती है तो किसी नज़दीक के किसी भी चिकित्सक से मिल लीजिए।
1: डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर कोई हार्ट पेशेंट है तो वो किन किन बातों का ध्यान रखे जब ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है, जैसे अभी इस वक्त बेहद गर्मी है, नौतपा भी शुरू होने जा रहा है, तो स्पेशली हार्ट पेशेंट को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए, हार्ट पेशेंट्स को अभी जो काफ़ी गर्मी वाला मौसम होता है, जो 12 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में होता है, उस पीरियड में बाहर ना निकलें और कपड़े पूरे पहने, कॉटन वाले कपड़े लें और पानी, डिहाइड्रेशन से बचे। डिहाइड्रेशन सबसे मुख्य कारण है, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम होगा। अच्छा। हार्ट की गति काफ़ी बढ़ने लगेगी, तो डिहाइड्रेशन से बचे। हर अगर बाहर निकलना भी पड़ता है आपको, तो 15-20 मिनट के अंतराल पे 100-150 ml पानी आप बीच बीच में लेते रहें।
1: डॉक्टर साहब, आपने पानी का जिक्र किया और हम सब की आदत है कि हम धूप से आ रहे हैं चिलचिलाती हुई और एकदम ठंडा ठंडा पानी हमने पी लिया है, तो इसके क्या नुकसान है? नुकसान है भी या सिर्फ घर वाले ऐसे ही टोकते हैं मम्मियाँ कि जो है बस आप आए और ठंडा पानी पी लिया, कोल्ड ड्रिंक पी लिया या कोई भी तरल पदार्थ आपने ठंडा पी लिया, तो क्या वो नुकसान करता है दिल को?
0: देखिए, जो पानी अत्यधिक ठंडा पानी नुकसान करता है। दूसरा, जो सोडा ड्रिंक होता है या फिर जो कोल्ड ड्रिंक या जो भी इस तरह की कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हम लेते हैं, वो बेसिकली शरीर में उसका एब्जॉर्प्शन काफ़ी स्लो होता है, एज कम्पेयर टू नॉर्मल पानी की तुलना में धीरे धीरे शरीर में जाता है। तो जब भी हम डिहाइड्रेटेड रहते हैं तो उस समय हमें शरीर को पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है एब्जॉर्प्शन की, तो जो हम वो लेते हैं वो शरीर में पहुँच नहीं पाता, वो टाइम लगता है। उसके वजह से आप इवन आपने ले लिया है पानी या कोल्ड ड्रिंक या जूस लिया है, पर शरीर आपका डिहाइड्रेटेड है क्योंकि वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा, तो बेसिकली ज्यादा बेहतर रहेगा कि आप नॉर्मल पानी ही लीजिए।
1: नॉर्मल पानी लीजिए और सिप सिप करके लीजिए, इकट्ठा पानी आप जो गटगट गटगट बॉटल लगाई और पी गए पूरी बॉटल, वो नहीं करना।
0: नहीं, जैसे मैंने पहले कहा था, हर 15-20 मिनट के अंतराल पे आप पानी कुछ कुछ लेते रहे जब भी आप।
1: ओके डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि उनकी क्या समस्या है। हेलो, अपना नाम बताइए, जगह का नाम बताइए।
3: जी जी, हेलो मैडम, गुड आफ्टरनून मैडम, संजय तिवारी बोल रहे लखनऊ से।
1: अरे वाह जी, बताइए संजय जी, क्या समस्या है आपकी?
3: मैडम, हमको डॉक्टर साहब से ही पूछना है। डॉक्टर, गुड आफ्टरनून।
0: गुड आफ्टरनून संजय जी।
3: डॉक्टर जी, बताइए, जैसे एक हार्ट जो बीट्स होती है उसकी एक गुड स्पीड कितनी, उसकी रेंज की होती है? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कभी कभी हम सुबह अगर अपने हार्ट बीट नापते हैं तो 62 रहती है, 65 रहती है, ऑफिस में जब काम करते हैं तो कभी कभी 80 से अबव चली जाती है, डॉक्टर इसका क्या व्हाट रीजन सर?
0: देखिए, हार्ट की जो धड़कन हमारी नॉर्मल होती है 60 से 100 के बीच में, ये नॉर्मल होती है। जब भी हम रिलैक्स रहते हैं तो हार्ट को ज्यादा काम की जरूरत नहीं पड़ती है, तो हमारी दिल की धड़कन धीमी हो जाती है। जैसे हम सोएंगे तो शरीर को ज्यादा ब्लड की जरूरत है ही नहीं, और रिलैक्स पोजिशन में तो दिल की गति धीमी होती है। जब भी आप काम करेंगे तो धीरे धीरे गति बढ़ेगी, और जब आप एक्सेसिव वर्क करेंगे जैसे खेलेंगे या हैवी एक्टिविटी करेंगे तो शरीर को ज्यादा ब्लड की जरूरत है, तो हार्ट उतना ज्यादा ब्लड पंप करेगा, तो उस बीच धड़कन आपकी बढ़ेगी। ये नॉर्मल रिएक्शन है, 120-130 तक भी जा, 140 तक भी चली जाएगी, तो वो नॉर्मल है
1: जी। तो अगर आपकी भी समस्या है, आप भी दिल से जुड़ी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 0522-22-38845 पर, 2982377 पर। ये वो मैजिकल नंबर है जहां पर आपकी समस्या का समाधान है। हमारे साथ इस वक्त मनीष झा जी मौजूद हैं, लेंगे एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद गर्मियों में दिल का ख्याल कैसे रखें, इस पर चर्चा जारी है।
4: डायबिटीज, जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपर

0: जने वाली एक समस्या है जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: तो 12:14 और 6 सेकंड आप सुन रहे हैं हेल्थ एंड फिटनेस। आपके साथ है सिमरीन और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मनीष झा और विषय है हमारा कि गर्मियों में दिल का ख्याल कैसे रखें। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आइए जानते हैं और बातचीत करते हैं उनसे कि उनकी क्या समस्या है। हेलो
3: हेलो
2: जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं और अपनी परेशानी बताइए।
3: ग्राम पोस्ट परसेंदी कैसरगंज बहराइच से।
2: बहराइच से बात कर रहे हैं आप, अपने सवाल पूछे डॉक्टर साहब से।
3: मैम पहले तो डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार और सवाल मेरा यह है कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमसे दूर ही रहे गर्मी के महीने में, खासकर हृदय रोग हमसे दूर ही रहे एकदम।
4: नमस्कार जी, आप गर्मी में हृदय रोग आपसे दूर रहे तो इसके लिए बचाव के लिए सबसे ये है कि आप अत्यधिक गर्मी वाले समय में बाहर ना निकले, पहला चीज। दूसरा, जब ठंडा मौसम रहता है मॉर्निंग के आवर में और लेट जो शाम के बीच में, उसमें काफ़ी एक्सरसाइज करें। तीसरा, खान पान में काफ़ी ध्यान दें, अधिक तेल वाला और मसाला युक्त जो भोजन है वो कम लीजिए और डिहाइड्रेशन से बचे रहिए। हमेशा पानी लेते रहिए हर कुछ कुछ अंतराल पर ताकि शरीर में पानी की मात्रा कम ना हो पाए।
2: जी डॉक्टर साहब, एक और कमर्शियल ब्रेक लेंगे हम और उसके बाद बातचीत होगी हमारी।
0: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी,
1: थायराइड इम्बैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: जी, तो हमारे साथ भी इस वक्त बहुत ही अनुभवी डॉक्टर मौजूद हैं। अगर आप इस गर्मी के मौसम में हार्ट को लेकर चिंतित हैं, परेशान हैं या किसी तरह की समस्या से आप जूझ रहे हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, इसके अलावा मेल कर सकते हैं। नंबर्स मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ, 0522238845 2982377। इसके अलावा आप हमें fmakashwadi@gmail.com पर मेल भी कर सकते हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं डॉक्टर साहब, उनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो, आपको हमारी आवाज सुनाई पड़ रही है? शायद कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि जब हम पानी की बात करते हैं, अभी हमने जिक्र किया, तो एक सामान्य व्यक्ति को और एक हार्ट पेशेंट को पानी कितना पीना चाहिए?
4: देखिए, हार्ट पेशेंट में दो तरह का है। एक सामान्य व्यक्तियों को नॉर्मली 4 से 5 लीटर पानी लेना चाहिए। दूसरा, हार्ट के पेशेंट। हार्ट के पेशेंट दो तरह के होते हैं। एक होते हैं जिनके हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कम होती है, वैसे मरीजों को बहुत ज्यादा पानी नहीं लेना चाहिए।
2: अच्छा।
4: उन्हें गर्मियों के मौसम में 2 लीटर के आसपास 2-2.5 लीटर के आसपास पानी लेना चाहिए। लेकिन जिनकी पंपिंग कैपेसिटी, हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी अच्छी है, वो नॉर्मल सामान्य मनुष्य के जैसे ही 4 से 5 लीटर पानी ले।
2: डॉक्टर साहब एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो
5: हेलो,
2: हाँ जी, क्या नाम है आपका और कहाँ से बोल रही हैं आप?
5: जी, मैं सुरभि सिंह बोल रही हूँ।
2: क्या नाम बताया आपने?
5: सुरभि सिंह।
2: सुरभि जी, सवाल पूछिए सुरभि।
5: मेरा सवाल ये है
2: जी
5: कि हार्ट के मरीजों को मतलब किस तरह से अपना ख्याल रखना चाहिए?
2: डॉक्टर साहब, हार्ट के मरीज अगर आप हैं तो किस तरह से आप अपना ख्याल रखें, ये सवाल हमसे सुरभि पूछ रही हैं।
4: सुरभि जी, सुरभि जी, हार्ट का ख्याल रखने के लिए सबसे पहले आपको अपने खान पान में नियंत्रण रखना चाहिए। अधिक तेल चर्बी युक्त खाना मत खाइए। दूसरा, नियमित व्यायाम करते रहिए। रेगुलर 30 मिनट प्रतिदिन एक्सरसाइज की सलाह दी जाती है, मिनिमम वो करें या फिर ब्रिस्क वॉक करें, तेजी से चलना है। तीसरा, अगर कोई स्मोकिंग और अल्कोहल इस तरह की चीजें अगर है तो उससे बचे रहें।
2: जी डॉक्टर साहब, एक मेल हमारे पास आया है, लिखती हैं डॉक्टर सर को, मेरा नमस्कार सर, मेरा सवाल है, जब भी मैं जीने की सीढ़ियां चढ़ती हूं तो मेरे सीने में दर्द होने लगता है, मैं

0: हमेशा गर्म पानी से नहाती हूँ। गर्मियों में मुझे गर्मी बहुत अधिक लगती है, लेकिन ठंडे पानी से नहाने से ठंड लगने लगती है। इसके लक्षण क्या हो सकते हैं और मैं पानी का सेवन अधिक से अधिक करती हूँ, दिन भर में 6 से 7 लीटर पानी पी लेती हैं ये। क्या सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आपको लग रही है समस्या क्या है डॉक्टर साहब?
1: देखिए, जीने चढ़ने में अगर सांस फूलती है तो ये हार्ट की एक बीमारी के एक लक्षण हो सकते हैं। तो आप कृपया किसी डॉक्टर के पास चले जाएं, अपनी ECG, ECO और एक ट्रेडमिल टेस्ट होता है, ये 3 चीज़ें टेस्ट करा लें। साथ में कुछ ब्लड टेस्ट अपना करा लीजिए, जैसे कोलेस्ट्रॉल और शुगर, ये जाँचें करा लीजिए।
0: डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ और जुड़े हैं, आइए उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? हेलो,
2: हाँ हेलो,
0: नाम बताइए और कहाँ से बात कर रहे हैं और अपना सवाल डॉक्टर साहब से पूछे।
2: मेरा नाम असमत है, मैं लखीमपुर खीरी से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल यह है कि मेरे जो हाथ पैर है ना, उनसे पसीना आने लगता है और अजीब लगने लगता है।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, इनके चलने फिरने से शायद हाथों में पसीना आता है और इनको थोड़ी सी घबराहट होती है, यही कहना चाह रहे हैं आप?
2: मैम
0: जी,
2: मेरी उम्र 16 साल है और मैम मेरा एक और सवाल है, चेहरा साफ करने के लिए कोई ट्यूब हो तो बता दीजिए।
0: ये विषय नहीं है हमारा डॉक्टर साहब, इनको जो है समस्या हो रही है, हाथ में पसीना आ रहा है, क्या ये सिम्टम्स हो सकते हैं कि दिल में कुछ खराबी होना शुरू हो गई है मात्र 16 साल की उम्र में?
1: नहीं, क्या नाम आपने बताया?
0: हेलो, नाम क्या बताया आपने?
2: अल्तमस।
1: अल्तमस, देखिए ये हार्ट्स की बीमारी से कोई ये नहीं है, आप घबराएं नहीं, ये आपके घबराहट की वजह से होता है। आप बिल्कुल रिलैक्स, निश्चिंत रहिए, आपको अभी संभावना कम है हार्ट की बीमारी होने का। ठीक है, खूब पानी पीजिए और खूब एक्सरसाइज करिए।
0: 6 से 7 लीटर पानी पीना सही है?
1: 5 लीटर तक।
0: और सब एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं। हेलो, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है। आपसे जाना चाहेंगे कि ये तो हमने जाना कि क्या नहीं खाना चाहिए, क्या हमारे हार्ट को नुकसान करता है, आप डॉक्टर साहब ये बताइए कि किस तरह का खाना खाना चाहिए जो हमारे हार्ट को हेल्दी रखता है।
1: हार्ट को हेल्दी रखने के लिए हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फाइबरस, जिस खाने में फाइबर की प्रचुरता रहे वैसे खाना लीजिए। आपके जो खाने का जो प्लेट्स होता है उसका 1/3 पोर्शन फल और हरी सब्जियां होनी चाहिए।
0: अच्छा,
1: और कहा जाता है कि आप अपने प्लेट्स को रंग बिरंगा कर दें। डिफरेंट कलर्स के फ्रूट्स रहेंगे तो उसमें काफी एंटीऑक्सीडेंट, फ्लेवोनॉइड्स, वो सारी चीजें रहती है, वो आपके हार्ट को बढ़िया रखेगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल नियंत्रण में रखेगा।
0: जी, तो इस गंभीर विषय से चलते हैं एक छोटी से म्यूजिकल सफर पर और सुनाते हैं आपको एक बेहतरीन सा गीत। लेकिन उससे पहले डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे आपने बताया कि इस तरह का खाना खाने से हमारी दिल की सेहत जो है वो अच्छी रहती है, तला भुना आप अवॉइड करें तो किस लेवल तक अवॉइड करें, क्योंकि हमारे तो खान पान का हिस्सा है, बीइंग भारतीय इंडियन होने के नाते हम खाने में हमारे होता ही है, समोसे हमारे फेवरेट होते हैं, हर शाम हम चाय जरूर, चाय और समोसा साथ लेते हैं, तो कैसा इसको आप कैसे देखते हैं, इसकी मात्रा एकदम खत्म कर देनी चाहिए, कम मात्रा में लें तो चलेगा?
1: नहीं, धीरे धीरे इसको हमें कम करना। बेसिकली हम इंडियंस की डाइट में कार्बोहाइड्रेट और की मात्रा काफ़ी ज़्यादा रहता है, जेनेटिकली भी हम लोगों का ट्राइग्लिसराइड लेवल काफ़ी बढ़ा रहता है, इसलिए हम लोगों को इसका मात्रा नियंत्रण में रखना है।
0: जी डॉक्टर साहब, और जैसे कि मैंने कहा था कि इस सवाल के बाद हम आपको ले चलेंगे म्यूजिकल सफर पर।

0: जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
2: 12:25 आप सुन रहे हैं हेल्थ एंड फिटनेस, जिसमें हमारा आज का विषय है कि गर्मियों में दिल का ख्याल कैसे रखा जाए। वैसे तो डॉक्टर साहब, हमारी लाइफस्टाइल ने बहुत सारी डिजीजेस इजाद कर दी हैं जो पहले हमारे बुजुर्ग नहीं जानते थे। आपसे जानना चाहेंगे कि अब इसको हम बेहतर भी करने की कोशिश कर रहे हैं। आफ्टर कोविड बहुत सारी तब्दीलियां हमने अपनी जिंदगी में की हैं, जिसमें एक्सरसाइज, वॉक और योग जो है वो अब लोग जिंदगी में शामिल करने लगे हैं। क्या गर्मियों में हमें इनके वक्त में बदलाव कर देना चाहिए या बॉडी को थोड़ा रेस्ट देना चाहिए, क्या लगता है आपको?
3: नहीं, गर्मियों में भी एक्सरसाइज करिए, पर जो अत्यधिक गर्मी वो आप थोड़ा अर्ली मॉर्निंग कर ले, ज्यादा जब तक धूप ना निकले उसके पहले ही एक्सरसाइज, जब तक मौसम ठंडा रहता है उसमें एक्सरसाइज कर ले, और शाम में भी धूप जाने के बाद अगर शाम में अगर करते हैं तो लेट में थोड़ा देर करके एक्सरसाइज करें, ताकि
2: मतलब ज्यादा पेन ना लें गर्मियों में। लेकिन आप पेन लीजिए अगर आपको अपनी समस्या का हल जानना है। 0522-22-38845-2982377 ये वो मैजिकल नंबर हैं जिन पर आपको आपकी समस्या का समाधान मिल सकता है। डॉक्टर मनीष झा, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक कॉलर। आइए जानते हैं कि उनकी क्या समस्या है। नाम बताइए, जगह का नाम बताइए और डॉक्टर साहब अपना सवाल रखिए।
4: हेलो
2: जी, क्या नाम है आपका?
4: नमस्ते मैम।
2: नमस्ते
4: मैम, मैं मधु अंधेलिया पोस्ट फतेहपुर जिला उन्नाव से बोल रही हूँ।
2: जी
4: मैम, कभी कभी मेरे सीने में दर्द सा होता है अचानक।
2: जी तो डॉक्टर साहब, ये उन्नाव से बात कर रही है मधु, इनके सीने में कभी कभी इनको दर्द महसूस होता है, किस तरह का इन्हें जांच करने की जरूरत है या फिर गैस की नॉर्मल प्रॉब्लम भी हो सकती है?
3: मधु जी क्या बताएंगे, आपकी उम्र कितनी हो रही?
2: मधु अपनी उम्र बताइए आप।
4: मेरी सर 21 साल उम्र है।
3: और इसके
4: और दर्द भी होता है।
3: एक मधु जी, आप एक अपना ECG करा लीजिए, और चलने वलने पे तो आपको सीने में कोई दर्द नहीं होता है?
4: नहीं, चलने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, जैसे ऐसे बात करते हैं ना कभी कभी अगर कोई तेज बोल देता है तो घबराहट सी होती है, बस अचानक से सीने में दर्द होता
3: है। ये जो लक्षण हो रहे हैं, ये हार्ट की तरफ संभावना काफी कम है, पर उसके बावजूद भी आप एक ECG करवा लीजिए। धन्यवाद।
2: रुक साहब, अगर सीने में दर्द जैसे इन्होंने बताया और एज आपकी 40+ है, आपको सीने में दर्द है, घबराहट है, तुरंत अगर आपके सामने या फिर किसी को आपको लग रहा है कि ये जो सिम्टम्स हैं ये हार्ट अटैक के हैं, तो आपको क्या करना चाहिए जिससे रिलीफ मिल जाए वक्ती तौर पे?
3: देखिए, अगर सीने में दर्द हो रहा है, अगर किसी को आपको या किसी आपके जो मित्र हैं या किसी घर के संबंधी को, सबसे सबसे

0: पहले एक डिस्प्रीन की टैबलेट और एक सॉर्बिट्रेट की टैबलेट इमीडिएट ले लें, और वो काफ़ी हार्ट की जान बचाएगा। और दूसरा, किसी नज़दीक के किसी अस्पताल में चले जाएं, अपनी ECG करा लें, किसी चिकित्सक से तुरंत सलाह लें, इसे इग्नोर ना करें, गैस समझकर इग्नोर ना करें।
1: जी डॉक्टर साहब, एक मेल हमारे पास आया है, उसे भी शामिल कर लेते हैं। महेंद्र दीपान लिखते हैं, डॉक्टर साहब मेरा सवाल यह है कि गर्मियों में शरीर का तापमान नियंत्रित करने के लिए हमारा दिल बहुत तेजी से खून को त्वचा की तरफ पंप करता है, जिससे दिल पर काम का बोझ जो है वो बढ़ जाता है। ऐसे में यदि किसी मरीज का दिल पहले से ही कमजोर हो तो उनका इस दिल में एक्स्ट्रा लोड बढ़ जाता है, कैसे संभालें इसको, और इस स्थिति में साइलेंट हार्ट अटैक या हीट स्ट्रोक के अंतर को एक आम इंसान कैसे पहचाने?
0: देखिए, गर्मियों में आपने बिल्कुल सही कहा, जो नॉर्मल शरीर के रिएक्शंस होते हैं, त्वचा की नलिकाएं खुल जाती है ताकि उसमें ब्लड फ्लो ज़्यादा जाए, उसकी वजह से जो बॉडी जो है हीट रिलीज करने की कोशिश करता है। उस प्रक्रिया के दौरान हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो बेस्ट ये है कि आप उस परिस्थिति से बाहर निकले। क्यों आप बाहर जाएंगे? अगर आपको लगता है कि हार्ट के मरीज हैं और दिक्कत ज़्यादा हो रही है, तो आप यूजुअली अवॉइड करिए, बेस्ट ट्रीटमेंट है। और दूसरा, आपकी जो दवाएं चल रही हैं उसको नियमित रूप से लेते रहें, वो आपका काफी हद तक केयर रखेगा।
1: जी डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं,
2: से बात कर रहे हैं, उन्होंने आपके कॉल को
1: शायद वो उनका कोई और कॉल आ गया है। आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से हम गर्मियों में अक्सर ये करते हैं कि AC से फौरन हम गर्मी में चले गए, या चिलचिलाती धूप से आए और फौरन AC ऑन करके बिल्कुल सामने बैठ गए, ये किस तरह से नुकसानदेह हो सकता है हमारे लिए?
0: देखिए, अगर AC वाले कमरे में काफी चिल्ड हैं और अचानक हम बाहर निकलते हैं, तो बॉडी को एक हीट शॉक होता है।
1: अच्छा।
0: लगता है, तो उसकी वजह से काफी प्रोफ्यूजली, मतलब काफी ज्यादा पसीना आएगा, और शरीर जो तापमान का जो अंतर है तुरंत ही 15-20 डिग्री का, वो जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाता, तो इसकी वजह से काफी हीट स्ट्रोक और हार्ट फेलियर सबके जो इंसिडेंस बढ़ते हैं। तो बेटर है कि तापमान कमरे का बहुत कम मत करें, जो लोग बहुत लोग 18-20 कर लेते वो मत करिए, 25-26 के आसपास में जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उसके आसपास रहिए, और धीरे धीरे कमरे से तुरंत ही बाहर ना जाए, एक नॉर्मल वाला AC से बाहर निकले, नॉर्मल कमरे में आए और शरीर को थोड़ा एडजस्ट होने का टाइम दे, 1-2 मिनट, और उसके बाद बाहर निकले।
1: जी डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ हैं इस वक्त फोन लाइन पर। हेलो हेलो
3: हेलो,
1: नाम बताइए अपना और सवाल पूछिए।
3: मेरा नाम शीलू तिवारी है।
1: कहाँ से हैं आप शीलू?
3: मैं लखीमपुर खीरी से बोल रही हूँ।
1: शीलू, अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से।
3: मेरा सवाल ये है कि मुझे जब ज्यादा भीड़ में जाती हूँ तो घबराहट होने लगती है।
1: अच्छा, ज्यादा भीड़ में जाती हैं तो घबराहट होती है।
0: सिलू जी, ये थोड़ा एंजाइटी का लक्षण है, आप जो है सो थोड़ा रिलैक्स रहें, मेडिटेशन करिए, उससे ये ठीक हो जाएगा।
1: जी डॉक्टर साहब, एक और कॉलर को हम शामिल करते हैं इस कार्यक्रम में। हेलो, आहो लगता है कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। डॉक्टर साहब, अगर हम ये बात करें कि गर्मी जिस हिसाब से बढ़ रही है तो इंसानों के साथ साथ जानवरों के लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है, ये दौर जो हम लगातार नौतपा भी शुरू हो रहा है, किस तरह से हम बाहर निकलने से पहले अपने लिए क्या ऐसे पेय पदार्थ कुछ हैं जो पुराने तरीके में, जैसे आम पन्ना का जिक्र होता था, गन्ने के जूस का जिक्र होता था और सत्तू पिया जाता था कि गर्मी का प्रभाव हमारे ऊपर उतना ना पड़े, क्या ऐसी तैयारी करके निकले हम बाहर?
0: गर्मियों में जब भी आप बाहर निकले, अब शरीर में पानी की मात्रा मेंटेन रखना, डिहाइड्रेशन से बचना है, तो पानी मेंटेन रखना। दूसरा, जब बाहर में पसीना काफी आता है तो उसके साथ में शरीर सॉल्ट भी लूज करता है, तो हमें सॉल्ट को भी शरीर में बचा कर रखना। इसके लिए आप जो है कुछ कुछ अंतराल पे पानी लेते रहें, हर 15-20 मिनट पे 100-150 ml पानी लेते रहें। दूसरा, साथ में कुछ जो इस तरह के जो पुराने अपने देसी जो है आम पन्ना या इस तरह से, उसमें कुछ सॉल्ट रहते हैं, पोटेशियम सोडियम ये सब रहते हैं, तो वो सब आप लेते रहें ताकि शरीर में जो सॉल्ट की कमी होती है वो ना रहे।
1: जी डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ हैं इस प्रोग्राम में, उनसे जानते हैं क्या सवाल है।
4: मेरा नाम श्रीमंत त्रिपाठी है। मेरा सवाल ये है कि जैसे लो BP में भी मतलब चक्कर आते हैं, और हाई बीपी में भी मतलब इंसान को चक्कर आ जाते हैं, तो दोनों के सिम्टम्स में क्या अंतर है?
0: नहीं देखिए, दोनों के सिम्टम्स में कोई अंतर नहीं. चक्कर आएगा, अगर बीपी काफी कम हो जाएगा तो ब्रेन को जो है सो ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाता.

0: आती है, तो उसकी वजह से चक्कर आने लगते हैं
1: जी।
0: तो इसलिए अगर चक्कर आता है तो आप अपना जिस वजह से चक्कर आ रहा है तो आपको उसको क्योर करना होगा। अगर ब्लड प्रेशर लो रहता है तो आप अपने शरीर में लिक्विड की मात्रा बढ़ाएं, थोड़ा नमक और लिक्विड ज़्यादा लें, और अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है तो ब्लड प्रेशर को आप कंट्रोल करें, उसको 120-130 के आसपास, जितना क्लोज 120-80 के आसपास रखेंगे तो चक्कर आने की संभावना कम हो जाएगी।
1: डॉक्टर साहब, एक सावित्री देवी हैं, उन्होंने हमें मेल किया है कि गुड आफ्टरनून डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? मैं भरतपुर बरगदी पोस्ट अर्जुनपुर डिस्ट्रिक्ट लखनऊ से आपका प्रोग्राम सुन रही हूँ। सवाल ये है कि एक नॉर्मल इंसान कैसे जाने कि उसे हार्ट की बीमारी है, हार्ट प्रॉब्लम के क्या लक्षण होते हैं?
0: सावित्री जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। एक नॉर्मल आदमी को ये जानना सबसे ज़रूरी है कि कब उसे हार्ट की दिक्कत हो रही है और कब कोई नॉर्मल सी दूसरी बीमारी। जब भी आपको सावित्री जी अगर सीने में दर्द हो, तेज़ दर्द हो रहा है, आधे घंटे से ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो ये समझिए हार्ट की बीमारी हो सकती है। दूसरा, अगर दर्द नहीं होता है तो अगर आप चलते हैं, कुछ दूरी चलते हैं तो सीने में दर्द होता है या कसावट महसूस होता है या आपके जबड़े में दर्द होता है, बाएँ हाथ के तरफ दर्द जाता है, तो ये भी हार्ट लक्षण हो सकते। तीसरा, अगर आप जीने चढ़ते हैं, सीढ़ियों चढ़ते हैं तो उसमें सांस फूलने लगती है अचानक, तो ये हार्ट के लक्षण हो सकते हैं, तो उस समय आप अपना जांच करा लें।
1: डॉक्टर साहब, आपसे एक सवाल जो मेरे जहन में ये आ रहा है कि डायबिटीज और हाई बीपी के मरीजों में गर्मियों में क्या दिल से जुड़ी समस्याएं जो है वो बढ़ने के चांसेस रहते हैं, एक हेल्दी क्या एक नॉर्मल इंसान के कंपैरेटिवली अगर हम बात करें तो?
0: देखिए, डायबिटीज़ और जो नॉर्मल सभी मरीजों में हार्ट की बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है। ब्लड प्रेशर वाले मरीजों में जो स्ट्रोक के चांसेस जो गर्मियों में बढ़ जाते हैं, और डायबिटीज़ सब में कभी कभी डिहाइड्रेशन ज़्यादा हो जाने की वजह से एक डायबिटिक कीटोएसिडोसिस बीमारी कही जाती है, वो भी काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है।
1: जी जी, तो सब एक कॉलर है हमारे साथ, हेलो।
2: जी मैम, सुरेन मदेसिया बोल रहा हूँ
1: जी,
2: लखनऊ से।
1: हाँ, जी सवाल पूछिए।
2: मैंने दिखाया था मैम, जब से मतलब हार्ट भी तो सही है, जो हार्ट का अल्ट्रासाउंड होता है वो भी हुआ है, और मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है 220 210 260, आपकी 260 हो गया, और मैं तला भुंजा भी नहीं खा रहा हूँ, मैं क्या करूँ कि मेरा कम रहे?
0: सुधीर जी, देखिए, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल सचमुच में बढ़ा हुआ है, तो आप जो है सो तला भुना नहीं खा रहे, काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, साथ में कुछ खाने में फल काफ़ी बढ़ाइए। दूसरा, आप रेगुलर एक्सरसाइज करिए, 30 से 40 मिनट रोज चलिए, और अगर इसके बावजूद भी नहीं कंट्रोल होता है तो एक जो कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा ले लें।
1: जी डॉक्टर साहब, अभी इसके बाद हम लेंगे एक छोटा सा कॉमर्शियल और म्यूजिकल ब्रेक एक साथ, और उसके बाद हमारा जो विषय है गर्मियों में दिल का ख्याल कैसे रखें, इस पर हम चर्चा करेंगे, और आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में 0522-223-8845 और 2982377 नंबर्स के माध्यम से इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा आप fmakashwadi@gmail.com पर हमें मेल कर सकते हैं।
3: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है, और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
4: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज, एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
3: चरक हॉस्पिटल @ हरदोई रोड, दुबग्गा।

0: इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
1: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
0: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट ना आए।
1: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-4444।
2: और देखते ही देखते हमारा प्रोग्राम अब इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन कॉलर्स का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। अगर आप भी हमसे कुछ इस प्रोग्राम से विषय से संबंधित सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबरों पर 0522-223-8845-298-2377, fmakashwadi@gmail.com पर मेल के जरिए भी आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। जो सवाल अभी हमारे पास मेल पर आया है, उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खोरवाल जी लिखते हैं कि क्या हृदय रोग वाले सलाद में टमाटर खा सकते हैं?
3: उत्तम जी, हाँ, आप सलाद में टमाटर खा सकते हैं और सलाद में जो भी आपको सब्जियां लेते हैं आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ, एंटीलननेस कुछ बीमारियां होती है जिसमें, जैसे जिसकी वाल बदली की जाती है, धड़कन अनियमित रहती है, उन्हें ब्लड थीनर चलता है, खून पतला करने की दवा चलती है, वारफेरिन और एसीट्रॉम चलते हैं। उन केसेस में हमें हरी पत्तेदार सब्जियां अवॉइड करनी होती है, थोड़े से टमाटर और ये चीज़ें थोड़ी अवॉइड करनी पड़ती है। अगर
2: लगातार हमारे पास मेल्स की संख्या बढ़ती जा रही है, जल्दी से मेल्स भी ले लेते हैं और उसके बाद कॉलर भी हमारा इंतजार कर रहे हैं। आनंद तिवारी लिखते हैं कि इनके नाक पर ज्यादा सूजन आ जाती है गर्मियों में और इरिटेशन और खुजली भी होती है और अपने आप ये दाने जो है वो ठीक भी हो जाते हैं, तो ये गर्मी की वजह से होता है या क्या रीजन है?
3: हाँ, ये लोकल स्किन रिएक्शन है या सनबर्न की वजह से होता है, ये गर्मी की वजह से हो रहा है आपका
2: जी। एक और सवाल डॉक्टर साहब, राज जी लिखते हैं कि मेरी बड़ी बेटी जिसकी उम्र 14 साल है, उसे काफी दिनों से सिरदर्द की शिकायत है, बहुत दवा कराने के बाद भी उसका सिरदर्द ठीक नहीं हो रहा है, कृपया बताइए कि इसके क्या कारण हो सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए?
3: सिरदर्द, देखिए आप पहले तो वो देख लीजिए कि कोई बच्ची स्ट्रेस तो नहीं ले रही है किसी तरह से, पहला सबसे पहला वो देखिए, और दूसरा उसको कुछ हेल्दी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करिए, तीसरा अगर इन सब के वजहों से आराम नहीं होता है, काफ़ी सरदर्द होता है, तो किसी एक न्यूरोलॉजिस्ट से मिल लीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा उपयुक्त रहेंगे।
2: एक सवाल सावित्री जी का फिर से आया है, वो लिखती हैं कि डॉक्टर जी ये बता दीजिए कि हार्ट अटैक की समस्या

0: उम्र में ज्यादा होने की संभावना होती है?
1: देखिए, हार्ट अटैक की समस्या यूजुअली 50 साल के एवं अधिक में ज्यादा होती है, पर आजकल जो है सो आजकल हम युवाओं में भी हार्ट अटैक ज्यादा देख रहे हैं, कम उम्र में भी हार्ट अटैक ज्यादा देख रहे हैं। तो बेस्ट है कि पहले से ही प्रिवेंशन में रहिए, उसका बचाव करते रहिए।
0: जी डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए जानते हैं कि उनका क्या सवाल है। आप हमें सुन पा रहे हैं?
2: हेलो।
0: हाँ जी, नाम बता दीजिए। और
2: आर्यन तिवारी बोल रहा हूँ लखनऊ से।
0: जी जी
2: साहब, डॉक्टर साहब को नमस्कार। और ये पूछना है, हेलो, आवाज आ रही है?
0: जी आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है।
2: जी जी, तो ये हमें पूछना है कि जो बड़े लोग, उम्र के लोग हैं, सीनियर सिटीजन ग्रुप में
0: जी,
2: और वो पेशेंट नहीं है हार्ट के
0: जी,
2: लेकिन उनको खाने पीने में और गर्मियों से तो बचना ही है, लू से बचना ही जो आप बता रहे हैं, तो उसमें ये मसालेदार खाना है और उसमें जैसे प्याज है, अदरक है, लहसुन है, इनको कम कर देना होगा ना?
1: हाँ, नमस्कार तिवारी जी।
2: नमस्कार।
1: सीनियर सिटीजन्स को आप लोगों को, हाँ, गर्मी से बचना आपने बिल्कुल सही कहा। उसके साथ में अत्यधिक तेल मसाले वाले खाने से अवॉइड करिए, क्योंकि वो शरीर में पचने में समय लगता है, और जो उसको जितना अवॉइड करेंगे बेटर रहेगा। और फ्रूट्स, फल, हरी सब्जियां काफी लीजिए।
0: डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े थे जिन्होंने कहा कि वो ऑन एयर आगे सवाल नहीं पूछना चाहते, लेकिन उनका सवाल ये था कि वो जब भी पानी पीते हैं उनको एंजाइटी होती है या घबराहट होती है, तो वो और ज्यादा बढ़ जाती है, तो इसका क्या रीजन हो सकता है? ये एंजाइटी है या हार्ट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकती है कि पानी पीने के बाद घबराहट बढ़ रही है?
1: नहीं, ये हार्ट से ये लक्षण नहीं लग रहे, ये एंजाइटी से लक्षण है। आप पानी धीरे धीरे लें और रिलैक्स रहें।
0: डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ और हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो, आपसे डॉक्टर साहब एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि आजकल हमारा लाइफस्टाइल बदलने से खान पान में भी बहुत बदलाव आया है, हम क्विक फूड की तरफ जा चुके हैं, फास्ट फूड प्रेफर करते हैं, और ऐसे में जो सुबह का सबसे इम्पॉर्टेंट खान मील है हमारा ब्रेकफास्ट, उसको भी रिप्लेस कर दिया है सैंडविचेस ने, बिस्किट्स ने, चाय पी ली आपने सुबह, जबकि पहले हम लोग के वक्त में आप प्रॉपर या तो सब्जी रोटी खा रहे होते थे या दलिया खा रहे होते थे, तो इसका कितना नुकसान हमें झेलना पड़ सकता है?
1: देखिए, हम लोग जो सैंडविचेस और क्विक फूड्स ले रहे हैं, यूजुअली इसमें या तो फैट की मात्रा ज्यादा होती है नॉर्मल लेने से,
0: जी, जी,
1: या फिर इसमें फास्ट फूड्स में सॉल्ट की मात्रा काफी ज्यादा। तीसरा, जो सैंडविचेस और ये है, इसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है और विथ हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब है जब भी हम लेते हैं इसमें शरीर में अचानक शुगर स्पाइक बढ़ा देता है, लेने के साथ तुरंत ही शुगर का लेवल ज्यादा बढ़, शुगर का लेवल एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा अगर बढ़ता है तो सारे अंगों को वो नुकसान पहुंचाता है। पर अगर इसको हम लोग रिप्लेस कर दें फल से, उतने ही मीठे अगर फल और वो रहे तो उनकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी लो होते हैं, जैसे तरबूज है या सेब है तो उनकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी लो होता है, तो वो उतना ही शुगर काफी धीरे धीरे रिलीज करता है।
0: नाश्ते में आप फ्रूट्स खाएं।
1: हाँ, नाश्ते में बेसिकली फ्रूट्स लें,
0: लेकिन ऐसा कहा जाता है, पुराने लोग कहते थे कि नहीं, खाली पेट मत खाओ फ्रूट्स, ऐसा
1: नहीं, ऐसा कुछ नहीं, फ्रूट्स लीजिए, आप मिल्क लीजिए अच्छे से, प्रोटीन अपना बढ़ाइए।
0: डॉक्टर साहब, एक और सवाल कि जो हमारा पोल्यूशन है वो भी बेहद बढ़ता जा रहा है, ये किस तरह से हमारे हार्ट को इम्पैक्ट करता है? जब हम बाहर निकलें तो क्या मास्क पहन के जाएं? और एक कॉलर भी और जुड़ चुके हैं, दोनों सवालों के जवाब मैं आपसे एक साथ जानना चाहूंगी क्योंकि समय की थोड़ी सी कमी हो चुकी है। हेलो
3: हेलो,
0: जल्दी से अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए।
3: विनीत कुमार सीतापुर से बोल रहे
0: हैं। सवाल पूछिए।
3: सवाल ये है कि जैसे काम ज्यादा देर करते रहो,
0: हाँ,
3: तो दिल बैठने लगता है,
0: हाँ,
3: और पेट में जैसे आगपना और खौलन हो जाती है, मांगने लगती है।
0: काम क्या करते हैं आप बनी जी?
3: काम तो हम ये खेती और बाड़ी करते हैं।
0: मजदूरी का आपका काम है, ठीक है। सवाल आपने सुन लिया, डॉक्टर साहब क्या जवाब है इसका?
1: दिलीप जी, काम ज्यादा करते हैं तो अगर जो दिक्कत आपको महसूस हो रही तो ये हार्ट से हो सकता है आपका, तो एक बार आप अपना हार्ट का जांच करा लीजिए। दूसरा, पेट में जो दिक्कतें हो रही है वो लग रहा है कि वो एसिडिटी सब की वजह से है, तो आप उसके लिए एसिडिटी की दवाइयाँ ले लीजिए, और पर हार्ट की जरूर जाँच करा लीजिए किसी भी आसपास के जो भी चिकित्सक आपके उपलब्ध हो।
0: एक कॉलर और है, आप अपना सवाल पूछिए।
4: मैम नमस्ते, मैं इंद्रानगर से बोल रहा था, इंद्रा लखनऊ से, संजय है
0: जी। संजय
4: मैम, मुझे ये जानना था, थोड़ा सा मेरी क्वेरी है कि मेरे पिताजी और मेरी माताजी दोनों की मृत्यु जो है हार्ट अटैक से हुई है लास्ट 10 इयर्स में, और कभी कभी जैसे बहुत घबराहट होती है तो जैसे लगता है दिल बैठ

0: जा रहा है मेरे को, तो ऐसा मेरे को लगता है कहीं ऐसा ना हो कि मुझे भी कभी हार्ट की दिक्कत हो जाए,
1: जी जी
0: है ना, या हार्ट की दिक्कत है तो नहीं, लेकिन हालांकि मैंने चेक कराए हैं सारी चीजें
1: जी जी
0: तो
1: संजय
0: ऐसा कुछ निकला नहीं, लेकिन क्या भविष्य के लिए क्या ऐसा कुछ संभावना है या हो सकती है कि कोई हमें भी इसकी दिक्कत हो जाए
1: जी, आपको सवाल का
0: जहरीली
1: जवाब देंगे डॉक्टर
0: चीजें
1: साहब।
0: या क्या? और
2: संजय जी, आपकी जैसे फैमिली हिस्ट्री है कि आपके जो पिताजी को भी हार्ट की बीमारी रही है, माता जी को की भी जो है अनफॉर्चुनेटली हार्ट की बीमारी से मृत्यु हुई है, तो एक संभावना आपके भी है। तो आप अपना, जैसे कहा कि हम रेगुलर चेक कराते हैं, उसी तरह आप अपना रेगुलर चेक कराते रहिए, आप अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करते रहिए, दूसरा आप अपनी ECG TMT बीच में करा लीजिए, और तीसरा हेल्दी डाइट अपना जो है सो संतुलित रखिए, हेल्दी डाइट लीजिए, और रेगुलर एक्सरसाइज और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन रखिए कि बढ़िया जो संतुलित जीवन रहे, व्यायाम करिए, बस बचने का यही रास्ता है।
1: जी डॉक्टर साहब, मैंने जाते जाते एक सवाल और आपसे लेंगे, उसके बाद कमर्शियल ब्रेक लेंगे, कि बाहर का जो पोल्यूशन है वो किस तरह से हमारे हार्ट को इम्पैक्ट करता है।
2: बाहर का पॉल्यूशन जो है सो हमारे हार्ट को असर करता है, जो पॉल्यूशन की वजह से हार्ट अटैक के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं जैसे,
1: अच्छा
2: तो
1: हाँ,
2: इसलिए पॉल्यूशन से अवॉइड करना है हम
1: कैसे,
2: लोग,
1: मास्क लगा के जाए
2: हम
1: या?
2: जहाँ लगता है कि काफ़ी धूल धुआं है
1: जी
2: वैसे
1: जी
2: जगहों पे आप मास्क लगा के अब जाए।
1: जी तो इस समय एक छोटे से कॉमर्शियल ब्रेक का, और उसके बाद गर्मियों में कैसे रखें दिल का हाल विषय पर चर्चा जारी रहेगी।
3: जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है, और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
4: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज, एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज डाइट प्लान और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
3: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
1: बारह बजकर 50 मिनट और 56 सेकंड, हेल्थ एंड फिटनेस सुन रहे हैं आप मेरे साथ यानी सबरीन के साथ, और हमारे साथ डॉक्टर मनीष झा जी मौजूद हैं, जो लगातार हमें बता रहे हैं कि इस बढ़ती गर्मी में किस तरह से आप अपने दिल का ख्याल रखें, क्या होनी चाहिए आपकी रूटीन लाइफ, क्या होना चाहिए आपका खान पान, किस तरह से आप अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करें। और अगर आप भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में खत्म होते होते शामिल होना चाहते हैं और आप हमारे नंबर से वाकिफ नहीं हैं, तो मैं आपको बता दूं 0522238845298237 और अगर आप की फोन जो है वो नहीं लग पा रहा है किसी वजह से, तो आप हमें fmakashwani.lucknow@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। ये वो वक्त है जब आपकी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। एक मेल जो हमारे पास आया है उसे शामिल कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, तनु शर्मा दुबग्गा लखनऊ से सवाल पूछती हैं कि उनकी जो एज है वो 25 साल है, और वो कहती हैं कि जब मैं बात करती हूँ फोन से या थोड़ा बहुत पैदल चल लेती हूँ तो मेरे सीने में दर्द होता है, अंदर से घबराहट होती है, चलने में चक्कर जैसे आते हैं। मैंने CBC जांच कराई थी, TIS 11,800 है और मुझे 6 महीने की प्रेगनेंसी भी है। सर, इसी की वजह से तो ऐसा नहीं हो रहा कि मुझे गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है?
2: ये प्रेगनेंसी में हो सकता है कि आपको जो चलने पे सांस की जो दिक्कतें होती है, पर अगर ये अत्यधिक हो जाए, डिस्प्रोपोर्शनेटली बढ़े, तो फिर एक इको टेस्ट जरूर करवा लीजिए, पर रेगुलर एक्सरसाइज और वॉक करते रहिए और अपना हीमोग्लोबिन को कंट्रोल रखिए।
1: जी, तो लगातार चेक बनाए रखिए, टेस्ट के जरिए हर 6 महीने पर आप टेस्ट कराते रहें,
2: हाँ, बीच बीच में
1: रूटीन। ओके, एक कॉलर हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका?
5: हेलो,
1: नाम बताइए अपना, कहाँ से बात कर रहे हैं और आपका सवाल क्या है?
5: मेरा नाम प्रकाश गुप्ता है, ये लखनऊ से बात कर रहे हैं।
1: लखनऊ से बात कर रहे हैं?
5: हाँ, लखनऊ से बात।
1: सवाल क्या है आपका?
5: जी, हमें ये ठंड में बहुत ही दिक्कत हो जाती है, सांस फूलती है, हम आयरन की गोली डेली खा रहे हैं 2-3 साल से,
1: जी जी
5: रहता है, और उसके बाद फिर दिक्कत हो जाती है, ठंड में ज्यादा होती है।
2: प्रकाश जी देखिए, ये दो दो बीमारियां हो सकती है, या तो आपको कुछ फेफड़े की भी बीमारी हो या हार्ट की भी है, तो आप अपना एक रेगुलर चेकअप करा लीजिए, कुछ एक्सरे करा लीजिए, पीएफटी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, ये दो जांचें करा लीजिए। ये फेफड़े की अगर कोई बीमारी होगी तो उसके लिए टेस्ट हो जाएगा, बेसिक टेस्ट है, और दूसरा कुछ हार्ट की जाँचें ईसीजी और एक ईको करा लीजिए किसी भी आसपास में जो भी आपके विशेषज्ञ हैं।

0: उपलब्ध हो उनसे।
1: तो जी जी डॉक्टर साहब, अब एक छोटा सा हम कमर्शियल ब्रेक लेंगे और उसके बाद फिर से सवालों को शामिल करेंगे।
2: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
3: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
2: पाएं पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
3: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444।
1: तो देखते ही देखते दोस्तों, सिर्फ बमुश्किल हमारे पास 6 मिनट और बचे हैं, जिसमें आप मेल कर सकते हैं हमें और कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक महत्वपूर्ण सवाल जो मैं आपसे जानना चाहूंगी, हमारे युवा भी उससे ग्रसित हैं, हमारे एल्डर्स भी उसमें शामिल हैं, धूम्रपान यानी कि स्मोकिंग किस तरह से हमारे हार्ट को नुकसान देती है, और ये भी बताएगा कि बहुत सारे लोगों से अगर इसके लिए मना करिए कि ये हार्ट को नुकसान करती है, तो वो ये कहते हैं कि नहीं, मैं तो दिन भर में बस 1-2 लेता हूँ। कुछ चेन स्मोकर्स को कैसे नुकसान करती है, और जो कम लेते हैं उनको कैसे नुकसान करती है, और साथ ही साथ एक ये भी लॉजिक दिया जाता है कि बाहर इतना धुआं है, इतना पॉल्यूशन है, कि अगर आप सिगरेट नहीं भी पी पा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दिए जाते हैं, इस बारे में आप थोड़ी सी रोशनी डालिए।
0: स्मोकिंग आपके हार्ट का सबसे बड़ा दुश्मन है। इवन हम लोगों ने देखा है कि अगर मॉर्निंग का एक सिंगल सिगरेट लिया है, उसके बाद काफ़ी मरीज हार्ट अटैक लेके आते हैं। बेसिकली अच्छा। होता क्या है कि स्मोकिंग करने में उसमें काफ़ी तरह के केमिकल्स रहते हैं, वो आपके हार्ट की गति को बढ़ा देते हैं, साथ में जो हार्ट के अंदर ब्लड वेसल्स की जो अंदर की लाइनिंग होती है, उस लाइनिंग को वो डिस्टर्ब करते हैं। तो जो स्मूथ लाइनिंग रहती है, तो की वजह से ब्लड काफी आराम से फ्लो करता है, तो वो लाइनिंग जब डिस्टर्ब हो जाती है, तो उसमें ब्लड आके जमने लगता है। ये वजह है कि उसमें खून के थक्के आके जम जाते हैं और हार्ट अटैक होता है। तो मेरी सलाह सबसे अच्छी रहेगी कि आप बिल्कुल स्मोकिंग छोड़िए और एक्सरसाइज करिए।
1: और पैसिव स्मोकिंग पर भी मैं आपका कहना चाहूंगी,
0: स्मोकिंग आइदर या तो एक्टिव रहे या पैसिव रहे, दोनों जो है सो सेम अमाउंट, क्योंकि हमारे बॉडी में वो सारे केमिकल्स तो जा ही रहे, तो दोनों नुकसानदेह होता है, तो इसलिए पैसिव स्मोकिंग भी अवॉइड करना चाहिए।
1: जाते जाते हमारे आखिरी कॉलर को मैं इस प्रोग्राम में शामिल करना चाहती हूँ। आइए जानते हैं कि उनका क्या सवाल है। नाम बताइए, अपनी जगह का नाम बताइए और सवाल बताइए।
4: नमस्ते।
1: नमस्ते। नाम बताइए अपना।
4: जी जिला औरैया ग्राम पुराने छल्ला से गगनदीप कमल बोल रहे।
1: गगन जी, सवाल पूछिए अपना।
4: पानी पीने में सीने में दर्द होने लगता है, ये क्या समस्या है उसमें?
0: गगनदीप जी, पानी पीने में ज्यादा अगर तेजी से कभी कभी पानी पीते हैं, तो जो आहार नली है उसमें संकुचन की वजह से दर्द होने लगता है, तो आप जो है सो धीरे धीरे पानी पीजिए, तो और आराम से पानी लीजिए बस।
1: तो इसी के साथ हम इस कार्यक्रम से अब लेंगे आपसे इजाजत। यकीनन आज के इस कार्यक्रम में दी गई जानकारियों से आप अपने दिल का इस बढ़ती हुई गर्मी में बेहतर ख्याल रख सकेंगे, और इसी तरह का कोई और मौजू, कोई और विषय लेकर हम अगली बार आपसे हेल्थ एंड फिटनेस पे फिर मुलाकात करेंगे। डॉक्टर साहब, आप आए हमारे स्टूडियो में, इतनी बेहतरीन जानकारियां दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: FM रेनबो के सारे श्रोताओं को मेरा नमस्कार,
1: धन्यवाद।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे 300 बेड वाले सुपर स्पेशलिटी चरक हॉस्पिटल दुबग्गा लखनऊ।
1: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
2: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
1: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।

0: सुबह की खूबसूरत शुरुआत। सुकून से भरा दोपहर,
1: पुरानी जींस और गिटार,
0: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद, शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर
2: है, रते जगा।
0: फिर रात को फुर्सत के वो पल,
3: ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा,
0: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज। एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: नमस्कार, आप सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भीषण गर्मी और बढ़ती बिजली मांग के बीच प्रदेश में निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन, किसानों, व्यापारियों और उद्योगों को बिजली संकट का सामना ना करना पड़े, इसके लिए सभी स्तरों पर सतत मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने कहा कि गर्मी के इस चुनौतीपूर्ण दौर में ऊर्जा विभाग पूरी संवेदनशीलता और तत्परता के साथ कार्य करे। मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ में ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा और राज्य मंत्री कैलाश सिंह राजपूत की उपस्थिति में ऊर्जा विभाग, पावर कॉरपोरेशन एवं सभी डिस्कॉम के अधिकारियों के साथ विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो कल आगरा में ताजमहल का दीदार करेंगे। वो विशेष वायुयान से आगरा पहुंचेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री का काफिला खेरिया एयरपोर्ट से शिल्पग्राम पहुंचेगा। शिल्पग्राम से बैटरी चलित गोल्फ कार्ट में बैठकर वह ताजमहल के पूर्वी गेट पहुंचेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री के आगरा भ्रमण के मद्देनजर केंद्र एवं प्रांतीय खुफिया एजेंसी सतर्क है। ताजमहल के आसपास के होटलों में कड़ी निगरानी रखी जा रही है। रूबियो भारत की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। केंद्र सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा ना करने की सलाह दी है। सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने या एहतियातन बरतने की निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को आपात स्थिति घोषित किया है। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा आज उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। परीक्षा को लेकर आयोग ने व्यापक इंतजाम किए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से कड़ी निगरानी की जा रही है। इसी क्रम में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने आज मेरठ में यूपीएससी परीक्षा केंद्र केवी डोगरा लाइन का निरीक्षण किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि मेरठ में परीक्षा केंद्रों पर सभी व्यवस्था अच्छे तरीके से की गई है। डॉक्टर कुमार ने कहा कि आयोग का उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया को अनुकूल, सुलभ और प्रभावी बनाना है। मेरठ को पहली बार आयोग की परीक्षा केंद्र बनाया है। लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल ने आज नगर निगम मुख्यालय में फजुल्लागंज वार्ड से ललित किशोर तिवारी को पार्षद पद की शपथ दिलाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ललित किशोर तिवारी को शपथ ना दिलाने के कारण लखनऊ की महापौर के सभी वित्तीय अधिकार सीज कर दिए थे। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने सख्त गर्मी और बढ़ती हुई बिजली की मांग के दरमियान रियासत में बिला तातुल और मेयारी बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत दी है। वज़ीर आला ने कहा कि हर सतह पर मुसलसल मॉनिटरिंग की जाए ताकि आम लोगों, किसानों, ताजिरों और सनअतों को बिजली के बहरान का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि महकमा तवानाई को गर्मी के इस मुश्किल दौर में पूरी हसासियत और तंदही से काम करना चाहिए। आज वज़ीर तवानाई अरविंद कुमार शर्मा और रियासती वज़ीर अखिलेश सिंह राजपूत की मौजूदगी में वज़ीर आला महकमा तवानाई, पावर कॉरपोरेशन और तमाम डिस्कॉम के अफसरान के साथ बिजली की फराहमी के निज़ाम का जायज़ा ले रहे थे। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में मेहनत और रोज़गार महकमे की मुख्तलिफ़ स्कीमों और प्रोग्रामों पर एक जायज़ा मीटिंग की। इस मौके पर उन्होंने चाइल्ड लेबर एजुकेशन स्कीम के बारे में बातचीत की, जो इस वक्त 20 अज़ला में चल रही है, और हिदायत दी कि इसे रियासत के तमाम 75 ज़िलों में नई दफ़ात के साथ नाफिज़ किया जाए। एक रिपोर्ट।
1: मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिक केवल उत्पादन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था और प्रगति की सबसे बड़ी शक्ति हैं। सरकार की प्राथमिकता है कि श्रमिकों, युवाओं और कमजोर वर्गों को सम्मानजनक जीवन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुरक्षित कार्य वातावरण और बेहतर रोजगार अवसर उपलब्ध हों। मुख्यमंत्री ने सेवा मित्र व्यवस्था को रोजगार और जन सुविधा का अभिनव मॉडल बताते हुए कहा कि तकनीक आधारित ऐसी व्यवस्थाएं युवाओं और कुशल कामगारों के लिए नए अवसर तैयार करती हैं। मुख्यमंत्री ने निर्माण श्रमिकों के लिए सभी औद्योगिक शहरों में प्रस्तावित श्रमिक सुविधा केंद्रों यानी लेबर अड्डों को व्यवस्थित रूप से विकसित करने के निर्देश दिए। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने हिदायत दी है कि महसूलात के मामलात को तेज़ी के साथ शफाफ और मेयारी तरीके से निपटाने को हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि ज़मीन और रेवेन्यू से मुतालिक मामलात में गैर ज़रूरी ताखीर किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होगी। वज़ीर आला ने वाज़ह हिदायत दी कि मुकर्रा मुद्दत के बाद भी ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात में मुतालिका अफसरान और अहलकारों की जवाबदेही तय करके ज़रूरी कार्रवाई को यकीनी बनाया जाए। कल लखनऊ में रेवेन्यू अदालतों में ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात के निपटाने की पेशरफ्त का जायज़ा लेते हुए वज़ीर आला ने कहा कि टेक्नोलॉजी पर मबनी निज़ाम, जवाबदेही और बरवक्त काम के ज़रिए रेवेन्यू अदालतों को मज़ीद मुअस्सर बनाया जाए। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत में मौसम से मुतालिक इब्तदाई वार्निंग सिस्टम को ज़्यादा दुरुस्त, तेज़ और आवाम पर मरकूज बनाने की हिदायत दी है। कल लखनऊ में रिलीफ एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की एक जायज़ा मीटिंग में वज़ीर आला ने कहा कि कुदरती आफात के दौरान बरवक्त और दुरुस्त मालूमात बहुत सी जानें बचा सकती है, इसलिए मौसम की पेशगोई और वार्निंग के निज़ाम को सिर्फ तकनीकी इंतजाम तक महदूद रखने के बजाय मुअस्सर तरीके से आखिरी फर्द तक पहुँचाने के इंतजाम किए जाएँ। उन्होंने गाँव और हसास इलाकों में लास्ट माइल कनेक्टिविटी मजबूत करने, IVRS पंचायत सतह के लाउड स्पीकर्स, मकामी FM रेडियो, मोबाइल अलर्ट्स और सोशल मीडिया का वसी इस्तेमाल करने की हिदायत दी। रियासत के शहरी तरक्की और तवानाई के वज़ीर AK शर्मा की हिदायत पर बिजली महकमे में काम में लापरवाही बरतने वाले अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। इस सिलसिले में मेरठ में तैनात एग्जीक्यूटिव इंजीनियर योगेश कुमार को महकमा जाती कामों में लापरवाही बरतने पर फौरी असर से मुअत्तल कर दिया गया है। वहीं गाज़ियाबाद में तैनात एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राहुल को भी अपने फ़राइज़ में संगीन लापरवाही बरतने पर फौरी असर से मुअत्तल कर दिया गया।

सिविल सर्विसेज के लिए प्रीलिम्स 2026 का इम्तिहान आज मुनाकिद किया जा रहा है। इस बार सिविल सर्विसेज के इम्तिहान के लिए मेरठ, कानपुर और भुवनेश्वर में नए इम्तिहान मरकज जोड़े गए हैं। यूपीएससी के चेयरमैन डॉक्टर अजय कुमार ने आज मेरठ में इम्तिहान मरकज KV डोगरा लाइन का मुआयना किया और बताया कि मेरठ में तमाम इम्तिहान मराकज पर सारे इंतजाम अच्छी तरह किए गए हैं। डॉक्टर अजय कुमार ने यह भी कहा कि कमीशन का मकसद इम्तिहानी अमल को आसान, काबिल रसाई और मौसर बनाना है। उन्होंने कहा कि नए मराकज के इजाफे से उम्मीदवारों को बेहतर सहूलियात मुयसर होंगी। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद लखनऊ के जरिए मुनाकिद मुंशी मौलवी सेकेंडरी और आलिम सीनियर सेकेंडरी बोर्ड इम्तहान 2026 के नतज का कल ऐलान कर दिया गया। इस साल मदरसा बोर्ड के इम्तहान का नतीजा 88.26% रहा, जिसमें लड़कियों ने लड़कों से बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। रियासत के तकरीबन तमाम अजला में इन दिनों शदीद गर्मी पड़ रही है, जिससे लोगों की ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर है। बेशतर अजला में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से तजावज़ कर गया है। बांदा रियासत का गर्म तरीन ज़िला बना हुआ है। बांदा के एडिशनल ज़िला मजिस्ट्रेट कुमार धर्मेंद्र ने बताया कि इंतजामिया ने गर्मी और बचाव के लिए वसी इंतजाम किए हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।

1:16 आप हैं मेरे साथ कि हम शुरू कर चुके हैं प्रोग्राम पे तेरी बात। और इस प्रोग्राम में आज बातचीत करेंगे कि जब सेल आती है तो हम में कैसी हलचल मचती है। हम वो चीज़ें भी खरीद लेते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होती है या फिर हमें ज़रूरत नहीं होती है उसके लिए, चूंकि दाम कम है इसलिए हमें ख़रीदना है। ये कॉन्सेप्ट कितना सही है कितना गलत, ये आप हमें मेल पर भेज सकते हैं। और कैसा रहता है सेल्स के दौरान आपका एक्सपीरियंस हमें बताइए। आप हमें मेल भेज सकते हैं fmakashwadi@gmail.com पर, और बातों का सिलसिला और आपके इस पर थॉट्स का सिलसिला जारी रहेगा। और साथ ही शामिल होगा कुछ ऐसा बेहतरीन म्यूजिक भी जो आपके दिल को खुश कर दे।

बचते बचाते छाओं में चलते रहें, लेकिन जिंदगी कहाँ ये मौके देती है। एक बार फिर से आप सभी का होटो पे तेरी बात पे मैं समरीन स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेल आपकी स्मार्ट शॉपिंग है या फिर बेवजह का खर्च, इस पर आपके क्या विचार हैं। हमारे पास मेल्स आने शुरू हो गए हैं। पहला मेल जो हमारे पास आया है वो आया है सुधाकर यादव जी का। लिखते हैं, सेल कभी भी लगी हो लेडीज बहुत खुश हो जाती हैं। सेल होने की वजह से लेडीज बहुत शॉपिंग करती हैं, लेकिन सेल में सभी वस्तुएं अच्छी नहीं होती हैं, कोई तो कभी कभी डिफेक्टेड भी होती हैं, और वस्तु घर आने पर चेक होती है कि उसमें ये फॉल्ट है, और बाद में उसकी वास्तविकता समझ में आती है और फिर वो एक्सचेंज नहीं हो सकती क्योंकि सेल में ली हुई चीज़ वापस नहीं होती है। तो ये बात तो आपने सही कही, लेकिन ये भी है कि हम बहुत बार सेल में मुनाफे का सौदा भी करते हैं। कोई चीज़ हमें लेनी है और हमने अच्छा खासा इंतज़ार किया और उसके बाद वो हमें बहुत कम रेट में भी मिल जाती है। आगे लिखते हैं, रामराज जी, श्री गणेशाय नमः, होटो पे तेरी बात, जिला रायबरेली, गांव पहाड़ीपुर से, रामराज राजू भानु शंकर भैया बाप पासी, मनीष नीरज मधु बजरंगी काका मिर्जा इमरान बेग, सबसे पहले हमारी तरफ से आपको प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद। और अगला मेल हमें भेजा है नीलू जी ने, लिखती हैं कि यूं तो मिलते हैं जमाने में बहुत लोग, लेकिन समरिंदी आपको सुना सबसे अच्छा लगा। समरिंदी जब ज्यादा दिन हो जाते हैं आपकी आवाज को ना सुनो तब ऐसा लगता है जैसे एफएम सुनना अधूरा अधूरा सा लग रहा है। आज हमारा दिल सुबह से बहुत दुखी है, और आपका दिल दुखी क्यों है नीलू? आपके मेल्स मेरे पास आए और उसमें लगा कि मुझे कुछ फिजिकल भी आपको इस वक्त दिक्कत चल रही है, लेकिन दुखी नहीं होना है, जिंदगी है, फेजेस हैं, कभी अच्छा वक्त कभी बुरा वक्त। तो जब भी थोड़ा सा मुश्किल वक्त चल रहा हो तो ये सोचें कि ये वक्त गुजर जाएगा, थोड़ा सा सब्र और तहम्मुल और इंतज़ार जो है आपकी ज़िंदगी को आसान कर देता है। और ये भी मान के चलें कि ये आपकी ज़िंदगी में नहीं चल रहा है, जितने लोग हैं ना, जितने भी आपके आसपास हैं, आप दुनिया में लोगों को देख रही हैं, एक वर्चुअल दुनिया है और एक्चुअल दुनिया है। तो जो एक्चुअल दुनिया में हमारे साथ ज़िंदगी में हादसे होते हैं, खुशियां आती हैं, ये हर एक की ज़िंदगी में चलता है। तो ये फील जो है वो ज़रूर रखिए अपने अंदर कि हम ही नहीं हैं जो परेशानियाँ उठा रहे हैं, दुनिया में सभी लोगों के साथ अच्छा वक्त और बुरा वक्त चलता रहता है। बहरहाल अब आते हैं अपने टॉपिक पर, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि सेल्स जो है वो स्मार्ट शॉपिंग है या बेवजह का खर्च है। सेल में बहुत सारे प्रोडक्ट्स के आपको कम दाम देने पड़ते हैं, ज़रूरत की चीज़ें आपको डिस्काउंट पर मिल जाती हैं। फेस्टिवल सीजन में अगर सेल आ जाती है तो आपके पास सेविंग्स के बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं कि आपको जो चीज़ें खरीदनी थी वो बहुत सस्ते दामों पर मिल जाती है। वही बेवजह के जो खर्च होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं, बिना ज़रूरत आप शॉपिंग करने लगते हैं। लिमिटेड ऑफर और लास्ट डे सेल देखते ही इमोशनल बाइंग शुरू हो जाती है, कभी कभी फेक डिस्काउंट्स भी दिखाए जाते हैं। तो आप क्या कभी इस सिचुएशन में ट्रैप हुए हैं? अगर आप इस सिचुएशन में ट्रैप हुए हैं या आपने इसका फायदा उठाया है तो हमारे साथ शेयर करिए अपना एक्सपीरियंस। होटो पे तेरी बात पे 1:27 लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, और इस मौजू पर जो बातचीत का सिलसिला है यूं ही जारी रहेगा।

तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि होटो पे तेरी बात के आज का टॉपिक है कि सेल जो है वो हमारे लिए बेवजह का खर्चा है या फिर एक स्मार्ट शॉपिंग का तरीका है। ढेर सारे मेल्स हमारे पास आ चुके हैं, आइए मेल्स को शामिल करते हैं और जानते हैं कि क्या राय है आपकी। अच्छा, ये जिला रायबरेली से

राजू भानु शंकर जी ने लिखा है। लिखते हैं कि जब भी हम बाजार जाते हैं और कुछ भी खरीदते हैं और घर आते हैं तो चीज़ें नापसंद हो जाती हैं और हम बहुत पछताते हैं। पहले वाले मेल में कुछ संदेश नहीं लिखा, लेकिन आपको हमारा ईमेल आपने शामिल किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी तरफ से आपको एक बार फिर से प्यार भरा धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया रामराज जी। और ये बताइए हमें कि आप बाजार जाते हैं, अपनी पसंद से चीज़ खरीदते हैं और घर आके वो नापसंद कैसे हो जाती है और सेल में शॉपिंग करते हैं आप। सुल्तान रजा लिखते हैं, समरी नपी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? कुतुब खाना सब्जी मंडी रायबरेली से सुल्तान रजा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। गुलफशा सिद्दीकी लिखती हैं, समरी नपी मैं गुलफशा सिद्दीकी संडीले से, मेरे हिसाब से दोनों चीज़ें होंगी अच्छी और भी और ख़राब भी, और अगर दिमाग लगाकर ख़रीदा जाए तो हर चीज़ आपको अच्छी मिल सकती है सेल में। करेक्ट, स्मार्ट शॉपिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेल के ट्रैप में नहीं आना है, एक्सेसिव शॉपिंग नहीं करनी है, लेकिन अपनी लिस्ट बनाकर रखिए कि आपको किन किन चीज़ों का की ज़रूरत है, और क्वालिटी चेक के साथ आप सेल का मज़ा उठा सकते हैं। सावित्री लिखती हैं, गुड आफ्टरनून मैम, कैसी हैं आप? बहुत मस्त प्रोग्राम चल रहा है, हम विलेज भरतपुर बरगदी पोस्ट अर्जनपुर डिस्ट्रिक्ट लखनऊ से आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं। मैम झक्कास सॉन्ग प्ले हो रहे हैं, आई लव यू टू सावित्री जी। टॉपिक पर मैं ये कहना चाहूँगी कि सेल में हम जब भी सामान खरीदते हैं तो कभी कभी चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं जो बाद में कभी ना कभी हमारे इस्तेमाल में आ जाती हैं, लेकिन जब भी हम सेल में शॉपिंग करते हैं तो अपने बजट को ध्यान में रखकर शॉपिंग करें। कभी कभी हम लालच में आकर चीज़ें खरीद लेते हैं और बाद में हमारा बजट गड़बड़ हो जाता है, इसलिए ध्यान रखें, हमेशा सोच समझ कर शॉपिंग करें। बिल्कुल सही बात आपने सावित्री जी कही है कि सेल में शॉपिंग करें तो स्मार्ट शॉपिंग करना है आपको, अपने बजट के हिसाब से शॉपिंग करना है, लिस्ट पहले से तैयार कर लेनी है और उसके बाद शॉपिंग करना है। आगे लिखते हैं सुधाकर जाधव, प्रेम पूर्वक नमस्कार, और प्रोग्राम से में हमारा ईमेल शामिल होता है लेकिन मैसेज हाय हाय ये एड्रेस नहीं बताते मैसेजेस में इनका इंटरेस्ट नहीं शामिल होता। अच्छा, उसके बाद नाम भी नहीं शामिल करते, बाकी लोगों के एड्रेस भी बताते हैं और उनका नाम भी शामिल करते हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? देखिए सुधाकर जी, ऐसा नहीं है। जब आप अभी जो नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा शुरू होगा ना, उसमें मसला ये हो सकता है। उसमें क्या होता है, हॉटमेल में हमारे पास इतने बल्क में मैसेजेस आते हैं कि हम सिर्फ नाम बता पाते हैं, एड्रेस और डेडिकेशंस नहीं ले पाते, लेकिन ये प्रोग्राम सुकून का है, इसमें हम आपके साथ आपका एड्रेस भी बताएंगे, आपने जिन लोगों के नाम लिए हैं उन्हें भी बताएंगे। तो ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से हमें सुधाकर जाधव जी ने मेल किया है, लिखते हैं जिन लोगों को ये डेडिकेट कर रहे हैं उन्हें, उनके नाम इन्होंने इस तरह से लिखे हैं कि श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचित बयाल, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, कुमार सर्वद देशमुख, कुमारी सानवी देशमुख और कुमारी कल्पना देशमुख। तो आज आपकी जो शिकायत थी वो शायद दूर हो गई होगी। महेंद्र दीपान जी लिखते हैं, सादर प्रणाम, मैं नियमित श्रोता हूँ महेंद्र दीपान, अपने प्यारे गांव रूण जिला नागौर राजस्थान से आपको मेल कर रहा हूँ। आज आपने जो विषय पूछा है, सेल से खरीदारी करना सही है या फिर फालतू खर्च, इस पर मैं अपना छोटा सा अनुभव और नजरिया साझा करना चाहता हूँ। मैम सच कहूँ तो मैंने आज तक कभी भी सेल से खरीदारी की ही नहीं। मेरी एक आदत है कि जब भी मैं कोई चीज़, चाहे वो कपड़े हों या फिर कोई सामान लेता हूँ, वो तुरंत ट्राई या चेक नहीं करता। मैं हमेशा सुकून से घर आकर उसे चेक करना पसंद करता हूँ। यही वजह है कि मैं हमेशा सीधे किसी भरोसेमंद दुकान पर जाकर खरीदारी करता हूँ, चाहे सामान महंगा हो या सस्ता। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर घर आने के बाद सामान में कोई कमी या खराबी निकले तो हम उसे बड़े हक से दुकान पर वापस चेंज कर सकते हैं। सेल की भीड़भाड़ और नो रिटर्न एक्सचेंज पॉलिसी वाले झंझट से दूर शॉप से खरीदारी करना मुझे ज़्यादा सुरक्षित और सही तरीका लगता है। बिल्कुल सही और जायज़ आपने पॉइंट कहा है महेंद्र दीपान जी, कि सेल में अक्सर जो नो रिटर्न की पॉलिसी होती है उसमें हम फंस जाते हैं, क्योंकि सेल में हम खरीदारी करने जा रहे हैं, वहाँ भीड़ बहुत है और उस भीड़ भाड़ में हम जो समझ में आता है, हमें ज़रूरत हो ना हो, अपने बकेट लिस्ट में डालते रहते हैं और
फिर हम ओवर शॉपिंग कर लेते हैं, हमारे बजट से ज़्यादा की शॉपिंग कर लेते हैं, और क्वालिटी पे भी हमको बहुत ज़्यादा क्वालिटी चेक उस टाइम पे नहीं कर पाते हैं। रामेश्वर जी ने हमें मेल भेजा है, लिखते हैं, ऑटो पे तेरी बात कार्यक्रम प्रस्तुत करता समरीन जी को प्यार भरा नमस्कार। हम आपका कार्यक्रम बराबर सुन रहे हैं, आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्रस्तुति जो है वो पसंद आ रही है मुझे। समरीन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राम पोस्ट मुंगिसापुर कानपुर देहात से रामेश्वर कठेरिया, उमा कांति कठेरिया, कमलेश कठेरिया, पुत्र बधु निशा कठेरिया, प्रज्ञा कठेरिया, प्रतिमा कठेरिया, वेद बाबू कठेरिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी रामेश्वर जी। आपने समय निकालकर हमारे साथ इस प्रोग्राम में आप शामिल हुए हैं। आगे दो मेल्स हमारा इंतजार कर रहे हैं, रोशनी रावत और बसंत कुमार सिन्हा का मेल हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक जिसमें बेहतरीन गाना आपका इंतजार कर रहा है।

होटो पे तेरी बात पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ समरीन और बात हो रही है आज सेल जो है वो स्मार्ट शॉपिंग है या फिर बेवजह का खर्च। देखिए मेरा मानना ये है कि सेल में अगर आप स्मार्ट शॉपिंग करते हैं तो ये आपके पैसे को भी बचाती है और एक प्लान शॉपिंग हमेशा बेहतर रहती है। अगर आप सेल देख के शॉपिंग करने जा रहे हैं तो इट कुड बी हार्मफुल फॉर यू, लेकिन अगर आपने एक लिस्ट तैयार कर रखी है और जब सेल आएगी तब आप शॉपिंग करेंगे तो ये एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। और डिपेंड करता है कि आप कितना आप कपड़े खरीद रहे हैं या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक्स खरीद रहे हैं, इस पर भी शॉपिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रोग्राम में मेल्स जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं जिनमें हम शामिल करेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद। तो अब समय आ चुका है, रोशनी रावत ने मेल भेजा है लंबा सा और इसमें कई कलर्स इन्होंने डाले हैं, रेड डाला है, ब्लैक डाला है, ब्लू डाला है और ग्रीन कलर के साथ बुके, स्माइली, हार्ट्स, इन सब के साथ इन्होंने हमें मेल भेजा है। लिखती हैं, समरीन दी कैसी हैं आप, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे आपका इंतज़ार था रात में 8 बजे से, लेकिन अचानक से आपकी आवाज़ सुनी तो मुझे बहुत खुशी हुई। आप किसी भी समय आपको सुनती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। मेरा नाम रोशनी रावत, ग्राम पोस्ट बमना, तहसील सफीपुर, जिला उन्नाव, चंडीगढ़ से आपका प्रोग्राम सुन रही हूँ। और अब इन्होंने आगे लिखा है टॉपिक पर, तो इन्होंने लिखा है कि सेल का सामान हो या पसंद का, मैं सिर्फ अपनी ज़रूरत का ही सामान लेती हूँ, लेकिन मेरी मम्मी सब खरीदने में एक्सपर्ट हैं, बस पसंद आ जाए उनको। मेरे साइबर कैफे के सामने एक साड़ी की दुकान है और मम्मी की नज़रें वहीं ठहरी रहती हैं, हमेशा बोलती हैं वो वाली साड़ी कितनी अच्छी है। तो मेरे मुंह से यही निकलता है कि आप ले लीजिए जाके, एक के साथ एक और ले आती हैं। 2 दिन पहले मेरे भैया भाभी के लिए 4 साड़ी ले आए, सेल में थी इसलिए, तो मुझे तो पैसा बचा कर कहीं दूर चली जाओ फालतू की शॉपिंग से अच्छा है। और मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तफाक रखती हूँ रोशनी कि सेल देखकर जैसे कि मैंने कहा कि शॉपिंग नहीं करनी चाहिए, ज़रूरत के हिसाब से शॉपिंग आप सेल में कर सकते हैं, ये ज़्यादा स्मार्ट तरीका है शॉपिंग का। और एक की जगह 4 चीज़ें लेना जिसमें आप कभी कभी सेल में है तो ऑब्वियसली क्वालिटी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है उसमें, कि अगर एक के दाम में आपको 4 चीज़ें मिल रही हैं तो ये सब छोटी छोटी बारीकियाँ देखकर अगर आप शॉपिंग करेंगे तो सेल आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। बसंत कुमार सिन्हा जी लिखते हैं, सेल पर तो कुछ सस्ते दर पर सामान मिल जाएगा, लेकिन चीज की गुण की बात अगर की जाए तो हो सकता है वो ना हो, औरों की जगह पर खरीदारी करने पर जो हमें सेल मिलती है, जैसे इन्होंने आगे लिखा है वैशाख महीने में सेल लगती है, होल सेल में भी आता है, कारखाने से रिजेक्ट माल भी मिलता है, तो इस तरह के जो शॉपिंग होती है वो थोड़ी रिस्की हो सकती है। साथ ही लिखते हैं कि नन्नी गुड़िया रानी थैंक्स एयरपोर्ट कलकत्ता से, इन्होंने हमें ये भी मेल जो है वो किया था। नीलू लिखती हैं, समरीन दी सब कुछ मेरी लाइफ में अच्छा चल रहा है, दुख सुख तो चलता ही रहता है, सभी की लाइफ में मेरे प्रिय दोस्त की वजह से मन दुखी हो गया है। ओहो, तो आप हिंट दे रही हैं हर मेल में मुझे।

आगे वकील अहमद लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम, आपकी आवाज अच्छी लगती है। सेल में खरीदारी सोच समझ के करिए, और अगर आप दुकान से खरीदते हैं तो वहां से वापस भी कर सकते हैं। धूप बहुत तेज हो रही है। वकील अहमद मंसूरी, कटरा हथूरी, जिला सीतापुर, साहिबा अंसारी, शाजिया अंसारी, शमा परवीन, रिंकी पिंकी, महक अंसारी, अहमद नवाब, और वकील साहब ने थोड़े से ही मेल में सब चीज़ें शामिल कर ली हैं। मतलब टॉपिक पर भी बात कर ली है, गर्मी भी हो रही है, इस पर भी बात हो गई है, दोस्तों के नाम भी ले लिए गए हैं। दतार सिंह जो है वो लिख रहे हैं, हमें मेल किया है उन्होंने, लेकिन हॉटमेल कार्यक्रम नहीं है, ये होटो पे तेरी बात कार्यक्रम है। गोविंद सीकर राजस्थान से, दतार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत, और आगे उन्होंने गाने की भी फरमाइश कर दी है। प्रोग्राम आप शायद सुन नहीं रहे हैं, आपने बस वक्त पे मेल कर दिया है। राजेश कुमार लिखते हैं, सेल कभी भी जेल साबित हो सकती है, सस्ते के चक्कर में ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है, ना वापस किया जा सकता है। बात तो सही है, लेकिन जैसे कि अभी जिक्र हो रहा था कि स्मार्ट शॉपिंग अगर आप करेंगे तो सेल से भी आप फायदा उठा सकते हैं। संतोष बखारे लिखते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। अच्छा, इन्होंने गाने की फरमाइश की है, संतोष भाकरे, सुनन्या, सुकन्या और सविता भाकरे जो नाम ये लेना चाह रहे थे। आगे मुनेश कुमार राज गांव भानुपुर हरौआ जिला लखीमपुर खीरी से हमें मेल कर रहे हैं, लिखते हैं कि आज का टॉपिक ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन शॉपिंग, नहीं आज का टॉपिक ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन शॉपिंग नहीं है, आज का टॉपिक है कि सेल में, चाहे वो ऑनलाइन सेल हो या फिर आपने किसी दुकान पे सेल देखी, आप कितने ये आपके लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह है, मतलब ये बेवजह का खर्च है सेल में जाकर शॉपिंग करना या स्मार्ट शॉपिंग है। लिखते हैं कि आज के टॉपिक पर हम ये कहना चाहते हैं कि दोनों प्रकार की शॉपिंग अच्छी लगती है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, जिस जिस हिसाब की आवश्यकता हो उस हिसाब से हम शॉपिंग कर लेते हैं, बाकी सब बजट पर डिपेंड करता है। ऑनलाइन छूट मिली तो ऑनलाइन पर कर लिया, ऑफलाइन मिली तो चीज़ों की खरीदारी कर ली, जेब में बजट तैयार है तो फिर शॉपिंग करने में मज़ा आ जाता है। और आके उन्होंने लिखा है, हेल्थ एंड फिटनेस बहुत ज्ञानवर्धक होता है, ऐसे ही नए टॉपिक लाते रहिए। बिल्कुल, हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको अवेयर भी करते रहें और आपके दैनिक जीवन की समस्याओं को भी सामने लाते रहें। मोनू सेठ लिखते हैं, धूप बहुत है, गाड़ी से सफर कर रहा हूँ इसलिए मेल करने में देर हो गई। बिल्कुल, आप गाड़ी से जब सफर कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि हमें मेल ना भी करें तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप सेफ सफर जरूर अपना जारी रखें। धर्मवीर भारती लिखते हैं, ग्रीटिंग्स टू आरजे समरीन मैडम जी, गुड आफ्टरनून, और आपको और पूरी आपकी एफएम रेनबो लखनऊ टीम को प्यार भरा नमस्कार। आगे लिखते हैं, तमाम श्रोताओं में से एक मैं धर्मवीर भारती शुक्लागंज उन्नाव से, आज का टॉपिक है सेल। वैसे तो ये एक वेल प्लान्ड प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करने का प्रोसेस है जो कंपनीज मोस्टली फेस्टिवल सीजन्स में लेकर आती हैं, बट इससे कस्टमर्स को भी फायदा होता है क्योंकि बल्क में आइटम सेल होने से कंपनीज काफ़ी सारा डिस्काउंट्स ऑफर करती हैं। एज पर माई व्यू, कस्टमर को सेल्स का फायदा भी उठाना चाहिए, अपनी ज़रूरत का ही सामान खरीदें और कंट्रोल शॉपिंग करें और ब्रांडेड आइटम्स खरीदें। एक एडिशनल बात मैडम जी, कोई लिसनर मैडम को कुछ इशू था जिन्होंने अपने मोटिवेट किया, ये कितनी बढ़िया बात है, इंसानियत की मिसाल आप हैं, हम सभी को ऐसा करना चाहिए। सभी लिसनर्स को मैसेज मेरी तरफ से, थैंक्स मैडम जी एंड एफएम रेनबो लखनऊ टीम, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मवीर भारती जी। शायद मेरी आपसे आज पहली बार मेल पर बात हुई है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि लगातार वक्त जो है वो बढ़ता जा रहा है। शामिल करेंगे एक अच्छा सा गीत, 1:53:29, आप हैं समरीन के साथ, और अब आने जा रहा है आपके रेडियो सेट पर एक बेहतरीन सा गीत।

तो दोस्तों सफर कोई भी हो, अगर उस सफर में म्यूजिक का साथ हो तो सफर का मजा दोगुना हो जाता है। तो भाई अगर अभी तक आपने हमें ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और एंजॉय कीजिए म्यूजिक आवर प्रोग्राम का आज का सफर अपनी रेडियो दोस्त ऋतु के साथ। और दोस्तों अगर आपको अपने सफर का कोई इंसिडेंट या फिर कोई घटना याद हो तो हमसे शेयर जरूर कीजिए। हमारी ईमेल आईडी है airkansomedia@gmail.com।

0: अरे उड़ने उड़ने अरे इतने इतने
1: गाइज, हर रोज सुबह हम सभी एक नया सफर तय करते हैं। हमारी मंजिल भले ही अलग होती है, लेकिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमारे रास्ते जरूर टकरा जाते हैं। घर से निकलते वक्त दिमाग में बस एक ही बात होती है कि किसी भी तरह अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। लेकिन दोस्तों, अभी मंजिल दूर है, तो सुन लेते हैं एक और गाना। बताइए फिल्म का नाम।

0: शराबी फिल्म का गाना था और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने इसका जवाब बिल्कुल सही लिखा है। दोस्तों, कभी कभी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही मुश्किल होता है और ये बात हम सभी जानते हैं। फिर भी सभी घर से निकलते हैं, कोई स्कूल जाने के लिए, किसी को ऑफिस तो किसी को कॉलेज जाने की जल्दी होती है और हमें जल्दी से जल्दी अपने अपने ठिकानों तक पहुंचाने का काम करते हैं सार्वजनिक वाहन। जी हाँ, जैसे कि वैन, रिक्शा, ऑटो और सिटी बसेस, ये सभी हमारे जीवन का एक हिस्सा है। फिलहाल हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनने जा रहा है ये गाना।
1: निकला ओ गड्ढा।

वेल गाइज, अभी हमने बात की वैन, रिक्शा, ऑटो और सिटी बस की। भाई इनके बिना तो हमारा काम ही नहीं चलता, पर इनमें सफर करना कोई आसान बात नहीं है। सबसे पहले तो जनाब, आपको इन वाहनों में अपने लिए लड़ झगड़ कर जगह बनानी पड़ती है। इतनी भीड़ में सीट मिलने की जद्दोजहद और ऊपर से गुटखा खाकर ये पूछना कि कहाँ जाना है आंटी, 10 रुपए लगते हैं, स्टेशन स्टेशन का जोर जोर से कर्कश आवाज में चिल्लाने वाले वैन और बस कंडक्टरों को झेलते हुए आप कब अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं पता भी नहीं चलता। तो चलिए, मंजिल तक पहुंच जाने की खुशी में दोस्तों सुन लेते हैं एक और ट्रैक।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: डियर रेनबो लिसनर्स, आपका और हमारा रिश्ता है बड़ा पुराना, पर इसे और भी गहरा बनाने आ रहा है एक खास बहाना।
2: जी हाँ, FM रेनबो कानपुर के कार्यक्रमों पर अब आपकी राय, आपकी पसंद और आपके सुझावों का रहेगा हमें इंतजार। लेकर आ रहे हैं हम अपना फीडबैक शो मेल मिलाप।
1: हमें बताइए आपको हमारे प्रोग्राम्स कैसे लगते हैं, क्या और सुनना चाहते हैं आप। तो नोट कीजिए, हर महीने के चौथे बुधवार दोपहर 3:45 पर होगा हमारा आपका मेल मिलाप।
2: अपनी प्रतिक्रियाएं हमें लिखकर भेजें इस पते पर, कार्यक्रम मेल मिलाप, विज्ञापन प्रसारण सेवा, आकाशवाणी कानपुर, बेना झाबर रोड, कानपुर, पिन कोड है 208002।
1: और अगर पसंद है आपको डिजिटल जमाना तो हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस है fmmelmilaap@gmail.com पर, यानी कि fmmelmilaap@gmail.com। भूलिएगा मत, हर महीने का चौथा बुधवार दोपहर 4:45 सिर्फ FM रेनबो कानपुर पर। मेल मिलाप।

102.2 की फ्रिक्वेंसी पर आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो कानपुर को। प्रोग्राम चल रहा है म्यूजिकार, बातें हो रही हैं सफर की। तो दोस्तों, सफर से जुड़ा कोई भी किस्सा अगर आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो हमें इंतजार है आपके मैसेजेस का। हमारी ईमेल आईडी जल्दी से नोट कीजिए, airkansomedia@gmail.com।

दोस्तों जब हम मंजिल तक पहुंच जाते हैं तो दिक्कत आती है छुट्टे पैसों की। वैसे ही छुट्टे पैसों को लेकर कभी न कभी ऑटो वाले से, वैन वाले से या फिर बस वाले से आपकी भी बहस जरूर हुई होगी। भाई मेरी तो हो चुकी है बहस और अब मैं हमेशा छुट्टे पैसे लेकर ही बैठती हूँ ताकि बिना टेंशन के मंजिल तक पहुँच जाऊँ। 102.2 की फ्रिक्वेंसी पर आप इंजॉय कर रहे हैं म्यूजिक आवर प्रोग्राम और प्रोग्राम का सफर अभी बाकी है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले इंजॉय कीजिए इस गाने को।

दोस्तों बात करें बस की, तो बस का सफर भी बड़ा यादगार होता है। बस में इतनी भीड़ में खड़े रहकर ब्रेक कराने पर एक दूसरे पर गिरना, ऐसा लगता है मानो किसी एम्यूजमेंट पार्क में रोलर कोस्टर राइड का मजा ले रहे हो। लेकिन भैया, ये बस ड्राइवर इतनी मुश्किलों के बाद भी आपके मनोरंजन का पूरा ध्यान रखते हैं। आप पूछेंगे कि वो कैसे, तो ऐसे कि इनके पास अपना एक अलग ही बॉलीवुड गानों का कलेक्शन होता है, जो आपने कभी पहले नहीं सुने होंगे, जिसे सुनाकर ये आपके बेरंग जीवन में खुशियों की नई लहर भर देते हैं। लेकिन अभी आपके जीवन में खुशियों के रंग भरने आ रहा है ये गाना।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: एक आवश्यक सूचना सुनिए। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों के लिए नामांकन आरंभ हो चुके हैं। ये पुरस्कार वीरता, खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले बच्चों को दिए जाते हैं। 5 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा जो भारतीय नागरिक है और भारत में रहता है, इन पुरस्कारों के लिए पात्र है। इस हेतु नामांकन awards.gov.in पर स्थित राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। पुरस्कारों के लिए स्व नामांकन और अनुशंसा दोनों पर विचार किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर जाएं। एक बार फिर से सुन लीजिए awards.gov.in। सूचना समाप्त हुई।

म्यूजिक और प्रोग्राम आप एंजॉय कर रहे हैं एफएम रेनबो कानपुर से 102.2 की फ्रिक्वेंसी पर। और प्रोग्राम में आज बातें हो रही हैं सफर की। तो दोस्तों, भीड़ में धक्के खाने का अपना अलग ही मजा है। विचित्र विचित्र प्राणियों को देखने का मौका मिलता है और जब हम डेली इन वाहनों में सफर करते हैं तो इनकी आदत सी हो जाती है। वैसे दोस्तों, कहा जाता है कि वे क्या जाने इस सफर का मजा जो अपने वाहन से जाते हैं। फिलहाल मजा लीजिए इस गाने का।

0: दोस्तों, सफर या मंजिल इन दोनों की तुलना नहीं की जा सकती है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अगर सफर सुहाना रहता है तो मंजिल भी आसान लगती है, और अगर सफर मुश्किल भरा रहा तो मंजिल पास होते हुए भी कठिन लगती है। तो दोस्तों, एक बार लक्ष्य निर्धारित कर लेने के बाद हमें सफर के प्रत्येक क्षण को उत्सुकता, संयम और आनंद के साथ बिताना चाहिए। म्यूजिक और प्रोग्राम का आज का सफर भी आ पहुंचा है अंतिम पड़ाव तक, तो सुन लेते हैं प्रोग्राम का ये लास्ट ट्रैक।
1: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती, तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती, तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

0: दोस्तों समय हो गया है प्रोग्राम को वाइंड अप करने का, तो म्यूजिक आर प्रोग्राम से अपनी रेडियो दोस्त रितु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

102.2 की फ्रिक्वेंसी पर आपने ट्यून इन किया है एफएम रेनबो कानपुर को। आपका फेवरेट प्रोग्राम हेलो कानपुर लेकर हम अभी हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है।

0: शहर की म्यूजिकल हार्ट बीट के साथ धड़क रहा है 102.2 FM रेनबो कानपुर पर शहर का सुर। कानपुर की रंगीन शाम जहां ढलती हुई शाम के साथ कहानियां भी हैं, मुस्कुराहटें भी हैं और अपने शहर की धड़कनों की आवाज भी। तो चलिए शुरू करते हैं FM रेनबो पर आपका अपना पसंदीदा शो हेलो कानपुर। मैं हूं आपकी अपनी आरजे पूर्णिमा, लिए कानपुर की बातें, आपकी यादें, आपके पसंदीदा गीत और ढेर सारा संगीत। तो अगले कुछ पलों तक महसूस कीजिए इस खूबसूरत शाम को और देखते हैं कौन है हमारे पहले कॉलर। हेलो कानपुर, कौन बोल रहा है?
1: कश्ती बहती है किनारे की तलाश में, लोग मिलते हैं प्यार के आस में, हम रोज मिलते नहीं आपसे मगर कुछ वक्त जरूर बिताते हैं पूर्णिमा मैडम आपकी याद में। हेलो कानपुर, कैसी हो आप?
0: अरे वाह, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी आवाज को पहचान लिया बिना हमारे नाम बताए, बहुत अच्छे हैं। आप कौन बोल रही हैं?
1: मैं नीलू बोल रही हूँ।
0: नीलू बोल रही हूँ, और नीलू आपके मेल्स, आपके बराबर मेल्स हमें मिलते हैं हमारे प्रोग्राम्स में, तो कैसी हैं आप नीलू?
1: जी मैम, मैं बिल्कुल बराबर सुनती रहती हूँ और मेल मैसेज करती रहती हूँ हर एक प्रोग्राम में।
0: आप हमारी जो है एक एक्टिव लिसनर्स होते हैं ना, जो कोई प्रोग्राम्स नहीं छोड़ते हैं, आप उनमें से एक हैं, और हर प्रोग्राम चाहे वो आपकी पसंद हो चाहे हम ना हो, आपकी मेल हमें जरूर मिलती है।
1: जी मैम बिल्कुल, मैं बहुत शिद्दत से सुनती हूँ और आपकी आवाज बहुत पसंद करती हूँ।
0: हाँ अच्छा नीलू, कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जो आपको अच्छे लगते हैं FM रेनबो पर?
1: मैम गुड मॉर्निंग कानपुर, सुरों की पुरानी महफिल, रस बहार, हम नवा, म्यूजिकार, पसंद आपकी और जितने भी भारतीय से आपके यहाँ से कार्यक्रम प्रसारित होते हैं सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं।
0: अरे वाह, आपको तो बिल्कुल हमारे सारे प्रोग्राम्स के नाम बखूबी पता है।
1: जी बिल्कुल मैम।
0: हाँ बताइए।
1: मैं बचपन से रेडियो सुन रही हूँ 2000 से, तो हर एक चैनल मुझे पता है, हर एक प्रोग्राम पता है, हर एक एंकर के नाम मुझे बखूबी याद रहते हैं और मुझे कार्यक्रम भी याद रहते हैं कब कितने बजे कौन कार्यक्रम आएगा।
0: यानी आप जब सुबह उठती हैं तो सबसे पहले आपका रेडियो ऑन होता है।
1: जी मैम, जब मैं उठती हूँ मेरी मॉर्निंग की शुरुआत रेडियो से ही होती है। पुष्पांजलि पहले मैं सुबह सुनती हूँ और उसके बाद जो और भी कार्यक्रम होते हैं अलग अलग चैनल से मैं जुड़ जाती हूँ।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छा है, और आपका ये जो लगाव है वो हमें पता चलता है, क्योंकि आपके बराबर जो प्यार भरे मैसेज हैं वो हमें मिलते हैं, आपकी प्यारी बातें हैं, जो शायरी है, जो ये शायरियां आप खुद लिखती हैं।
1: जी मैम एक्चुअली मुझे थोड़ा शौक था बचपन से ही और बहुत कुछ मैंने रेडियो से आप लोगों से ही सीखा है, तो मुझे शौक है मैम।
0: नहीं बहुत अच्छी, बहुत अच्छा गुण है नीलू आपके पास, जो आप अपने शब्दों को इतना अच्छे से एक रूप दे करके फिर उसे तैयार करती हैं और फिर हम तक पहुंचाती हैं, और फिर हम आपकी बातों को अपने दूसरे लिसनर्स तक पहुंचाते हैं।
1: मैम बहुत बेसब्री से इंतजार था हेलो कानपुर पुनः प्रसारित हो, मुझे बहुत अच्छा लगा और अपनी फरमाइश के लोग गीत तो सुनते हैं अलग अलग वजह से लोग जुड़ते हैं, तो सबकी बातचीत सुनना, सुझाव जो लोग देते हैं बहुत अच्छा लगता है ये सब जानकर।
0: बिल्कुल,
1: हम कार्यक्रम में सुनते हैं बट जो जानकारियां मिलती है मुझे वो बहुत अच्छी।
0: बिल्कुल, हमारा यही मकसद होता है नीलू हर प्रोग्राम्स में कि हम कुछ अच्छी जो एक हेल्दी जानकारियां होती हैं जो हमारे लिसनर्स के लिए कहीं ना कहीं उपयोगी हैं वो हम उन तक पहुंचाएं हमारे इस प्रोग्राम्स के जरिए।
1: जी मैम आप कैसे हो?
0: हम बहुत अच्छे हैं, और आप सबसे बात करके हम और भी अच्छे हो जाते हैं।
1: बिल्कुल मैम बिल्कुल।
0: तो नीलू आज कौन सा गाना आप सुनना चाहेंगी?
1: मैम मूवी है प्यार झुकता नहीं और सिंगर है शब्बीर कुमार, लता मंगेशकर, गाने के बोल हैं चाहे लाख तूफा आए चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल हो जीना फिर भी पड़े जहर पीना, मिलके न होंगे जुदा अब कसम।
0: बिल्कुल, जितनी प्यारी आपकी शायरियां हैं ना उतनी ही प्यारी

0: बड़ी सी आवाज में आपने ये बोल हम तक
1: थैंक
0: पहुंचाए। बिल्कुल,
1: यू
0: हम
1: मैम। मैं
0: आप,
1: इजाजत हो तो क्या नाम ले लूँ एक तो?
0: हाँ बिल्कुल ले लीजिए।
1: मैम सबसे पहले आप और मेरी दो छोटी प्रिय दोस्त हैं, रोशनी रावत और बबिता राव और मनु दी और जितने भी आपके स्टाफ के एंकर हैं सभी को और सभी सुनने वालों को और मेरे बड़े भैया हैं ओम प्रकाश उजाला जी उनको
0: बिल्कुल
1: और आपके स्टाफ में सर मैडम है उनको भी डेडिकेट करती हूँ। जितने
0: बिल्कुल,
1: आपके
0: हम
1: स्टाफ हैं
0: हाँ
1: सबको
0: जी
1: मेरा बहुत बहुत शुक्रिया जो पुनः कार्यक्रम प्रसारित किया गया इसके लिए मैं बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करती हूँ सभी उच्च
0: बिल्कुल
1: अधिकारियों का आप लोगों का।
0: नीलू, थैंक यू सो मच। हमें भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपकी जो ये बात है हमारे सभी जो आरजेज हैं उन तक पहुंचा दी जाएगी, और हम सुनवाते हैं आपकी पसंद का आपको ये।

0: हेलो कानपुर।
1: हेलो, गुड मॉर्निंग मैम।
0: गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप?
1: जी मैम, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं। कौन बोल रहे हैं?
1: जी मैम, मैं बबीता राव बात कर रही हूँ, बेली कला पोस्ट अटवारा गोसाईगंज नवाबों का शहर लखनऊ उत्तर प्रदेश से।
0: अरे वाह, नवाब के शहर लखनऊ से बबीता जी बोल रही हैं आप। बराबर हमें मेल्स करती हैं, तो कैसी हैं बबीता?
1: हाँ मैम, मैं बहुत अच्छी हूँ मैम। मुझे पता चला है कि हाँ अब हेलो एफएम कानपुर शुरू हो गया है, तो मैं ट्राई ही
0: हाँ
1: कर रही थी, अभी कॉल लगी नहीं थी, बट सडनली लग गई, तो मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरी फर्स्ट टाइम कॉल लगी है। हम
0: बिल्कुल
1: ईमेल तो पढ़ते ही रहते हैं आप लोग, और मैम
0: जी।
1: मुझे आपके सभी प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं। क्या गजब, मतलब बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं आप लोग, और क्या गजब की वॉइस है, बहुत प्यारी लगती है।
0: थैंक यू सो मच कि आप
1: आरजी पूर्णिमा मैम बात कर रही है ना मैम आप?
0: जी। मैं पूर्णिमा
1: हाँ
0: बोल रही हूँ।
1: जी, हाँ जी मैम, मैं आपको पहचान गई। एक्चुअली आई होप आपने पढ़ा भी होगा मैम।
0: बिल्कुल पढ़ाया, और आपके नाम से हम नाम बिल्कुल पहचान गए। जैसे ही आपने बोला बबीता, तो बबीता राव
1: जी
0: के नाम से
1: जी
0: हमारे पास बराबर मेल्स हमें मिलती हैं।
1: जी मैम,
0: तो बबीता,
1: मैं इतनी खुश
0: हाँ
1: हूँ मैम, मैं बता नहीं सकती, मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती कि आज मैं कितनी खुश हूँ। मतलब
0: हाँ आपकी खुश
1: कॉल लगाई, चलो कॉल कनेक्ट हो गई और आपने पिक भी कर ली, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: हाँ, क्योंकि आपकी जो खुशी है ना, वो आपके जो है खुद जाहिर हो रही है कि आप कितनी
1: हाँ
0: खुश
1: जी
0: हैं।
1: मैम, जी मैम बहुत खुश हूँ। और
0: बहुत खुश
1: मैम,
0: है।
1: और स्पेशल हमारी आरजी मैम से बात हो रही है पूर्णिमा मैम से, तो मैम खुशी तो लाजमी है ना।
0: हाँ बिल्कुल लाजमी है, और हम भी बहुत खुश हैं बबीता कि आपने पहली बार कॉल लगाई, और हमारा काफी टाइम बाद ये हेलो कानपुर आज स्टार्ट हुआ और आपकी बात हमसे हुई।
1: जी मैम,
0: तो बबीता, कौन कौन है आपके घर पर और क्या करती हैं आप?
1: मैं पढ़ाई करती हूँ, मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, अभी फिलहाल मैं घर ही पे रहती हूँ, और
0: जी
1: मैं अभी इस प्रेजेंट टाइम में जा रही हूँ मम्मी की दवाई लेने। लेकिन आपको कॉल करनी थी, आपसे बात करनी थी, इसलिए मैं रास्ते में रुक के आपसे बात कर रही हूँ।
0: हाँ, थैंक यू सो मच। इतना इतनी मतलब इतना प्यार देने के लिए, इतना सम्मान देने के
1: अरे
0: लिए।
1: जी
0: तो
1: जी मैम,
0: बबीता बिल्कुल आप सबका ध्यान रखिए, अपना भी ध्यान रखिए, क्योंकि जो गर्मी है ना वो बहुत ज्यादा
1: जी
0: है ना। तो बाहर का जो है खान पान से अच्छा है कि घर का खाना
1: जी
0: हम
1: जी
0: प्रिफर करें। बिल्कुल
1: हाँ जी मैम, मैं गर्मियों में, मैं सच कह रही हूँ, मैं गर्मियों में बाहर का कुछ खाती ही नहीं हूँ, बस हाँ बस नारियल पानी हुआ, पानी हुआ और सिकंजी हुआ, यही सब नॉर्मल जो खाती पीती हूँ, बाकी मैं गर्मियों में एक ही टाइम खाना खाती हूँ।
0: बिल्कुल सबसे अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ना। और बबीता, आज कौन सा सॉन्ग आप सुनना चाहेंगी?
1: हाँ मैम, मैं स्पेशली ये सॉन्ग मैं आपको डेडिकेट करना चाहूंगी। रॉन्डी रावत जी हैं, चंडीगढ़ से प्रोग्राम सुनती है, उनको भी डेडिकेट रहेगा,
0: बिल्कुल
1: और नीलू जी हैं जो रोहतक चंदेला उन्नाव से, उनको स्पेशली,
0: अच्छा।
1: बट आपको ये लिए ही रहेगा। पहली बार दिल यूं बेकरार हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे प्यार हुआ है।
0: आहा, क्या बात है,
1: हाँ
0: बहुत, और हमारी भी पसंद का है ये सॉन्ग। तो बहुत अच्छा लगा बबीता आज
1: जी मैम,
0: आपसे बात करके। थैंक यू सो मच।
1: साथ सुनते रहें हेलो कानपुर।

0: हेलो कानपुर।
1: हेलो कानपुर
0: जी, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं मोहम्मद जाकिर मंसूरी बोल रहा था।
0: कैसे हैं आप?
1: बस अच्छा हूँ, और काफी दिन के बाद कार्यक्रम शुरू करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं आपको।
0: जी बिल्कुल। और
1: मुंशापुर में हूँ।
0: जी, और क्या करते हैं?
1: बस अपनी शॉप पर बैठा हूँ और जो कार्यक्रम में फोन लगा रहा था तो लग गया, बात हो रही है आपसे।
0: जी, बहुत अच्छा लगता है जब आपके जो पसंदीदा प्रोग्राम्स होते हैं और उसका आप इंतजार करते हैं, और जब बात करने का
1: बिल्कुल
0: मौका आता है तो हमारी कॉल जो है लग जाती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो आप रेगुलर लिसनर हैं हमारे, क्योंकि आपके पत्र, आपके ईमेल्स हमें बराबर मिलते हैं।
1: जी, मैं
0: जी, तो मोहम्मद जी, और कौन कौन है आपके घर पर? और
1: मेरे मेरे परिवार में मेरी बेगम साहिबा कमरुन्निसा,
0: जी
1: और मेरी बिटिया सरिश्ता है,
0: जी
1: और बेटी पलक है, लुबना है, और मेरा बेटा यश है। साथ में मैं दमा जी का भी नाम डाल देता हूँ, मोहम्मद नसीब जो नाम है वो मेरे दमा जी का नाम है।
0: अच्छा जी, बिल्कुल। तो आप इस समय जो है, गर्मी बहुत ज्यादा है, तो आप हमारे जो दूसरे सुनने वाले लिसनर्स हैं उन्हें क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं कि कैसे वो खुद का ख्याल रखें?
1: मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि धूप में कोशिश करें कि बाहर ना निकलें,
0: जी
1: और अगर ज्यादा जरूरत पड़ भी रही है निकलने की तो सर में तौलिया डालें, हाथ में पानी की बोतल लें, तब
0: जी
1: निकलें।
0: बिल्कुल, तब
1: पानी,
0: निकले
1: ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं और अपने आप को गर्मी और लू से बचाएं।
0: बिल्कुल, गर्मी और लू से बचाएं, क्योंकि बराबर हम सभी के फोन में भी एनडीएमए का अलर्ट आ रहा है, हीट वेव
1: बिल्कुल
0: का।
1: बराबर।
0: इसीलिए खास ख्याल रखना है कि बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकलें, और पानी जो है अगर आप अपने साथ रखते हैं तो प्लास्टिक की बोतल का इस्तेमाल ना करें,
1: जी, ये
0: क्योंकि
1: वो जो बोतल आती है अपनी अलग
0: जो स्टील की
1: टाइप
0: बॉटल्स
1: में
0: आती
1: ना,
0: है, हाँ बिल्कुल
1: उसका प्रयोग करें, उसमें पानी ठंडा भी रहता है और पानी अच्छा भी रहता है।
0: बिल्कुल ठंडा भी रहता
1: जी
0: है, और
1: सुरक्षित
0: हमारा जो पर्यावरण है वो भी सुरक्षित रहेगा।
1: रहेगा।
0: बिल्कुल, तो हम सब की ये जिम्मेदारी है। और तो आज मोहम्मद जी, कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम अनजाना के
0: जी
1: बोले, मैं राही अनजान राहों का, ओ यारो मेरा नाम अनजाना।
0: बिल्कुल, चलिए मोहम्मद जी, हम आप सभी को सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो कानपुर
1: हेलो कानपुर
0: जी, कौन बोल रहे हैं?
1: नमस्कार, मैं माइसेल्फ कोरोना करते थे पारादीप जगतसिंहपुर से ओडिशा से बोल रहा हूँ।
0: जी करुणापति जी, बहुत ही अच्छा
1: बोलिए।
0: से है आपका नाम। और जी हाँ, और आपके नाम में ना जो ये दया वाली भावना है, ये आपके नेचर में जरूर होगी। जी हाँ, तो क्या करते हैं करुणापति जी?
1: फुल बिजनेस कर रहा हूँ।
0: जी किस तरह का काम है ये?
1: ये जो जो मछली का चास भी कर रहा हूँ, खेत में चास भी कर रहा हूँ, सब्जी भी कर रहा हूँ, ये उसके बाद भी मैं रेडियो भी सुनता हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ।
0: सब कुछ कर रहे हैं, मैंने इतने सारे काम आप एक साथ कर रहे हैं।
1: इतनी सारी काम तो मैं भी किया था, लेकिन मेरा भी बहुत बड़ा फैमिली है, मेरा 4 भाई है मेरी साथ, वो भी मेरे को बहुत हेल्प कर रहे हैं,
0: जी
1: मैं सबसे छोटा। वो सारे काम को मैं ही मैनेजमेंट कर रहा हूँ, बाकी मेरा भाई है और जो मैं जो घर पे मैं रखा जो लोग को काम करने के
0: जी
1: लिए, वो भी मुझे बहुत हेल्प कर रहा है।
0: तो ये तो बहुत अच्छी बात है करुणापति जी की, जब हमारे पूरे परिवार का सहयोग हमारे किसी काम में होता है तो वो काम बहुत अच्छे से होता
1: सही मैम,
0: है ना? हमें पूरा सपोर्ट मिलता है, उनका साथ मिलता
1: सपोर्ट तो
0: है।
1: मिलता है, लेकिन मैम जो एक साथ सब सब मिलके एक साथ जो एक काम करेगा तो वो काम भी बहुत अच्छा से हो जाएगा, आसान से हो जाएगा और बहुत हल्का भी लगता है ना।
0: जी हाँ, हल्का भी लगता है और सक्सेस भी मिलती है उसमें,
1: मैम
0: क्योंकि हमारे बड़ों का हमारा साथ भी होता है और आशीर्वाद भी।
1: थैंक यू मैम,
0: जी तो और ये जो
1: आपको आशीर्वाद मेरी
0: जी
1: भगवान।
0: हाँ जी हाँ, सबके साथ ये परिवार का साथ हो और ये सपोर्ट हो, दिल से हमारी तो यही दुआ है।
1: थैंक यू
0: तो
1: मैम।
0: जी करुणापति जी, तो आज का जो मौसम है वहाँ पर भी ऐसा ही गर्मी इस समय कैसी है? गर्मी बहुत ज़्यादा है।
1: गर्मी तो बहुत ज्यादा है मैम, वो कल रात को थोड़ी तेज में हवा भी चलता है और बारिश भी कल रात को हुआ था, और आज अभी नहीं है,
0: जी
1: अभी बहुत ज्यादा धूप है
0: बहुत धूप है।
1: मैम।
0: जी हाँ, तो बिल्कुल बचाव रखिए अपना, क्योंकि जब हम काम के लिए बाहर निकलते हैं तो हमें अपनी सुरक्षा, अपनी सेफ्टी, खुद को बहुत ध्यान रखने की जरूरत होती है कि हम ऐसे मौसम में बीमार ना पड़े। तो खान पान का ध्यान रखना है। जी तो आज आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: बाजीगर मूवी है ना,
0: जी
1: उसका वो टाइटल ट्रैक दे दीजिए।
0: बाजीगर का टाइटल सॉन्ग।
1: ओके मैम।
0: बहुत अच्छा लगा करुणापति जी आपसे बात करके। चलिए हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो कानपुर।
1: हेलो, नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं?
1: मध्य प्रदेश से शेख मुसा बोल रहे हैं।
0: कैसे हैं आप?
1: बस अब आपसे दुआएं।
0: जी हाँ, सब जो है जी।
1: और आज मैं भी बैठे बैठे लगा रहे थे, लग गया कॉल, नहीं बड़ा मुश्किल रहता है कॉल लगाना।
0: हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि सब लोग हमें कॉल्स कर रहे
1: तो
0: होते हैं तो
1: आप नीमा देवी
0: जी। बहुत जो है आपके बहुत सारे पत्र और लेटर्स भी मिलते हैं, और आपके जो है उसमें बहुत ही अच्छे से मैसेजेस होते हैं जिन्हें पढ़कर हमें बहुत खुशी होती है। आपका जुड़ाव जी।
1: बस ये सोच रहे मैडम रेडियो सुनने का।
0: रेडियो
1: हमारे साथ में हमारे मास्टर अशोक वर्मा भी खड़े हुए हैं।
0: अच्छा जी, हेलो अशोक जी, कैसे हैं आप?
2: नमस्कार।
0: नमस्ते।
2: बहुत ठीक है, आप सुनाइए, आप कैसे हो?
0: बहुत अच्छे हैं हम
2: जी।
0: और आप सभी लिसनर्स के, जो हमारे पुराने लिसनर्स हैं ना, इन सब से जब हमारी बात होती है ना तो बहुत अच्छा लगता है हमको भी।
2: बिल्कुल बिल्कुल, हमको भी बहुत अच्छा लगता है। आप जैसे उद्घोषक जब हमें याद करते हैं
0: जी,
2: तो मन उत्साह से भर जाता है।
0: बिल्कुल। तो कैसा लग रहा है आपको, हेलो कानपुर में आपकी कॉल लगी है, आप बात कर रहे हैं?
2: जी कानपुर में बहुत दिन बाद फोन लग रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले जब बंद हो गया था प्रोग्राम, इससे
0: जी
2: पहले लगाया था मैंने, काफी दिनों बाद बात हो रही है आज आपसे
0: जी।
2: तो बहुत अच्छा लग रहा है कि प्रोग्राम और शुरू कर दिया आपके द्वारा, मतलब कानपुर केंद्र द्वारा।
0: जी बिल्कुल,
2: सबसे पहले तो कानपुर केंद्र को कोटि कोटि धन्यवाद।
0: जी बिल्कुल, बहुत, क्योंकि आपका प्यार, आपका जो जुड़ाव है आकाशवाणी से, वो इतना पुराना है कि ये मुलाकात का एक बहुत अच्छा जरिया है। हमारी आपसे बात होती है, आपके जो विचार हैं वो हम तक पहुंचते हैं और हम फिर उन्हें दूसरे लिसनर्स तक पहुंचाते हैं, तो उसका जो ये माध्यम है ना वो बना है आकाशवाणी हमारा और ये प्रोग्राम हेलो कानपुर।
2: जी जी जी। और क्या प्रोग्राम तो बहुत सारे सुनते भी है, जैसे फोनिंग कार्यक्रम चालू हुआ, फिर आपकी पसंद आ रहा है
0: जी,
2: आपकी फरमाइश नाइट में भी जो प्रोग्राम चालू हुआ है वापस पुनः।
0: तो ये आप सबके, सबका प्यार है, सबका साथ है। तो अशोक जी बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके। आज कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे?
2: जी आज हमें क्रांति फिल्म 1981 में जो आई थी उसमें गाना है लुई समाज का लुई।
0: जी बिल्कुल,
2: वो गाना मुझे बहुत पसंद आता है, तो मैं वही गाना सुनना पसंद करूंगा।
0: ठीक है, चलिए हम आपके
2: दोस्तों का नाम भी लेना चाहूंगा।
0: बिल्कुल ले लीजिए।
2: सनावत के ही राजकुमार बोड़ाना जी है हमारे, हम तीनों के मतलब जोड़े से सुनते ही है आकाशवाणी कानपुर।
0: जी जी बिल्कुल,
2: तीनों एक साथ ही सुनते हैं मतलब
0: जी। हम आप सभी की पसंद पर आपको सुनवाते हैं ये गीत।

0: हेलो कानपुर।
1: नमस्कार दीदी,
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: मेरा नाम अमर सिंह भील है दीदी।
0: तो अमर जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है दीदी।
0: बढ़िया है, और बिल्कुल
1: हाँ
0: है, आप बढ़िया हैं तो हम भी बढ़िया हैं।
1: बढ़िया है। अपन तो बीत गई गांव पर रहे। हाँ
0: बहुत धूप है, बहुत गर्मी है।
1: बहुत गर्मी है यहाँ पर तो, अभी तो राजस्थान में तो।
0: हाँ, राजस्थान का टेम्परेचर तो और बहुत ज्यादा रहता है। अमर जी, क्या करते
1: हेलो
0: हैं आप?
1: दीदी, खेती किसानी करते हैं अपन तो, कहीं मूंग लगा रहा है क्या अभी तो।
0: अच्छा, खेती किसानी करते हैं, तो कौन सी फसल आपके खेत में इस समय है?
1: अभी मूंग लग रहे हैं, मूंग।
0: मूंग की दाल लगी हुई है।
1: हाँ मूंग की दाल।
0: जी, मूंग और उड़द की खेती का ये समय है।
1: हाँ
0: जी, तो कटाई होनी होगी, ये कब होगी?
1: ये कटाई मतलब मैं 1 माह के बाद हो जाएगी अब।
0: जी, 1 महीने के बाद होगी। तो
1: हाँ
0: खेती जब, अब ये फसल जब कट जाएगी तो फिर दूसरी फसल लगाने का समय आ
1: हाँ
0: जाएगा।
1: दूसरी आ जाएगी फिर, मतलब लगातार दूसरी आ जाएगी,
0: जी, और ऐसे ही बिल्कुल। और
1: मतलब
0: आप,
1: तीन तीन फसल ले अपन 1 साल में, 3 फसल ले। हाँ
0: अच्छा, 1 साल में 3 फसलें लगाई जाती हैं।
1: तीन फसल आ जाए,
0: बिल्कुल, तो आप,
1: मतलब ये कट के दूसरी आ जाए, दूसरी करके दूसरी आ जाए, मतलब मैं भुगती रहे, मतलब
0: जी,
1: वो नहीं चालू रहे अपने तो।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके घर परिवार में कौन कौन है?
1: अपने बीवी भी है, बच्चा भी है, सभी है, मम्मी पापा भी है, भाई भाई भी है, बहन भी है, सभी है अपने, अरे पूरा परिवार
0: पूरा
1: अपने।
0: परिवार है। जी बिल्कुल। तो इस, ये जो गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है अमर जी, तो आप कैसे ध्यान अपना रख रहे हैं अपने परिवार का, या क्या बचाव करने के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं?
1: मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ दीदी कि सुबह शाम में अगर कहीं काम पड़े सुबह शाम निकलो बाहर, घर से नितर घर रहे हो।
0: बिल्कुल,
1: जैसे मक्खन है अपने घर में, मक्खन है तो दही है मतलब में,
0: जी,
1: तो उसका उपयोग करो, और मतलब गर्मी चीज मत खाओ कभी भी,
0: हाँ, दही
1: दलिया
0: है,
1: का दिन
0: मक्खन है,
1: अच्छा
0: छाछ है।
1: अच्छा

0: वैसे करो, मतलब अभी ब्याह शादी चल रही, तो मतलब मैं उसमें चल जाए अपन,
1: जी
0: कुछ
1: जी
0: निकाले में अपन, मतलब मैं जो भी मतलब ऊपर का मतलब तेल का सामान रहे, तो मतलब अभी गर्मी करे वो,
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: उससे मतलब मैं बहुत कम उपयोग करो उसको।
1: हाँ बिल्कुल, जो गर्मी का मौसम है उसमें तेल और मसालों का उपयोग जो है खाने में कम से कम हो।
0: कम से कम हो अभी।
1: जी बहुत अच्छी बात है, और यही एक जो है कि हम अपने खान पान का अगर ध्यान रखते हैं, या हम बाहर निकलें तो पूरे कपड़े पहनकर निकलें, ढककर निकलें, अपना सर ढककर रखें, तो गर्मी से जो है खुद का बचाव कर सकते हैं।
0: हाँ, खुद का बचाव है, एक तो एक पेड़ पौधा लगाओ, तो
1: बिल्कुल
0: उससे मतलब मैं अपने हवा मिलती रही अपनी ठंडाई की,
1: बिल्कुल, जो
0: देखने के
1: है
0: लिए भी सभी मतलब मैं,
1: हाँ,
0: तो
1: क्योंकि
0: पेड़ पौधा
1: पेड़
0: लगाओ जरूरी है गर्मी।
1: बहुत जरूरी है, जो घर से बाहर हैं उनके लिए पेड़ की छाव जो है, और हमारी इस प्रकृति के लिए भी बहुत जरूरी है कि पेड़ हों धरती पर।
0: जी
1: जी तो बहुत अच्छा लगा बात करके अमर जी आपसे। आज कौन सा गाना आप सुनना चाहेंगे?
0: हाँ दीदी, हमें बेलगम पिक्चर का गाना सुना देना।

0: हेलो कानपुर।
1: हेलो कानपुर, नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते, कौन बोल रहा है?
1: हम संतू बोल रहे हैं दीदी।
0: संतू जी,
1: कल हमने एड में सुना था कि ये कार्यक्रम दोबारा से शुरू हो रहा है, तब हमने आज लगाया फोन।
0: बिल्कुल
1: दीदी, आप कौन बात कर रही हैं दीदी?
0: हम पूर्णिमा बोल रहे हैं।
1: अच्छा पूर्णिमा जी, आप नाम सब सुना है, आप रेनबो पर कई बार आती हैं आप?
0: जी, रेनबो पर में आप हमारे
1: भी आती हैं?
0: हाँ जी बिल्कुल, आप हमारी आवाज सुनते हैं रेनबो पर।
1: हाँ दीदी,
0: तो
1: सुनते हैं।
0: बिल्कुल, कैसे लगते हैं आपको हमारे प्रोग्राम्स?
1: बहुत अच्छे लगते हैं सारे, भारती के भी और रेमबो के भी।
0: जी, क्योंकि
1: और
0: हम
1: लखनऊ रेमबो से भी जोड़ते हैं, लखनऊ रेमबो के भी अच्छे लगते हैं।
0: जी, क्योंकि हमारे स्टेशन से, यहाँ से जो है, आप सभी के लिए बहुत ही जानकारी वाले प्रोग्राम्स हम पहुँचाते हैं, ताकि आपके पास जानकारी भी पहुँचे और संगीत भी पहुँचे।
1: जी दीदी, तब कल हमने सुना तो मैं बड़ी खुशी हुई कि दोबारा से शुरू हो गया एक तरह से।
0: जी बिल्कुल, आप सभी के लिए है हमारा ये प्रोग्राम, ताकि आपकी बात हमसे हो सके, आपके विचार हम तक पहुंच सके, या हमारे विविध भारती से आपकी फरमाइश कार्यक्रम आता है जो
1: अब
0: मेल्स
1: तो
0: वाला।
1: चेंज हो गया कार्यक्रम का टाइम, 9
0: हाँ,
1: बजे
0: टाइम हो गया है, चेंज हो गया है, 9 बजे अब आता है वो
1: वो छाया
0: प्रोग्राम।
1: गीत का कार्यक्रम, पुराने टाइम पे चालू हो गया ना, पुराना समय जो था
0: पुराना
1: 10
0: समय
1: बजे
0: था।
1: से।
0: जी जी बिल्कुल, सभी प्रोग्राम्स अच्छे हैं, विविध भारती हो या FM रेनबो, और आप हमारे प्रोग्राम्स को अब तो ऐप के माध्यम से भी सुन सकते हैं।
1: जोन है यार आपके माध्यम से यहाँ सुन सकते हैं वो, तो आप तो बताइए कैसे हैं दीदी?
0: हम बहुत अच्छे हैं सत्तू जी, और आपसे बात करके हम और भी अच्छे हैं।
1: आपसे बात करके बढ़िया लग रहा है दीदी, दरअसल मैं ब्लाइंड पर्सन हूँ दीदी, कुछ
0: हाँ जी
1: आरजे जो है हमें पहचानती हैं,
0: बिल्कुल,
1: कभी ये प्रोग्राम में कभी उन्हें बताएंगी वो आपको।
0: जी बिल्कुल, क्योंकि जब हम किसी से बात करते होते हैं तो उनकी आवाज हम पहचान जाते हैं। तो
1: हम भी अब पहचान लेंगे।
0: जी सत्तू जी, तो आज कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: आज एक श्रीदेवी की मूवी जो बंजारन मूवी नहीं है, जिसमें गाना है, तेरी बंजारन रास्ता देखे,
0: जी,
1: विविध भारती सुनते उसमें आवाज बताता है ना,
0: जी, बंजारन
1: आवाज
0: मूवी का
1: बताता
0: गाना है।
1: है। एक मेरी रिक्वेस्ट है कि गाना पूरा सुनवाइएगा दीदी।
0: बिल्कुल, पूरा सुनवाएंगे, बिल्कुल। को
1: ठीक है
0: सुनवाते
1: दीदी,
0: हैं आपकी पसंद का ये गाना।

तो कानपुर अब वक्त आ गया है इजाजत लेने का। शाम ढल जाए तो क्या, रिश्तों की रोशनी बाकी रहती है और कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो बंद रेडियो के बाद भी दिल में गूंजती रहती हैं। आप सुन रहे थे हेलो कानपुर एफएम रेनबो 102.2 एफएम पर। मैं हूं आपकी अपनी आरजी पूर्णिमा। फिर मिलूंगी नई शाम, नए एहसास और नए गीतों के साथ। दिल खोल कर हंसिए और मुस्कुराइए और आज के हेलो कानपुर से पूर्णिमा को दीजिए इजाजत। इस प्रोग्राम में तकनीकी सहयोग प्राप्त हुआ अन्नपूर्णा और प्रवीण कुमार का। प्रस्तुत करता थे राहुल पॉल।

नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं और अब सुनिए मुख्य समाचार। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि ये भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है। ईरान संघर्ष के बारे में श्री जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका दोनों इस पक्ष में हैं कि दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतें कम रहें। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि भारत अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण सामरिक भागीदारों में से एक है। श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद की पीड़ा झेली है और दोनों देश उन मुद्दों पर एक जैसी राय रखते हैं जो आने वाली सदी की रूपरेखा तय करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री 4 दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे। वे 26 मई को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा आज लखनऊ में बनाए गए 86 परीक्षा केंद्रों में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई। ये परीक्षा दो पालियों में आयोजित की गई। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक आयोजित हुई, वहीं दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक चली। परीक्षा को निष्पक्ष और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। केंद्रीय माध्यमिक

शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। ये सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई है। ये समस्या जांच की गई उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई कॉपी के आवेदन के दौरान हुई थी। बोर्ड ने कहा है कि कुछ मामलों में ज्यादा भुगतान कटा है जबकि कुछ मामलों में कम राशि ली गई है। सीबीएसई के अनुसार अतिरिक्त भुगतान के मामलों में राशि खाते में लौटा दी जाएगी। कम भुगतान के मामले में विद्यार्थियों को बाकी भुगतान के लिए अलग से सूचित किया जाएगा। गोरखपुर के चरगावा के खुटहन में कामकाजी महिलाओं के लिए श्रमजीवी महिला छात्रावास का निर्माण शुरू हो गया है। महिला एवं बाल कल्याण विभाग की तरफ से बनाए जा रहे 500 बेड की क्षमता वाले इस छात्रावास के निर्माण पर लगभग 47 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। छात्रावास में आधुनिक सुविधाएं होंगी। इनमें सीसीटीवी कैमरे, फायर सेफ्टी सिस्टम और शिशु सदन शामिल हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिए गार्ड, महिला वार्डन और हाउसकीपिंग स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आइए सुनते हैं विशेष कार्यक्रम क्षेत्रीय समाचार एकांश की प्रस्तुति।
3: विशेष कार्यक्रम। विशेष कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे सरकार के प्रयासों से औद्यानिक खेती के जरिए सशक्त बनते प्रदेश के किसानों पर तनवीर फातिमा की खास रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अन्नदाता किसानों को विभिन्न योजनाओं के जरिए आर्थिक और तकनीकी रूप से और मजबूत बनाने पर जोर दे रहे हैं। ऐसे में देश का सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश भी कृषि क्षेत्र में योगदान देकर देश में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित हो रहा है। उत्तर प्रदेश की लगभग 75% भूमि कृषि योग्य है और यहाँ की मिट्टी कृषि के लिहाज से बेहद उपजाऊ है। यही वजह है कि प्रदेश गेहूं, दूध, गन्ना, आलू, आम, अमरूद, मटर, मशरूम, तरबूज और शहद के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। प्रदेश की इस उपलब्धि ने युवा पीढ़ी को भी बागवानी को करियर के रूप में चुनने के लिए प्रेरित किया है। आज काफी संख्या ऐसे युवाओं की है जो उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद स्टार्टअप के तौर पर कृषि क्षेत्र में भविष्य तलाश रहे हैं। केंद्र और प्रदेश सरकार ऐसे लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि सरकार बागवानी क्षेत्र में निर्यात बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों से ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, न्यूजीलैंड जैसे कई अन्य देशों ने भारतीय फलों के लिए अपने बाजार खोल दिए हैं।
5: भारत को हम दुनिया का फूड बास्केट बनाना चाहते हैं। अब भारत के जो फलों के टैक्सेस है, बाजार में पहुंच है, क्योंकि उस देश की अनुमति लेनी पड़ती है। ऑस्ट्रेलिया में हम अनार और अंगूर अब भेज पाएंगे, उन्होंने बाजार खोला है। अर्जेंटीना में आम अब हमारा पहुंच पाएगा। सर्बिया में खट्टे फल और अनार के फल। ऐसे वियतनाम, अमेरिका सहित अलग अलग देशों में हम लोग कोशिश कर रहे हैं। एक पहली चीज है एक्सेस हो, ताकि हम भेज पाए अपने उत्पाद।
4: केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए किसानों का विकास आवश्यक है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सरकार फल उत्पादन के साथ किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए गुणवत्ता सुधार और प्रसंस्करण सुधार को भी बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि भारत वर्तमान में लगभग 1,129 लाख मीट्रिक टन फलों का उत्पादन कर रहा है। हालांकि निर्यात की बात करें तो देश लगभग 14 लाख मीट्रिक टन का ही निर्यात करता है। उन्होंने कहा कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए फलों की शेल्फ लाइफ बढ़ाना जरूरी है।
5: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कई फलों की शेल्फ लाइफ बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है और उस पर और काम चल रहा है, तो हम शेल्फ लाइफ बढ़ाएंगे। विदेशों में रिजेक्शन ना हो, इसलिए क्वालिटी को इम्प्रूव करने

0: का काम।
1: प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि फलों के बढ़ते बाजार को देखते हुए प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अलग अलग किस्म के फलों की खेती करने वाले किसानों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। क्वालिटेटिव उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किसानों और एफपीओ को प्रशिक्षित करने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। सरकार सभी जनपदों में आधुनिक उपकरण और नर्सरी की व्यवस्था सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभा रही है। महोबा में उद्यान विभाग द्वारा बनाई गई हाईटेक नर्सरी इसी का उदाहरण है। लगभग 125 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस आधुनिक नर्सरी में तैयार किए गए उच्च गुणवत्ता वाले तरबूज और खरबूजे के पौधे लगाकर किसान भारी मुनाफा कमा रहे हैं। जिला उद्यान अधिकारी सुरेश कुमार ने बताया कि पारंपरिक खेती के मुकाबले तरबूज और खरबूजे की बागवानी करने वाले किसानों की प्रति एकड़ लाखों रुपए की बचत हो रही है।
2: सब्जियों के पौधे जैसे बैंगन है, टमाटर है, पत्ता गोभी, फूल गोभी है और करेला है, कुकरमिर्च जो भी है, इसके अलावा जो है तरबूज खरबूज के भी पौधे लगाएंगे, खीरा के भी पौधे लगाएंगे। अब किसानों के पास जो है उत्पादन होना शुरू हो गया है, जैसे कि किसानों के फोन आते हैं, कहते हैं कि साहब आपने जो बैगन का पौधे दिए थे बहुत अच्छे हैं, अभी तरबूज का सीजन चल रहा है तो किसान के जो है तरबूज भी खेत में तैयार हो गए हैं। कुछ किसान ने बताया कि हमारा जो है 8-8, 10-10 किलो के तरबूज तैयार है और किसान बड़े खुश हैं कि यहाँ का जो पौधा है अच्छा है और उत्पादन अच्छा हो रहा है।
1: गोरखपुर के पिपराइच और उनौला क्षेत्र में किसान ड्रैगन फ्रूट्स की खेती कर आय बढ़ा रहे हैं। गोरखपुर के जिला उद्यान अधीक्षक पारसनाथ ने बताया कि उद्यान विभाग की योजनाओं की मदद से ड्रैगन फ्रूट्स की खेती के लिए किसान बड़ी संख्या में जागरूक हो रहे हैं।
3: पहले ड्रैगन फ्रूट की खेती बहुत कम मात्रा में होती थी, उद्यान विभाग की योजनाओं में पिछले साल से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। काफी किसान भाई ड्रैगन फ्रूट की खेती से लाभ प्राप्त कर लिए हैं और भी बहुत से किसान भाई इसके लिए आवेदन पूर्व से ही कर रहे हैं।
1: वहीं ड्रैगन फ्रूट की खेती करने वाले किसान धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार के अनुदान की मदद से वो ये खेती कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 1 एकड़ जमीन पर ड्रैगन फ्रूट उगाने पर लगभग 1 लाख रुपए तक की बचत हो जाती है।
4: ये बहुत अच्छी पहल है जिसमें सरकार हमें अनुदान भी देती है और इस फल की डिमांड भी है, लोगों के अंदर इसकी चाहत भी है, किसानों के अंदर भी इसकी ललक है जो हम ड्रैगन की खेती करें, क्योंकि ये विदेशी फल है। 1 साल में लगभग 1 एकड़ से 1 लाख की इनकम सब किसान को खर्चे निकालने के बाद हो जाती है।
1: बाराबंकी में जापानी पिंक अमरूद, स्ट्रॉबेरी के साथ ही फूलों की खेती करने वाले किसानों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बाराबंकी के प्रगतिशील किसान मोइनुद्दीन ने 2009 में वकालत छोड़कर फूलों की खेती शुरू की थी। उन्हें ये पेशा इतना रास आया कि आज उनके पॉली हाउस में उगने वाले फूल लखनऊ के साथ दिल्ली तक भेजे जाते हैं। मोइनुद्दीन ने बताया कि फूलों की खेती से 1 साल में उनकी 15 से 20 लाख रुपए की बचत होती है। मोइनुद्दीन को कृषि के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए कई बार सम्मानित भी किया गया है।
5: 2013 में वाइब्रेंट गुजरात हुआ था तो उसमें हिंदुस्तान से के सभी स्टेट से 2-2 प्रगतिशील किसानों को बुलाया गया था तो मुझे बेस्ट फार्मर अवार्ड मुझे ही मिला था, बेस्ट किसान अवार्ड, तो उसमें उनसे उनके सुझाव मांगे गए थे तो उसमें हम लोगों ने प्रेजेंटेशन दिया था कि कैसे आए किसान अगर दुगनी करना चाहते हैं तो कुछ धामाई जो ट्रेडिशनल फसलें हैं उससे बढ़ आगे हटके हमें फ्लोरिकल्चर, बागवानी या और जो ऐसी हमारी जो है फसलें हैं जो हाईटेक फसलें हैं उस पे अगर खेती करेंगे तो किसान निश्चित ही किसानों की आय दुगनी होगी।
1: प्रदेश के हर जिले में ऐसे प्रगतिशील और सफल किसानों की कहानी युवाओं को इस क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही है। ऐसे युवाओं की मदद के लिए सरकार व्यापक कदम उठा रही है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर मनीष मिश्रा ने बताया कि सरकार कृषि में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए तमाम ऐसी योजनाएं चला रही है जो न सिर्फ आकांक्षी युवाओं को सही दिशा दिखा रही है बल्कि उन्हें आधुनिक प्रशिक्षण देकर उनकी दक्षता भी बढ़ा रही है।
6: कोई भी युवा जो निकलते हैं पढ़ करके उनको कृषि एक बहुत ही आकर्षक माध्यम दिखाई पड़ता है और इसमें संभावनाएं इसलिए बहुत हैं क्योंकि बाकी सारे जो व्यवसाय हैं उनका एक डिक्लाइनिंग पॉइंट होता है, कृषि का कभी नहीं हो सकता है क्योंकि हमेशा हमको खाद्यान्न की, हमेशा में उद्यान फसलों की, हमें सब्जियों की हमको हमेशा जरूरत पड़ने वाली, तो इसमें कभी कोई कमी नहीं आ सकती। तो इस नाते से कोई भी अगर युवा आकर के एक कृषि व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो पूरे देश में एक बहुत ही परंपरागत ढांचा है इन लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए, इनको बोलते हैं एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर, जो पूरे देश में खाली भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में 50 के करीब पूरे देश में है।
1: प्रदेश सरकार ने बागवानी को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश औद्यानिक निर्यात प्रोत्साहन का गठन किया है। फिलहाल

0: प्रदेश में औद्यानिक खेती को मिल रही सफलता आने वाले दिनों में भारत को वैश्विक बाजार में मजबूत पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाएगी।
1: विशेष कार्यक्रम में आज आपने सुना, सरकार के प्रयासों से औद्यानिक खेती के जरिए सशक्त बनते प्रदेश के किसानों पर तनवीर फातिमा की खास रिपोर्ट।
2: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
3: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक

0: कीप लिस्निंग टू FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
2: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
1: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
3: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरी वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
4: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
5: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ।
6: सो माय डियर लिस्नर, वेरी वार्म वेलकम। 5:12 और 46 सेकंड हो चुके हैं और शुरू हो गया है आज का टॉप 10। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे दोस्त अलका। तो बात करते हैं आज कौन से टॉप 10 आपके लिए लेकर आई हूं मैं। जी हां, आज उन 10 गानों को लिस्ट में शामिल करेंगे जिन्होंने साल 2021 में बॉलीवुड में धूम मचा रखी थी। साल 2021 बॉलीवुड के लिए एक बहुत ही खूबसूरत और इमोशनल साल था। इस साल पेंडेमिक के बाद जब फिल्में OTT और थिएटर्स पर लौटी तो उनके गानों ने लोगों के दिलों को खूब सुकून दिया। अब हम सब धीरे धीरे 2026 के लगभग आधे सफर पर आ चुके हैं, लेकिन आज हमारी टाइम मशीन का कांटा थोड़ा सा पीछे जाएगा 2021 में। और अगर हम बात करें इस खूबसूरत गाने के जो 10 नंबर पर टिका हुआ था, तो हरी साड़ी में सारा अली खान, याद है ना आपको, इस गाने में AR रहमान साहब ने कंपोज किया था एक खूबसूरत गाने को। तो चलिए नंबर 10 पर अतरंगी रे के इस खूबसूरत ट्रैक को करते हैं एंजॉय। स्टे ट्यून्ड 100.7 FM रेनबो।

सो फ्रेंड्स, अभी आपने एंजॉय किया नंबर 10 और अब बारी आ गई है नंबर 10 के बाद नंबर 9 की। और नंबर 9 पर उस वक्त जो ट्रैक था वो क्या था, ये तो आप सुनने के बाद इस ट्रैक को एंजॉय जरूर करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ट्रेंडिंग चार्टबस्टर रहा था उस वक्त। मूवी थी लव आजकल और उस मूवी का ट्रैक था शायद। तो चलिए इस ट्रैक को नंबर 9 पर करते हैं एंजॉय। स्टे ट्यून्ड 107 FM रेनबो।

समय डियर लिसनर्स, 5:22 और 27 सेकंड हो चुके हैं और नंबर 10 से शुरू करते हुए हम पहुंच चुके हैं इस वक्त नंबर 8 पर। जी हाँ, भी आपने नंबर 10, नंबर 9 और एंजॉय किया ट्रैक जो कि 2021 में जिन्होंने बॉलीवुड में मचा रखी थी धूम। और अब अगला गाना जो नंबर 8 पर रहा, आपको बता दें कि नंबर 8 पर जो ट्रैक था वो सिंगल ट्रैक मूवी से था उस वक्त, जिसने 8 नंबर पर अपने पैर जमाए हुए थे और फिल्म थी सिंगल ट्रैक और सॉन्ग जो था वो था लुट गए। तो आइए इस ट्रैक को करते हैं एंजॉय।

आपको ये ट्रैक याद है और ये फिल्म याद है? जी हाँ, ये फिल्म थी रूही, वही फिल्म जिसमें थोड़ी सी कॉमेडी थी और थोड़ा थोड़ा हॉरर टच भी था। मिक्स थी ये फिल्म और बहुत ही मजेदार मूवी थी, और इस मूवी का ये खूबसूरत सा जो ट्रैक है उस वक्त था नंबर 7 पर।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती हैं नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें। चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब। जहां हर घर में बजता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
2: अरे चिंटू, तुम समोसे का खाली आलू आलू क्यों खा रहे हो?
3: अरे भाई, बहुत बीमार चल रहा हूँ मैं, और डॉक्टर ने बाहर का खाने को मना किया है, बस इसीलिए अंदर का आलू खा रहा हूँ।
1: सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: तो फ्रेंड्स, वेलकम है एक बार फिर से आप सभी का प्रोग्राम टॉप 10 में। 5:30:56 हो चुके हैं और समय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और हम भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे देखिए हम पहुंच गए नंबर 6 पर। और अब बारी है नंबर 6 की। आपने जो 90s के दशक का टिप टिप बरसा पानी ट्रैक इंजॉय किया होगा ना, आज भी वो गाना उतना ही दमदार और उतना ही प्यारा लगता है ना। उसका कटरीना कैफ और अक्षय कुमार वाला नया वर्जन जो है वो 2021 में सूर्यवंशी फिल्म में आया और पहुंच गया था उस वक्त नंबर 6 पर।

दोस्तों आपको फिल्म याद है मिमी? जी हाँ, एक ऐसी फिल्म थी ये, जिसने इस फिल्म को देखा एक्चुअल में वही इस फिल्म को समझ भी सकता है। एक माँ और उसके बच्चे की दिल छू जाने वाली कहानी, जिसने लगभग सभी दिलों को छुआ। और उसका एक ट्रैक था परम सुंदरी, और जिसने उस वक्त नंबर 5 पर अपने पैर जमा रखे थे।

साल 2021 पूरी तरह से फिल्म शेरशाह के नाम रहा, जिसने सबको रोने पर भी मजबूर किया और जिसके गानों के बिना हमारी प्लेलिस्ट अधूरी थी। जुबिन नौटियाल और असीस कौर की आवाज में ये गाना उस साल हर गाड़ी, हर हेडफोन और हर दिल में बज रहा था।

0: हेलो,
1: टीवी देखा क्या?
0: तू तो बंदा हीरो निकला बत्रा, मान गई
1: प्रमोशन हो गया कैप्टन बन गया हूँ।

और दोस्तों अब वक्त हो गया है नेक्स्ट ट्रैक की तरफ आगे बढ़ने का। और इससे पहले कि नेक्स्ट ट्रैक की तरफ हम आगे बढ़े, आपको बता दें कि नंबर 3 पर दोस्तों हम पहुंच चुके हैं। जी हाँ, नंबर 3 पर एक बार फिर से था फिल्म अतरंगी रे का सॉन्ग, और इस बार सॉन्ग बदल चुका था क्योंकि नंबर 10 से ये शुरुआत हुई थी। नंबर 10 पर भी अतरंगी रे के ट्रैक ने अपने पैर जमा रखे थे, जिसे आपने इंजॉय किया था चकाचक। और अब आगे ये बारी फिर से अतरंगी रे की, जिसने नंबर 3 पर अपने पैर जमा रखे थे, बस इस बार जो ट्रैक था वो बहुत ही खूबसूरत था।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
5: और फ्रेंड्स, वक्त हो गया है अब जल्दी से नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ने का। जी हाँ, मैंने आपसे कहा था ना कि 2021 का जो साल रहा वो शेरशाह फिल्म के नाम था। पूरी तरह से अपने पैर जमा चुकी थी काउंटडाउन पर और एक नहीं कई पायदानों पर इसके गाने जो थे वो धूम मचा रहे थे। शेरशाह का ये बी ट्रैक की आवाज में ट्रैक जो था वो नंबर 2 पर रहा। रांझा न सिर्फ भारत में बल्कि ग्लोबल बिलबोर्ड चार्ट्स पर भी ट्रेंड कर रहा था उस वक्त।

0: मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।
1: माजी के लम्हों में पिरोई कुछ दिलकश दास्तानें,
2: वो भूली दास्तां फिर याद आ गई।
1: चांदनी से छिटकती यादों के बीच दिल के वो खूबसूरत

0: रात की बहकती तन्हाइयों के बीच महकते हुए दिलकश तराने,
1: खोया खोया चांद, खुला आसमान,
0: रजनीगंधा। हर रात 10 बजे सिर्फ रेनबो पर, धड़कन लखनऊ।

0: ठीक ठाक। चिट्ठियाँ लिखना तो तुझे याद ही नहीं रहता। वैसे आज 11 फरवरी है, तुझे याद भी है इस तारीख को क्या हुआ था?
1: जय दोस्तों, अब वक्त हो गया है कि अब आपसे इस प्रोग्राम से विदा ले ली जाए। ये कहते हुए कि भाई अभी नंबर 10 से लेकर नंबर 2 तक हमने हर ट्रैक को एंजॉय किया और अलग अलग मूवीज ने अपने अपने पायदानों पर पैर जमा रखे थे। लेकिन बात करें अगर शेरशाह मूवी की, तो 2021 में एक ऐसी सिंगल मूवी थी जिसने कई सारे पायदानों पर अपनी मूवीज के स्ट्रैंक्स को जमा कर रखा हुआ था, कई सारी जगहों पर जगह बनाकर रखी हुई। 2021 में शेरशाह के गानों ने उस साल कामयाबी के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। साल 2021 के इन गानों को का जो मिजाज था वो बहुत ज्यादा मेलोडियस था। लोगों ने इस साल के इन गानों को बेहद पसंद किया, इमोशनल भी था और सोशल मीडिया फ्रेंडली भी थे ये गाने। तो चलिए इस ट्रैक की तरफ आगे तो बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले अपने सभी लिसनर्स से एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी और वो ये है कि भाई कुछ ही देर में आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम शुरू होने वाला है और वो फेवरेट प्रोग्राम मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार बता देती हूँ भाई। आपका अपना प्रोग्राम है हेलो एफएम। एक घंटे के बाद आप इस ट्रैक को एंजॉय करेंगे, इस प्रोग्राम को एंजॉय करेंगे, क्योंकि अभी आप एंजॉय करने वाले हैं शामिया वत। तो 7 बजे बिल्कुल रेडी रहिएगा नंबर मिलाने के लिए 2238852 या 2238845। और ये बात मैं आपको एक घंटे पहले इसलिए बता रही हूँ ताकि आप बिल्कुल तैयार रहें अपने फोन के साथ, अपने मोबाइल के साथ नंबर को डायल करने के लिए। फिलहाल इस प्रोग्राम को यहीं पर करते हैं वाइंड अप और कुछ ही देर के बाद लेकर आने वाले हैं आपके लिए अगला प्रोग्राम शामिया वत। एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम लेकर आते हैं लखनऊ शहर से जुड़ी ही बहुत सारी अपडेट्स। सिर्फ लखनऊ शहर से जुड़ी हुई नहीं, कई सारी ऐसी अपडेट्स भी होती हैं दोस्तों जो कि एजुकेशनल होती हैं, जो कि कल्चरल भी होती हैं। हमारे शहर में क्या कुछ गतिविधियां हो रही हैं, क्या कुछ चेंजेस हो रहे हैं, कहां आपको टाइमली पहुंचना है, कौन सा प्रवेश पत्र आपको डाउनलोड करना है, किस एग्जाम का रिजल्ट आ गया है, या फिर कहां पर ट्रैफिक अपडेट्स आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो इस तरह की कुछ ढेर सारी अपडेट्स को लेकर हाजिर होते हैं आप सभी के लिए नेक्स्ट प्रोग्राम में। ट्यून रखिए 100.7 एफएम रेनबो आरजेएल का के साथ। और अब बिना बातों को और लंबा खींचे आपको नंबर 1 पर इस ट्रैक के तरफ ले चलते हैं।
0: सब ठीक ठाक, चिट्ठियां लिखना तो तुझे याद ही नहीं रहता। वैसे आज 11 फरवरी है,

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब। जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं और अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भीषण गर्मी और बढ़ती बिजली मांग के बीच प्रदेश में निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन, किसानों, व्यापारियों और उद्योगों को बिजली संकट का सामना न करना पड़े, इसके लिए सभी स्तरों पर सतत मॉनिटरिंग की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बढ़ती विद्युत मांग को देखते हुए उत्पादन इकाइयों की अधिकतम क्षमता का उपयोग किया जाए और सभी संयंत्रों में तकनीक दक्षता और रखरखाव व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। साथ ही ट्रांसमिशन नेटवर्क को और अधिक मजबूत, आधुनिक और भरोसेमंद बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में बिजली वितरण व्यवस्था को और अधिक जवाबदेह तथा उपभोक्ता केंद्रित बनाने के भी निर्देश दिए। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा आज 2 पालियों में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक आयोजित हुई, वहीं दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक चली। परीक्षा के लिए प्रदेश के 9 जिलों प्रयागराज, लखनऊ, आगरा, गोरखपुर, कानपुर, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और बरेली में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉ. मोहन राव भागवत आज से 3 दिवसीय प्रवास पर लखनऊ में रहेंगे। सरसंघ चालक सरस्वती कुंज निराला नगर में चल रहे पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के कार्यकर्ता विकास वर्ग प्रथम में प्रशिक्षण लेने आए शिक्षणार्थियों के मध्य बौद्धिक और संवाद के विभिन्न कार्यक्रमों का हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम

कलकत्ता विकास वर्ग प्रथम में नेपाल सहित अवध, कानपुर, गोरक्ष और काशी प्रांत के 289 कार्यकर्ता प्रशिक्षण ले रहे हैं। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने कौशाम्बी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी और आसपास के कुछ स्थानों पर कल दिन में लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। कुछ स्थानों पर रात्रि के तापमान में वृद्धि का भी अनुमान जताया गया है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लू के ऑरेंज अलर्ट के साथ ही विभाग ने कहीं कहीं मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ तेज हवा चलने का पूर्वानुमान जताया है। लखनऊ स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि आने वाले 3 दिनों में प्रदेश में गर्मी का प्रकोप बढ़ने की संभावना है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: स्टे ट्यून्ड 100.7 एफएम रेनबो,
3: धड़कन लखनऊ की।
4: वाह, कितनी लाजवाब डिशेस बनाती हो, इतनी रेसिपीज कहां से लाती हो?
5: शत्रुपा से। अरे बहू, मेरा जोड़ों का दर्द तो बिल्कुल चला गया, कहां से लाई है नुस्खा?
6: शत्रुपा से माँ जी।
7: वाह, तेरा घर तो एकदम पिक्चर परफेक्ट है, कहां से लाती हो इतने नए नए आइडियाज?
6: शत्रुपा से।
8: घर, बच्चे, शॉपिंग, किचन, गार्डन, वार्डरोब, कैसे मैनेज कर लेती हो इतना सब?
6: शत्रुपा से।
9: हमारी होम मेकर्स की कंप्लीट मैगजीन शत्रुपा, मंडे टू थर्सडे दोपहर 12 बजे, ओनली ऑन 100.7 एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
2: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
1: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।

खूबसूरत नंगारे ढोल के साथ शुरुआत हो गई है आज के प्रोग्राम श्यामी अवध की, और एक बार फिर से अलका है आपके साथ 100.7 FM रेनबो पर। भाई अपडेट्स का सिलसिला भी चलेगा पूरे एक घंटे श्यामी अवध में, और फिलहाल इस गाने को डिस्टर्ब नहीं करूंगी, बहुत ही प्यारा ट्रैक है, चलिए थोड़ा सा थिरकते हैं।

वेलकम है आप सभी का फ्रेंड्स, और करने वाले हम बहुत सारी बातें, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे इस तपती जलती गर्मी और इस धूप की जिसने ऑलमोस्ट सबको परेशान कर रखा है। लेकिन थोड़ी सी परेशानी की बात अभी और इसमें इजाफा होने वाला है, वो ये कि कल से लग रहे हैं नौतपा। जी हाँ, जो नौतपा के 9 डेज होंगे वो सबसे ज्यादा गर्म दिन होंगे, और इन गर्म दिनों में उससे भी ज्यादा हमें अपनी सेहत का ख्याल

रखना होगा जितना अभी पिछले कुछ दिनों से हम रखते आ रहे हैं। और अगर आपने पिछले कुछ दिनों में अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखा है, धूप से खुद को नहीं बचाया है, तो ये समझ लीजिए कि आने वाले 9 दिन आपको काफी कठिनाइयां फेस करनी पड़ सकती हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि बॉडी को आप हाइड्रेट रखें, और जरूरी है खूब सारा पानी पीजिए। और पानी ही नहीं, बहुत सारी ऐसे लिक्विड डाइट्स हैं जिन्हें आपको टाइम टू टाइम लेना होगा, क्योंकि पानी सिर्फ पानी होता है। और पानी में की जगह अगर आपने नींबू पानी या फिर आपने छाछ पिया, आपने नारियल पानी पिया, तो ये आपको ज्यादा हाइड्रेट रख सकते हैं नॉर्मल पानी के कंपैरिजन में। इसके अलावा आप डिटॉक्स वाटर बना सकते हैं। इस तरह के पानी की डाइट आपको लेनी ही लेनी होगी। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्टेप जो होता है वो ये कि आप इस चलती गर्मी से, इस धूप से अपने आप को, खुद को बचाएं। क्योंकि अगर आपको लगता है कि बहुत जरूरी कोई काम है, तब तो पूरी तरह से अपने आप को कवर करके आप बाहर निकले, अन्यथा घर से बाहर ना निकले। क्योंकि हम ये उम्मीद भी नहीं कर सकते, मतलब एक अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि आने वाले 9 दिन कितने गर्म होने वाले हैं। इसके अलावा कोशिश कीजिए कि जो ड्रेस आप चूज कर रहे हैं इस गर्मी के दौरान पहनने के लिए, वो कॉटन की हो, प्योर कॉटन।

से अपने आप को खुद को बचाएं, क्योंकि अगर आपको लगता है कि बहुत जरूरी कोई काम है तब तो पूरी तरह से अपने आप को कवर करके आप बाहर निकले, अन्यथा घर से बाहर ना निकले, क्योंकि हम ये उम्मीद भी नहीं कर सकते, मतलब एक अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि आने वाले 9 दिन कितने गर्म होने वाले हैं। इसके अलावा कोशिश कीजिए कि जो ड्रेस आप चूज कर रहे हैं इस गर्मी के दौरान पहनने के लिए वो कॉटन की हो, प्योर कॉटन। इसलिए बहुत जरूरी है कि बहुत लाइट कलर के कपड़े बहुत कोशिश कीजिए व्हाइट पहनिए, अदरवाइज कॉटन के बहुत लाइट शेड के कपड़े इस्तेमाल कीजिए, डार्क ब्लू, ब्लैक और इस तरह के कलर्स को अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको लगता है कि शायद सभी लोग इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये काफ़ी इफेक्टिव बातें होती हैं। जब आप इसे इन पर इम्प्लीमेंट करते हैं देन आप उसके बाद जब फेस करते हैं, सनलाइट में बाहर निकलते हैं, तो आपको खुद रिलैक्स फील होगा और आपको लगेगा कि वाकई ये चीज़ें अपना असर दिखाती हैं। इसलिए जल्दी ये तपती धूप जो है इसे हम नहीं रोक सकते, लेकिन इससे खुद को बचा जरूर सकते हैं।

तो फ्रेंड्स, अगली अपडेट का टाइम हो गया है 6:18 और 3 सेकंड हो चुके हैं दोस्तों, और आज का शामी अवधा आप इंजॉय कर रहे हैं आरजे अलका के साथ। तो जल्दी से बता दें आपको लेखपाल भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी के बारे में क्या है जानकारी। तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 21 मई को प्रदेश भर में 7,994 पदों के लिए आयोजित लेखपाल भर्ती मुख्य परीक्षा की प्रोविजनल उत्तर कुंजी जो है वो जारी कर दी है, और ये आयोग की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी और अभी फिलहाल ये 28 मई तक उपलब्ध रहेगी। तो अगर अभी तक आपने ये उत्तर कुंजी नहीं देखी है तो आप इसे देख सकते हैं, और कहां देखना है किस वेबसाइट पर आपको बताते हैं, upssc.gov.in। एक बार फिर से आप साइट नोट कर लें, upssc.gov.in पर देख सकते हैं इस उत्तर कुंजी को, जिसके लिए लास्ट डेट जो है वो 28 मई डिसाइड की गई है। इसके बाद आप इस उत्तर कुंजी को नहीं देख पाएंगे। फिलहाल जो वेबसाइट है इस पर जाइए और अपनी उत्तर कुंजी को देखिए। लगभग 366,712 स्टूडेंट जो थे वो इस लेखपाल भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे। फिलहाल गानों का सिलसिला भी लगातार चलता रहेगा और उसके संग संग चलता रहेगा अपडेट्स का सिलसिला भी।

0: 100.7.
1: मैं समय हूं और मैं हरीश बिमानी हूं और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो।
2: Stay tuned 100.7 FM रेनबो,
3: धड़कन लखनऊ की।

0: भी अलसाई दोपहर की रुसवाई, तो कभी ढलती हुई शाम की अंगड़ाई,
1: शाम होने को है।
0: प्यार की बारिश, मोहब्बत की ठंडक, इश्क की आहें, तन्हाई का एहसास।

गजलें जो आंसुओं की बूंदों से दिल को सींच दे और कभी मस्ती में जिंदगी के घूंघट को खींच दे। महफिल गजल आबशार सोमवार से शनिवार रात 8 बजे 100.7 FM।

0: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: तुम दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही हो।
2: सच? अच्छा ये बताओ तुम्हें ये कैसे पता चला?
1: अरे देखो ना, तुम्हें देखते ही अब रोटियां भी जलने लगी हैं।
2: क्या?
1: हाँ।
0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: सुबह मुस्कुराती हुई, गुनगुनाती हुई,
4: हौले से जिंदगी को छूती हुई, जगाती हुई, जिंदगी के नए दिन के नए सफर पर निकलिए पुराने खूबसूरत गीतों का दामन थाम कर। सदाबहार गीत
3: सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर हर सुबह 7 बजे।

6:41 और 4 सेकंड हो चुके हैं दोस्तों। फर्स्ट हाफ हम क्रॉस कर चुके हैं आज के शाम अवध का और गानों का धमाकेदार सिलसिला लगातार जारी है और अपडेट्स का भी। सो अभी अपडेट्स बहुत सारी बाकी हैं, फिलहाल इस खूबसूरत गाने को पहले एंजॉय करते हैं और इस पर थिरकते हैं।

सो फ्रेंड्स, वक्त बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। 6:35 और 2 सेकंड हो चुके हैं और गानों का सिलसिला भी लगातार जारी है। लेकिन हाँ, अपने सभी सुनने वाले सभी प्यारे लिसनर्स से एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी कि जनरली हो क्या रहा है कि दिन भर जो है वो कड़कती चमकती और परेशान करती जलाती धूप रहती है। होता यूं है कि 10 बजते हैं, जैसे ही आप सोचते हैं कि घर के काम खत्म हुए हैं और अब हम शायद मार्केट जा सकते हैं, वैसे ही सूर्य देवता कहते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं, आप घर में रहिए, बाहर निकलने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो धूप आपको बाहर निकलने की इजाजत और सच पूछे तो हिम्मत बिल्कुल भी नहीं दे पा रही है। और इसी वजह से होता यूं है कि जो फेस्टिवल है, अभी बकरीद की तैयारियां चल रही हैं, लोग शाम होते ही मार्केट की तरफ निकल पड़ते हैं कि जल्दी जल्दी शॉपिंग कर लीजिए, अदरवाइज कल फिर पूरा दिन नहीं निकल पाएंगे उस तेज धूप में। तो इस वजह से मार्केट में रश बहुत ज्यादा हो जाता है। अब इसे तो हम अवॉइड नहीं कर सकते, फेस्टिवल है तो शॉपिंग तो बनती है, शॉपिंग तो करना ही है। लेकिन हाँ, ये जरूर कर सकते हैं कि अगर एक लोगों के शॉपिंग करने से काम बनता है, दो लोगों के शॉपिंग करने से काम बनता है, तो पूरी फैमिली को साथ जाने की आवश्यकता मुझे लगता है बिल्कुल भी नहीं है। और खासतौर पर व्हीकल जो आप यूज कर रहे हैं वो बहुत मायने रखता है। अगर आपको लगता है पब्लिक कन्वेंस से पहुंचने के बाद आसानी से आपके काम हो सकते हैं, तो बिल्कुल यही रास्ता चुनिए, क्योंकि अननेसेसरी एक्स्ट्रा व्हीकल जब रोड पर हो जाएंगे तो ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाएगा। आपने वो भी देखा होगा, लखनऊ में अब बहुत सारे चौराहों पर यू टर्न कर दिया गया है, तो यू टर्न की वजह से देखिए बहुत सारे जो जाम की स्थिति है वो काफी हद तक सॉल्व हो चुकी है। ट्रैफिक पुलिस को भी काफी ज्यादा अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ रही है। हाँ, थोड़ा सा पब्लिक को यू टर्न लेना पड़ता है, 1-2 मिनट का टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन हाँ, रश से काफ़ी हद तक बच गए हैं। तो जब प्रशासन व्यवस्था कर सकता है, तो फिर हम अपने लिए खुद एक इजी स्टेप क्यों नहीं ले सकते। लगता है कि पब्लिक कन्वेंस से जाकर या 2-व्हीलर से जाकर आपका काम बन सकता है, तो अननेसेसरी AC चलाकर 4-व्हीलर से जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी शाम हो चुकी है और शाम को शॉपिंग आप कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो बिल्कुल इस छोटे से स्टेप को अपनाइए और गर्मी से बच कितने हुए ठंडी शाम, ठंडी तो नहीं खाओगी, हाँ थोड़ी सी सुकून भरी शाम में आप आराम से शॉपिंग कर सकते हैं।

0: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
1: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
0: पाइन पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
1: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: फ्रेंड्स, कुछ ट्रेन्स ऐसी हैं जिनके बदलाव किए गए हैं रूट में। लखनऊ की कुछ ट्रेनें हैं जिनके रूट में बदलाव किए गए हैं। इसके अलावा लखनऊ जंक्शन पर शॉर्ट टर्मिनल भी कुछ ट्रेन्स होंगी। उनके बारे में आपको बता दें कि जिन ट्रेनों के रूट्स में बदलाव किया गया है वो है कटिहार अमृतसर एक्सप्रेस 4 से 9 जुलाई तक ऐशबाग, बादशाहनगर, उन्नाव और बाराबंकी नहीं जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें कि दरभंगा नई दिल्ली विशेष गाड़ी जो है वो 6 से 10 जुलाई तक ऐशबाग नहीं आएगी। छपरा मथुरा जंक्शन एक्सप्रेस 6, 8 और 10 जुलाई को ऐशबाग, बादशाहनगर नहीं आएगी। इसके अलावा बरौनी नई दिल्ली विशेष गाड़ी 6 से 10 जुलाई तक ऐशबाग नहीं रुकेगी। ये कुछ 4 ट्रेनें ऐसी थीं जिनके रूट्स में बदलाव किया गया है और जिन स्टेशंस पर ये नहीं जाएंगी उनके बारे में भी बता दिया गया। इसके अलावा लखनऊ जंक्शन पर शॉर्ट टर्मिनल भी कुछ ट्रेन्स होगी, उनके बारे में भी आपको अभी जानकारी देंगे। फिलहाल एक गाने को एंजॉय करते हैं, वापस आ रहे हैं आपके पास। ट्यून रखिए 100.7 FM रेनबो।

या फ्रेंड्स, कुछ ऐसी ट्रेन्स के बारे में भी मैंने अभी आपको कहा था कि आपको जानकारी दूंगी और बताना है आपको. तो चलिए आपको बताते चलते हैं कि अगली जो ट्रेन्स में जो चेंजेस हुए हैं, यानी कि जो शॉर्ट टर्मिनल ट्रेन्स हैं उनके बारे में बता दें. ग्वालियर बलरामपुर एक्सप्रेस 1 जुलाई को बलरामपुर के बजाय लखनऊ जंक्शन पर यात्रा अपनी स्टॉप कर देगी. बलरामपुर ग्वालियर एक्सप्रेस 2 जुलाई को बलरामपुर के बजाय लखनऊ जंक्शन से चलाई जाएगी. गोरखपुर इज्जत नगर एक्सप्रेस 7 से 9 जुलाई तक गोरखपुर के बजाय लखनऊ जंक्शन से चलाई जाएगी और मुंबई गोरखपुर 8 जुलाई को जंक्शन पर ही रोक दी जाएगी. तो काफी सारे बदलाव इस वक्त ट्रेन के रूट्स में किए गए हैं. बहुत सारी नई ट्रेन भी छुट्टियों को देखते हुए अभी नई चलाई गई हैं, यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए. तो फिलहाल इस तरह की बहुत सारी अभी अपडेट्स भी आपको जैसे भी हमें प्राप्त होती है हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं. फिलहाल वक्त हो गया 6:50 और 22 सेकंड 100.7 FM रेनबो पर आप इंजॉय कर रहे हैं आज का शामी अवध अलका के साथ.

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

सो डियर लिसनर्स, 6:57 हो चुके हैं और वक्त हो गया है प्रोग्राम को वाइंड अप करने का। तो शामी अवध को करती हूँ यहीं पर वाइंड अप और लेकर आऊंगी आप सभी के लिए नेक्स्ट प्रोग्राम। जैसे कि कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा था, तैयार रहिएगा 22:38:52 या 22:38:45 मिलाने के लिए। हल्का रहेगी पूरे एक घंटे आपके साथ आज के हेलो FM में। तो मिलाइए बेझिझक अपनी पसंद के गानों को एंजॉय करने के लिए नंबर्स को, और डायल करते रहिए, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं और अब सुनिए प्रदेश के टॉप 10 समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भीषण गर्मी और बढ़ती बिजली मांग के बीच प्रदेश में निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन, किसानों, व्यापारियों और उद्योगों को बिजली संकट का सामना न करना पड़े, इसके लिए सभी स्तरों पर सतत मॉनिटरिंग की जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि राजस्व मामलों में त्वरित, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण को शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि भूमि और राजस्व से जुड़े मामलों में अनावश्यक विलंब किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने यूपी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों को लेकर आज लखनऊ में पार्टी पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की। मायावती ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संगठन को मजबूत बनाने और जमीनी स्तर पर काम करने के निर्देश दिए। लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल ने आज नगर निगम मुख्यालय में फैजुल्लागंज वार्ड से ललित किशोर तिवारी को पार्षद पद की शपथ दिलाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ललित किशोर तिवारी को शपथ न दिलाने के कारण लखनऊ की महापौर के सभी वित्तीय अधिकार सीज कर दिए थे। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा आज दो पालियों में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। परीक्षा के लिए प्रदेश के 9 जिलों प्रयागराज, लखनऊ, आगरा, गोरखपुर, कानपुर, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और बरेली में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। हापुड़ की तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर ब्रिजघाट में कल होने वाले गंगा दशहरा पर्व को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं अमरोहा में गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए नेशनल हाईवे पर आज दोपहर 12 बजे से रूट डायवर्जन लागू कर दिया गया है। आरएसएस के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत आज से 3 दिवसीय प्रवास पर लखनऊ में रहेंगे। सरसंघ चालक सरस्वती कुंज निराला नगर में चल रहे पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के कार्यकर्ता विकास वर्ग प्रथम में प्रशिक्षण लेने आए शिक्षणार्थियों के मध्य बौद्धिक और संवाद के विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। लखनऊ में आज संडे ऑन साइकिल के 75वें संस्करण के अंतर्गत फिट इंडिया साइकिल रैली का आयोजन किया गया। साइकिल रैली में सीमांत मुख्यालय लखनऊ एवं चतुर्थ वाहिनी के अधिकारियों और बल कार्मिक

ने भाग लिया। गोरखपुर में चरगावा के खुटहन में कामकाजी महिलाओं के लिए श्रमजीवी महिला छात्रावास का निर्माण शुरू हो गया है। 500 बेड की क्षमता वाले इस छात्रावास के निर्माण पर लगभग 47 करोड़ से अधिक की लागत आएगी। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने कौशाम्बी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, जौनपुर, चंदौली, वाराणसी और आसपास के कुछ स्थानों पर कल दिन में लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ तेज हवा चलने का पूर्वानुमान जताया है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 8 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बस इंतजार हो गया है खत्म, क्योंकि 7:04, देखिए ना मैं भी कितना जल्दबाजी में हूँ और टाइम को जस्ट अपोजिट कर दिया। 7:04:29 हो चुके हैं और हमारे लिसनर्स जो हैं वो बिल्कुल इस वक्त कॉलर्स के रूप में आ चुके हैं और कॉल मिला रहे हैं और हमारे फोन लाइन की जो लाइट है वो ब्लिंग ब्लिंग ब्लिंग कर रही है। जल्दी जल्दी फोन उठाना है, बात करनी है और उनके पसंद के ट्रैक को प्ले करना है। जिन्होंने अभी तक नहीं मिलाया है वो मिलाए 2238852 या 2238845।

0: बिल्कुल, जो आपकी रूह को चैन दे, प्यार दे, और वो जो गाना आपको सुकून दे, उसी गाने को सुनिए ताकि आपका भी दिल खुश हो जाए, चेहरा खिल उठे, मुस्कुरा उठे। तो देखिए इस वक्त हमारे साथ हमारे लाइन पर कौन है कॉलर जिनसे हमें बात करनी है इस वक्त। हेलो।
1: हेलो।
0: हेलो जी, वेलकम है आपका, कौन बोल रहे हैं
1: जी? सबसे पहले आपको प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम।
0: सलाम।
1: मेरा नाम है मोहम्मद फैज, रामपुर कटरा फुलवारी बाजार, जिला बाराबंकी से बात कर रहे हैं।
0: फैज, एक बात कहूँ तुम्हें? मुझे लगता है कुछ दिन के बाद शायद जिस तरह से लयबद्धि की है ना तुमने, तुम्हें लगता नहीं है कि अपना नाम बताने की जरूरत पड़ेगी?
1: सही बात है, सही बात है।
0: ओके, तो बताए फैज, क्या हाल है, कैसे हैं आप?
1: जी दीदी, हम बहुत ही बढ़िया है। मौसम थोड़ा आज गर्मी थी और हवाएं चल रही थी, थोड़ा राहत था।
0: कल तो मेरी आपकी बात हुई थी तब आपने बताया था कि कुछ आंधी वांधी भी आई है थोड़ी बहुत, हवा चली
1: थी, लेकिन आज आंधी नहीं आती, आज हल्की हल्की हवा चली थी, लेकिन मौसम काफी खुशनुमा था।
0: अच्छा, मौसम खुशनुमा था बाराबंकी में? ओके
1: जी जी। और दीदी, हमारे गांव का मेला लगा हुआ, बहुत ही गरबा मेला लगा हुआ।
0: अच्छा,
1: सभी लिसनर से मेरी यह निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा आकर मेले में जो है तशरीफ करें।
0: बिल्कुल, तो बताइए फिर आज गाना कौन सा सुनेंगे?
1: जी, हमारे गांव का मेला है तो गाना सुनना चाहेंगे। मेला दिलों का आता है एक बार, आके चला जाता, ये वाला सॉन्ग है?
0: अरे बिल्कुल है भाई, आपकी पसंद का गाना सुनाने के लिए तो प्रोग्राम बना है। तो बिल्कुल, किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं?
1: जी जी, सबसे पहले मेरी क्यूट सी प्यारी वाली आरजी अलका दीदी को।
0: हाँ, थैंक यू।
1: उसके बाद मोहम्मद सद्दाम भाई है, और मोहम्मद मुजीब भाई है, मोहम्मद आसिफ भाई है, रिंकी पिंकी है, समा परवीन अप्पा है, गुलाब साप्पी है, सादिया है, साहिबा है, और यासिर हमीद भाई है चौकंडी वाले, और उसके बाद में बस इतना ही दीदी,
0: बस इतना ही है। ओके दीदी,
1: दीदी कभी आइएगा हमारे गाँव, टाल जाइएगा।
0: अरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल आएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू,
1: थैंक यू सो मच।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: सो फ्रेंड्स, वक्त हो गया है अपने अगले कॉलर को लाइन पर लेने का, तो चलिए करते हैं उनसे बात। हेलो।
4: हेलो, नमस्कार मैम जी।
3: नमस्ते जी, क्या नाम है आपका, कौन बोल रहे हैं?
4: राजेंद्र गंगवार, कस्बा कोरिया, तहसील नवाबगंज, झुमका सिटी, बरेली, पुराना गांव, क्रिया सैकपुर से बोल रहे हैं मैम जी।
3: ओके, तो आपने बहुत लंबा एड्रेस बता दिया, नाम आपका पीछे छूट गया। एक बार फिर से बताइए।
4: बता दे रहे हैं
3: राजेंद्र गंगवार। राजेंद्र, ओके, मैंने सही पहचाना। राजेंद्र जी कैसे हैं आप, बताइए।
4: बस ठीक है मैम जी, हम ठीक हैं, आप कैसे हो? आकाशवाणी लखनऊ में सब लोग परिवार,
3: सभी लोग बहुत अच्छे हैं और उम्मीद करेंगे कि आप भी और परिवार भी बिल्कुल अच्छा रहे, इसलिए क्योंकि जो मौसम है वो बहुत इस वक्त मतलब कष्ट देने वाला हो रहा है।
4: हाँ जी, जैसे ही सूरज निकलते हैं वैसे ही गर्मी चालू हो जाती है।
3: बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मॉर्निंग में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 8-9 बजे से ही धूप जो है वो कितनी खतरनाक होने लगती है, 10 बजे तक तो बहुत ज्यादा धूप हो जाती है।
4: बताइए, 8 बजे से ही बहुत।
3: हाँ, वही मैंने कहा। तो राजेंद्र जी बताएं आज क्या सुनना चाहेंगे।
4: हाँ जी, तो इसी उपलक्ष्य में हमें कुली नंबर मूवी का सॉन्ग सुनवा दीजिएगा, जेठ की दोपहरी में।
3: वाह भाई वाह, मतलब गर्मी की बात हुई और आपने खूबसूरत सा गाने की फरमाइश की, बहुत बढ़िया।
4: हाँ जी, कुछ दोस्तों के नाम है।
3: बिल्कुल बिल्कुल लीजिए।
4: हाँ जी, भगवान सिंह परमार जी है, सारुन नूर अंसारी जी है और गंगादत्त सावंकर जी है, सोनू जी है, लोकेंद्र वर्मा जी हैं, गौतम राय जी हैं और साथ में आप और लखनऊ के पूरा परिवार सुनेगा और जितने लाइव श्रोता सुनेंगे सभी को सॉन्ग डेडिकेट रहेगा मैम जी।
3: थैंक यू सो मच राजेंद्र जी, थैंक यू।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में सुचारू और निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के दिए निर्देश, कहा बिजली उत्पादन इकाइयों को पूरी दक्षता से किया जाए संचालित। विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर की चर्चा, मार्को रूबियो कल आगरा में ताजमहल का करेंगे दीदार। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न, प्रदेश के 9 परीक्षा केंद्रों पर नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए किए गए विशेष इंतजाम। और प्रदेश भर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी, मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक तापमान में वृद्धि और लू चलने की जताई संभावना। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भीषण गर्मी और बढ़ती बिजली मांग के बीच प्रदेश में सुचारू और निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जनता, किसानों, व्यापारियों और उद्योगों सहित प्रदेश के प्रत्येक उपभोक्ता को निर्बाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ में ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा और राज्य मंत्री कैलाश सिंह राजपूत की उपस्थिति में ऊर्जा विभाग, पावर कारपोरेशन एवं डिस्कॉम के अधिकारियों के साथ विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की। पेश है एक रिपोर्ट।
1: प्रदेश में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बढ़ती विद्युत मांग को देखते हुए उत्पादन इकाइयों की अधिकतम क्षमता का उपयोग किया जाए और सभी संयंत्रों में तकनीकी दक्षता तथा रखरखाव व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। मुख्यमंत्री ने ट्रांसमिशन नेटवर्क को और अधिक मजबूत, आधुनिक एवं भरोसेमंद बनाने पर जोर देने के साथ ही फीडर वाइज मॉनिटरिंग करके जवाबदेही तय करने और शिकायतों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने आंधी तूफान के बावजूद विद्युत व्यवस्था बहाल रखने के लिए त्वरित रिस्पॉन्स सिस्टम सक्रिय रखने को भी कहा। दीपाली सिंह, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। अमेरिकी विदेश मंत्री कल आगरा में ताजमहल का दीदार करेंगे। वो विशेष वायुयान से आगरा पहुंचेंगे। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिकी विदेश मंत्री का काफिला खेरिया एयरपोर्ट से शिल्पग्राम पहुंचेगा। शिल्पग्राम से बैटरी चलित गोल्फ कार्ट में बैठकर वह ताजमहल के पूर्वी गेट पहुंचेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री के आगरा भ्रमण के मद्देनजर केंद्रीय एवं प्रांतीय खुफिया एजेंसी सतर्क हैं। ताजमहल के आसपास के होटलों में कड़ी निगरानी रखी जा रही है। रूबियो भारत की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री के ताजमहल भ्रमण के दौरान आम पर्यटकों के लिए ताजमहल खुला रहेगा। सज्जन सागर, आकाशवाणी समाचार, आगरा।
0: बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने आज लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय पर सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों, कोऑर्डिनेटर और जिला अध्यक्षों के साथ 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक की। इस दौरान बसपा प्रमुख मायावती ने उन्हें जीत का मंत्र देते हुए कहा कि प्रदेश में बसपा की एक बार फिर से सरकार बनाने के लिए कार्यकर्ता अभी से जुट जाएं। उन्होंने कहा कि देश में चुनाव जिस प्रकार की नई नई चुनौतियों के बीच हो रहे हैं, उसको देखते हुए पार्टी की तैयारियों को हर स्तर पर और भी चुस्त दुरुस्त बनाने की जरूरत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक डॉक्टर मोहन राव भागवत आज से 3 दिवसीय प्रवास पर लखनऊ में हैं। सर संघचालक सरस्वती कुंज निराला नगर में चल रहे पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के कार्यकर्ता विकास वर्ग प्रथम में प्रशिक्षण लेने आए शिक्षार्थियों के मध्य बौद्धिक और संवाद के विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इस कार्यकर्ता विकास वर्ग प्रथम में नेपाल सहित अवध, कानपुर, गोरक्ष और काशी प्रांत के 289 कार्यकर्ता प्रशिक्षण ले रहे हैं। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। प्रदेश के 9 जिलों प्रयागराज, लखनऊ, आगरा, गोरखपुर, कानपुर, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और बरेली में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। एक रिपोर्ट।
3: लखनऊ में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा दो पालियों में आयोजित की गई। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक चली, वहीं दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक हुई। इस बार परीक्षा से पहले चेहरा पहचान प्रणाली लागू की गई। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले इस सिस्टम से होकर गुजरना पड़ा। इस परीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश से 37,000 से अधिक परीक्षार्थी पंजीकृत थे। परीक्षा को निष्पक्ष और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। ये सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई है। ये समस्या जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई कॉपी के लिए आवेदन के दौरान हुई थी। बोर्ड ने कहा है कि कुछ मामलों में ज्यादा भुगतान कटा है जबकि कुछ मामलों में कम राशि ली गई है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में कोडीन सिरप की अवैध तस्करी मामले की जांच कर रही स्पेशल टास्क फोर्स STF ने कल अदालत में 40,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। जांच में 900 करोड़ रुपए के घोटाले का खुलासा हुआ है। इससे पहले भी STF ने अदालत में एक चार्जशीट दाखिल की थी। STF के अधिकारियों ने बताया कि NDPS एक्ट समेत अन्य धाराओं में अदालत में बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह और अमित टाटा के खिलाफ चार्जशीट कल दाखिल की गई। प्रदेश भर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने कौशाम्बी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी और आसपास के कुछ स्थानों पर कल दिन में तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। कुछ स्थानों पर रात्रि के तापमान में वृद्धि का भी अनुमान जताया गया है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लू के ऑरेंज अलर्ट के साथ ही विभाग ने कहीं कहीं मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ तेज हवा चलने का पूर्वानुमान जताया है। लखनऊ स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि आने वाले 3 दिनों में प्रदेश में गर्मी का प्रकोप बढ़ने की संभावना है।

0: उसी क्रम में जारी रहेगा।
1: हापुड़ की तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर में कल होने वाले गंगा दशहरा पर्व को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पुलिस प्रशासन ने आज डॉग स्क्वाड और मेटल डिटेक्टर से मेला क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया। वहीं अमरोहा में भी राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज से रूट डायवर्जन लागू किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: ज्येष्ठ गंगा दशहरा पर्व पर गंगा स्नान के लिए आज से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु हापुड़ की तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर के ब्रजघाट पहुंच रहे हैं। उनकी सुविधा और सुरक्षा के लिए घाटों पर पीएससी फ्लड पीएससी फायर टेंडर्स के साथ एम्बुलेंस और डॉक्टरों की टीम तैनात की गई है। इसके साथ ही यातायात को सुचारू रखने के लिए रूट डायवर्जन लागू किया गया है। नदी में बैरिकेडिंग कराने के साथ गोताखोर और नाविक भी तैनात रहेंगे। मेला क्षेत्र की सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से निगरानी की जाएगी। 3 दिनों तक वाले गंगा दशहरा मेले में श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह ठंडे पानी की आपूर्ति के लिए वाटर कैंपर और वाटर टैंकर की व्यवस्था की गई है। रविंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, हापुड़।
1: सशस्त्र सीमा बल द्वारा आज लखनऊ में संडे ऑन साइकिल के 75वें संस्करण के अंतर्गत फिट इंडिया साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सीमांत मुख्यालय लखनऊ एवं चतुर्थ वाहिनी के अधिकारियों और बल कार्मिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ईंधन की बचत, पर्यावरण संरक्षण और लोगों को फिट एवं स्वस्थ रहने के प्रति जागरूक करना था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में सुचारू और निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के दिए निर्देश, कहा बिजली उत्पादन इकाइयों को पूरी दक्षता से किया जाए संचालित। विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर की चर्चा। मार्को रूबियो कल आगरा में ताजमहल का करेंगे दीदार। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न। प्रदेश के 9 परीक्षा केंद्रों पर नकलविहीन परीक्षा कराने के लिए किए गए विशेष इंतजाम। और प्रदेश भर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक तापमान में वृद्धि और लू चलने की जताई संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बहुत अच्छी हूँ, आप कैसी? मैं भी ठीक हूँ। यास्मीन क्या करती हैं आप?
2: मैं इस टाइम तो ब्यूटिशियन का कोर्स करती हूँ।
1: वेरी गुड, तो लोगों को खूबसूरत बनाती हैं आप?
2: जी बनाती नहीं, बस बनाना सीख रही हैं।
1: अच्छा, कोर्स कर रही हैं अभी? ओके जी, जी। तो बताएं यास्मीन, आज क्या सुनना चाहेंगे आप?
2: बागवान मूवी का सॉन्ग सुनना चाहती हूँ।
1: कौन सा?
2: पहले कभी ना मेरा हाल ऐसा हुआ।
1: और किसको सुनवाना चाहती हैं?
2: मैम सुनवाना जितने लोग सुन रहे हैं सभी को, सभी। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस टाइम में रेनबो बहुत कम सुन पाती हूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिलता है।
1: अच्छा, आप अपनी ट्रेनिंग सेंटर चली जाती होंगी?
2: जी जी जी, वहाँ मैं जाती हूँ, फिर शाम को मतलब वापस आती हूँ, तो यही कार्यक्रम मैं सुन पाती हूँ 7 से 9-10 तक।
1: ओके,
2: अगर नहीं सुन पाती हूँ।
1: देखिए, ये तो एक जुड़ाव वाली बात होती है कि जितना भी समय आपको मिलता है उस समय आप रेनबो को वक्त देती हैं। ये बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। दिन में तो चलिए आप अपने ट्रेनिंग सेंटर पर बिजी रहती हैं, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। चलिए ये गाना आप
2: मेरी एक नई फ्रेंड बनी शबनम, मैं उसको ये खासकर सॉन्ग डेडिकेट।
1: ओके ओके, तो ये ट्रैक शबनम के लिए और आपके लिए भी। थैंक यू सो मच।
2: ओके मैम, बाय
1: बाय।

0: तो फ्रेंड्स 7:36 हो चुके हैं, 17 सेकंड हो चुके हैं और कॉलर लाइन पर आ चुके हैं। हेलो।
1: हेलो मैम, गुड इवनिंग।
0: गुड इवनिंग जी, कौन बोल रहे हैं?
1: जी मैम, मैं रमा शंकर पाल बात कर रहा हूँ। मैं बाराबंकी का रहने वाला हूँ, वर्तमान समय में DA7RU लखनऊ से बात कर रहा हूँ।
0: ओके रमा जी, बहुत बहुत वेलकम है आपका प्रोग्राम में।
1: जी मैम, आज काफी दिनों बाद, शायद जहाँ तक मुझे याद है कि मैं अक्टूबर के बाद से आज मेरी जो बात हो रही है इस कार्यक्रम में, वो बहुत अच्छा लग रहा है।
0: अच्छा, काफी दिनों के बाद आपने कॉल मिलाया है, मतलब फोन किया ही नहीं इस बीच आपने।
1: मैम ऐसा है कि मैम समय मैम नहीं मिलता है और मैम पढ़ाई मैम करते रहते हैं।
0: ओके ओके
1: मैम, UPSC की तैयारी कर रहे हैं।
0: दैट्स वेरी गुड। तो और बताइए, आज क्या सुनना चाहेंगे रमा जी?
1: मैम आप मुझे फिल्म बाजीगर का गाना सुना दीजिए, क्योंकि मैम मुझे किताबों से बहुत लगाव है।
0: अच्छा,
1: तो मैम किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। 90s के गाने जो है मैम बहुत अच्छे लग रहे हैं। और मैम हमारे यहाँ मैम बहुत मैम गर्मी पड़ रही है, मैम गर्मी तो बहुत ज्यादा जो है इस समय,
0: बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा, सभी जगह गर्म बहुत ज्यादा पड़ रही है।
1: अपनी तरफ से कि जो भी हमारे बेजवान जानवर है उनके लिए पानी की जो है छोटे छोटे जो घड़े होते हैं उनके जो है ले पानी रखें, ताकि वो बेचारे जो है प्यास की वजह से उन्हें कोई भी दिक्कत ना हो। और दाने भी रखें मैम, बहुत जो है मैम उन्हें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम लोग तो पानी पी लेते हैं,
0: वो कहाँ से व्यवस्था करेंगे। बिल्कुल, उनके लिए भी तो अरेंजमेंट करना ही पड़ता है। बिल्कुल।
1: और मैम गर्मियों में पानी का इस्तेमाल जो है ज्यादा जो है ना करें, पिए जरूर ज्यादा, लेकिन
0: बर्बाद ना करें, बर्बादी ना करें। बिल्कुल
1: ये होता है।

0: जैसे कि लोग गाड़ियां जो है धोते हैं अपने बाइक और जो वाहन होते हैं तो उन्हें जो है ना धुले, उनके बल्कि किसी जो है साफ कपड़े से उन्हें पोछा
1: पोछे। बिल्कुल बहुत सही बात कही आपने। किसी को किसी
0: हमारे आने वाले भविष्य के लिए भी हमें जो भी संसाधन है उन्हें बचा करके रखना चाहिए।
1: किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं ट्रैक आप ये?
0: वैसे तो मैम सबसे पहले आपको,
1: थैंक यू,
0: लोग सुन रहे हैं सभी को मैम, क्योंकि मैम एक दो लोग हो तो नाम देने,
1: अरे बिल्कुल
0: लोग हैं तो मैम समय भी मैम
1: सभी को
0: अन्य लिसनर को मौका देना चाह रहे हैं। और इसके अलावा ये कहना चाहते हैं कि जिनका कॉल लग जाता है वो कृपया हफ्ते या 15 दिन जो है वेट करें ताकि अन्य लोगों को भी मौका मिले।
1: बिल्कुल
0: आपके कार्यक्रम,
1: थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए
0: मैम, धन्यवाद।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
3: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: सो माय डियर लिसनर्स, 7:44 हो चुके हैं और अगले कॉलर हमारे साथ लाइन पर हैं, तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए करते हैं उनसे बात। हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी वेलकम है आपका, कौन बोल रहे हैं?
1: मिंटू तिवारी, ग्राम बकरना, तहसील खादा, जिला फतेहपुर से बोल रहे हैं।
0: मिंटू जी बहुत बहुत वेलकम है आपका, काफी लंबे समय के बाद आपसे बात हो रही है।
1: बावन वाला नंबर नहीं चालू क्या?
0: दोनों ही नंबर चालू है, दोनों पर ही कॉल आ रही है और बात भी हो रही है।
1: जी
0: एक्चुअली होता यह है कि हमको ये नहीं पता कि हमें कॉल कौन कर रहा है, हमें तो नंबर ब्लिंक करता है और हम पिक करते हैं। आप ये बिल्कुल भी नाराजगी मत दिखाएं कि मतलब मिंटू जी का कॉल नहीं रिसीव किया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
1: जी
0: जैसे ही मौका लगता है हम फोन फौरन उठाते हैं, और वो किसकी कॉल है, किसका लग पहले काम कर रहा है वो तो
1: ये बात नहीं है, जब नंबर लगे तो उठा लिया।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: मेहनत लगाते हैं जब फोन नहीं उठता।
0: नहीं, बहुत मेहनत आप लोग करते हैं, लगातार आप लोग फोन मिलाते रहते हैं और मुझे लगता है काफी देर के बाद लोगों के फोन लगते हैं और बात हो पाती है। और बताइए कैसे हैं आप मिंटू जी?
1: बहुत अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसी हैं?
0: मैं भी एकदम ठीक हूँ। आज क्या फरमाइश है आपकी?
1: हाँ, हमको गाना सुनाइए आंदोलन का, बदल गई दुनिया बदल गया जमाना।
0: ओके, किसी को
1: माला चाहते परिणाम ले लें?
0: हाँ बिल्कुल लीजिए।
1: पहले तो हो गए भगवान सिंह वर्मा जी हो गए, और राम भाई शर्मा जी हो गए, इटावस राहुल भाई हो गए, मुकेश कुमार हो गए, प्रकाश पासवान जी हो गए, अरविंद तिवारी जी हो गए, मेरे बड़े भाई विनोद तिवारी, प्रमोद तिवारी, मुन्नत तिवारी, और सुन रहे हैं सभी के लिए गाना डेडिकेट रहेगा।
0: बिल्कुल, और आपके लिए भी थैंक यू सो मच। हाँ जी क्या कह रहे हैं?
1: नहीं, जितने लोग सुन रहे हैं उन सभी के लिए 100.7 FM उन सभी के लिए डेडिकेट रहेगा, खासकर गुलस्तर से क्षमा परवीन जी हो गए सीतापुर से, उनके लिए गाना, क्योंकि उनका फोन नहीं लगा बहुत दिन।
0: ओके ओके, बिल्कुल भाई, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए।

0: भाई देखिए, हम बिल्कुल भी नहीं बदले हैं। हम आपसे बार बार वही बात कह रहे हैं स्टार्टिंग से, प्रोग्राम की शुरुआत से, कि मिलाती रहिए 2238852 या 2238845 और अपनी पसंद के गानों को एंजॉय कीजिए आज अपने प्रोग्राम हेलो एफएम में। तो इस वक्त हमारे साथ है कॉलर, करते हैं उनसे बात। हेलो
1: अलका जी, नमस्ते।
0: नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं
1: जी? मैं ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ।
0: प्रेम जी, बहुत बहुत वेलकम है आपका, जय श्री महाकाल की। और कैसे हैं आप बताएं?
1: जी जय श्री महाकाल पूनम जी, सॉरी अलका जी, मैं बहुत अच्छा हूँ। और मैं बताऊँ ना, जब से आपका शो कल भी आया था और आज भी आ रहा है, तो मैंने कल भी काफी ट्राई किया कॉल लगाने का, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हो पाया। लेकिन आज तो मैंने ठान लिया था कि कैसे भी करके अलका जी से बात करनी ही करनी।
0: अच्छा जी, काफी दिनों के बाद आपसे प्रेम जी बात हो रही है। मुझे लगता है 1-1.5 महीना हो रहा होगा बात हुए।
1: हाँ जी, आपसे बात हुई काफी समय हो गया है। लेकिन मैं बताऊँ आपको, रेनबो कार्यक्रम सुनता रहता हूँ मैं, कॉल भी लगाता रहता हूँ, एक हफ्ते में 2-3 दिन में मेरा कॉल लग जाता है।
0: ओके ओके, तो बताएं आप आज क्या सुनना चाहेंगे?
1: जी, फिल्म का नाम है अंदाज और गाने के बोले आज कहना जरूरी है तुमसे प्यार हुआ।
0: बहुत खूबसूरत गाना और मेरा भी फेवरेट ट्रैक है ये तो।
1: जी बिल्कुल अलका जी, मैं बताऊं आपको, मैं मोबाइल एप से कार्यक्रम सुनता हूं ना, तो मतलब एकदम स्पष्ट प्रसारण मिलता है। और जो आकाशवाणी रेनबो, मतलब लखनऊ रेनबो सुन रहे हैं सभी श्रोता, बड़े अच्छे अच्छे मतलब बातें करते हैं और बड़े अच्छे गाने सुनते हैं सभी लोग।
0: किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं प्रेम जी?
1: जी, हमारा ये डेडिकेट करना रहेगा आपको रहेगा, इसके अलावा आकाशवाणी लखनऊ के ही दीप्ति जोशी जी, उनको रहेगा, आकाशवाणी शिलोंग के शैली जी, और इनसे हमारा एक ग्रुप बना हुआ हेलो फरमाइश रेडियो एक तक, उनके सभी श्रोताओं को डेडिकेट रहेगा ये गाना।
0: ओके, थैंक यू सो मच प्रेम जी, इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए
1: जी। ओके, बाय अलका जी।
0: बाय।

0: सो लिसनर्स, वक्त हो गया है प्रोग्राम को धीरे धीरे वाइंड अप करने का. 7:54 हो चुके हैं और अगले कॉलर को लेने का वक्त भी हो गया है, तो जल्दी से करते हैं उनसे बात और जानते हैं उनकी क्या है पसंद. हेलो.
1: हेलो, गुड इवनिंग मैम.
0: गुड इवनिंग जी, कौन बोल रही हैं?
1: जी गुलफ्ता से देखे बोला
0: था. ओके गुलफ्ता, कैसी हैं आप? बहुत बहुत वेलकम है
1: जी. अब तो बहुत अच्छे हैं आप, बताइए आप कैसे हैं?
0: मैं भी एक तो ठीक हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ. तो बताएं आज क्या सुनना चाहेंगी?
1: सिर्फ तो मूवी का.
0: कौन सा ट्रैक?
1: मुलाकात जरूरी है.
0: ओके, और किसको सुनवाना चाहती हैं?
1: सबसे पहले आपको.
0: थैंक यू.
1: समा परवीन है, साहिबा अंसारी है, साजिया अंसारी है, महक अंसारी है, निशा अंसारी, ममता गौतम और जितने लोग सुन रहे हैं सभी को.
0: सभी को
1: मोहम्मद तेज भाई है, विनीत भाई है, जितने लोग सुन रहे हैं,
0: जितने लोग सुन रहे हैं सभी को. वेरी गुड. तो बताइए कुछ और कहना चाहेंगे गुलाफ्सा?
1: जी मैम, मौसम बहुत खराब है, गर्मी बहुत हो रही है, अपना ख्याल रखें.
0: बिल्कुल, ये बात सभी से कही जा रही है कि अपना ख्याल रखें, क्योंकि मौसम जो है सभी को बहुत ज्यादा दुखी कर चुका है इस वक्त.
1: जी मैम,
0: थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए. थैंक यू. सो इस खूबसूरत गाने को एंजॉय करते जाइए और अगले कुछ घंटे आपके साथ रहेंगे जमशेद 100.7 FM रेनबो पर. मैं जा रही हूँ फिलहाल, मुलाकात होगी इसी प्लेटफॉर्म पर. सो स्टे ट्यून्ड 100.7 FM रेनबो.

रोजगार सुनिए मुख्य समाचार। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्रामीण इलाकों में जल उपलब्धता, जल स्तर में गिरावट और संभावित जल संकट की पहचान के लिए अधिकारियों को सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विकसित जलदूत ऐप के माध्यम से एकत्र आंकड़े भविष्य में जल संरक्षण संरचनाओं की योजना बनाने, वर्षा जल संचयन कार्यों की प्राथमिकता तय करने और संकट वाले क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करेंगे। उन्होंने प्रदेश के सभी जिलों में उपायुक्तों श्रम रोजगार को निर्देशित करते हुए कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत के चयनित कुओं का भूजल स्तर वैज्ञानिक एवं निर्धारित मानकों के अनुरूप मापा जाए तथा संबंधित आंकड़ों जल दूत ऐप पर अपलोड किए जाएं। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के तहत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जून तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। अमरोहा में आज भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक शामिल हुए। इस मौके पर श्री पाठक ने पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से कहा कि वह आम लोगों तक भाजपा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करें। उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अभी से सभी कार्यकर्ता कमर कस लें और तैयारियों में जुट जाएं। उन्होंने कहा कि भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव एक बार फिर अपनी जन कल्याणकारी नीतियों के बल पर जीतने का काम करेगी। इस मौके पर बड़ी तादाद में पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। अयोध्या के गुप्तार घाट पर आज सरयू नदी को स्वच्छ और निर्मल बनाए रखने के उद्देश्य से स्वच्छता अभियान चलाया गया। नमामि गंगे मिशन, ग्रीन अयोध्या, नगर निगम अयोध्या और कैंट अयोध्या की संयुक्त टीम ने सरयू तट की सफाई की। अभियान के दौरान करीब 1000 किलो प्लास्टिक कचरा, पॉलीथीन और अन्य अपशिष्ट सामग्री एकत्रित की गई, जिसे नगर निगम की मदद से निस्तारण के लिए भेज दिया गया। इस दौरान लोगों से सरयू नदी में प्लास्टिक और पूजा सामग्री न डालने तथा डस्टबिन का उपयोग कर स्वच्छ और हरित अयोध्या बनाने में सहयोग की अपील की गई। इस बुलेटिन में इतना ही। हमारा अगला समाचार बुलेटिन 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: सुबह 6 से रात 12 बजे तक।
1: नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई।
2: Stay tuned.
3: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: सुबह की खूबसूरत शुरुआत सुकून से भरा दोपहर,
5: पुरानी जींस और गिटार,
4: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद, शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर
5: जगा,
4: रात को फुर्सत के वो पल,
6: ये रातें ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा,
4: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए FM रेनबो 100.7 MHz, FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
7: Stay tuned, 100.7 FM रेनबो,
8: धड़कन लखनऊ की।
9: कभी अलसाई दोपहर की रुसवाई, तो कभी ढलती हुई शाम की अंगड़ाई,
10: शाम होने को है,
9: प्यार की बारिश, मोहब्बत की ठंडक, इश्क की आहें, तन्हाई का एहसास।

गजलें जो आंसुओं की बूंदों से दिल को सींच दे और कभी मस्ती में जिंदगी के घूंघट को खींच दे। महफिल गजल आबशार सोमवार से शनिवार रात 8 बजे 100.7 FM।

0: तो खामोशी में भी कुछ सदाएं गूंजती रहती।
1: आ जाए कोई शायद दरवाजा खुला रखता हूं, ये जो डायलॉग्स थे ना बीच में गजल में जो आ गए थे, पर मैंने सोचा आप तक पहुंचाऊं, फिर मैंने कहा नहीं, मेरे पास भी कई सारी चीजें हैं आपके लिए। 8:06 साथ में है कुछ सेकंड्स, प्रोग्राम आबशार में मैं यानी जमशेद हूं आपके साथ 100.7 FM रेनबो के साथ। और मैं तो ये कहूंगा कि मेरे दिल की धड़कन को कभी समझो या ना समझो तुम, मेरे दिल की धड़कन को कभी समझो या ना समझो तुम, मैं लिखता हूं मोहब्बत पर तो जाना इकलौती वजह हो तुम। जमशेद हूं आपके साथ आबशार में।

आ गए, आपके दिल ने हर आवाज दी, हम आ गए। रोज बहकते हैं मेरे कदम तेरे पास आने को, रोज बहकते हैं मेरे कदम तेरे पास आने को। न जाने कितने फासले अभी बाकी हैं मेरे तुमको पाने को। ये फासले अपने आप धीरे धीरे खत्म भी हो जाते हैं अगर दिल में शिद्दत हो। दिल का मकसद अगर सच्चा हो।

मैं तुमसे मिले बगैर नहीं रह सकता। तुम शायद रह लो, मैं नहीं रह सकता। फिर फासलों के लिए क्यों उकसाते हो? क्यों क्यों हर बार एक दूरी की वजह बनाते रहते हो? आखिर क्या राज है? लेकिन सच कहूं, तुम्हारे बिना जिंदगी अधूरी सी है, खाली सी है।

वना होगा तो क्या कमी होगी, कमी क्या होगी, जिंदगी जैसी खुशगवार गुजर रही है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी, कोई ना कोई खलिश जरूर होगी, इसीलिए उसका साथ बहुत ही जरूरी है। तुझे देखते ही बहक जाते हैं हम, कहना होता है कुछ और कह जाते हैं हम, बस जिंदगी में इन्हीं अल्फाजों की कमी होगी। और ये अल्फाज छोटे मोटे नहीं बल्कि एक अलग अहमियत रखते हैं। लेकिन क्या इश्क आसान अल्फाज है? और जितना अल्फाज आसान है क्या जिंदगी में वो भी इतना आसान है?

किसी के दिल में जमाने की जरूरत क्या है, तो अगर है तो जमाने की जरूरत क्या है। करते करते ही कटती हैं तुसे बिछड़ के रातें, नींद आएगी इस दिन करूंगा तुझसे ख्वाबों में बातें। 8:49 साथ में है कुछ सेकंड्स, यानी प्रोग्राम आबशार का सफर बस यहीं तक। कुछ देर के बाद आपसे होगी मुलाकात पॉप टाइम में, लेकिन थोड़ा सा वक्त आज बढ़ जाएगा, इंतजार बढ़ जाएगा, यानी वक्त होगा 9:30। तो बस कुछ देर के लिए मुझे यानी जमशेद को दीजिए इजाजत, होती है मुलाकात इसी चैनल पर यानी 100.7 FM रेनबो के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देबांशु पांडा ने 1 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल की। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को संदिग्ध अवैध प्रवासियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया। सरकार ने CBSE पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए IIT मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के थट्टे हक्कालू नदी में तेज बहाव के कारण 8 लोग डूबे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने हादसे पर गहरी संवेदना व्यक्त की। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। अगले 7 दिनों तक यह स्थिति बनी रहेगी। और वियतनाम में एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, गतिशीलता तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉ जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के सामने मुख्य चुनौती अपने राष्ट्रहित और इन देशों के साथ संबंधों का संतुलन बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है।
1: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
2: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है।

0: कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
1: बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच मुख्य रूप से रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग पर चर्चा हुई। अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। बैठक 26 मई को होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सी मोतेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को बड़े अंतर से हराया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: तृणमूल कांग्रेस के तथाकथित डायमंड हार्बर मॉडल को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने फलता विधानसभा सीट पर रिकॉर्ड जीत दर्ज की। पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 109,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। देवांशु पांडा को 149,666 वोट मिले। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान केवल 7,783 वोट के साथ चौथे स्थान पर रहे। कांग्रेस तीसरे स्थान पर है। इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है। इस जीत के साथ विधानसभा की 294 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या बढ़कर 208 हो गई है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
3: सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में अधिकारियों को भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं के निर्वासन तथा स्वदेश वापसी प्रक्रियाओं के संबंध में गृह मंत्रालय के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य पुलिस अधिकारियों को अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को अदालत में पेश करने के बजाय सीधे सीमा सुरक्षा बल को सौंपने का निर्देश दिया था। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सीमा सुरक्षा बल को 27 किलोमीटर भूमि सौंपने के बाद सिलीगुड़ी उपमंडल के फांसी देवा क्षेत्र में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाढ़ का काम भी शुरू हो गया है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों IIT के विशेषज्ञ दल प्रणाली में तकनीकी सुधार लागू करेंगे और विशेष रूप से पोर्टल की स्थिरता तथा सर्वर के सुचारू

संचालन की जांच करेंगी। इस बीच शिक्षा मंत्री ने आज वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन से मुलाकात की और सीबीएसई परिणाम और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान तकनीकी और भुगतान से संबंधित चुनौतियों के बारे में बातचीत की। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि विचार विमर्श के दौरान यह तय किया गया कि भारतीय स्टेट बैंक, बड़ौदा बैंक, कैनरा बैंक और इंडियन बैंक सीबीएसई की भुगतान प्रणाली को सुदृढ़ करने में मदद करेंगे। श्री प्रधान ने सीबीएसई को अपनी भुगतान प्रणाली में पूरी तरह बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने आज सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। यूपीएससी ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। यूपीएससी के अध्यक्ष डॉ अजय कुमार ने परीक्षा में के सफल आयोजन के लिए यूपीएससी टीम के साथ साथ राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के प्रयासों की सराहना की है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री ट्विशा शर्मा के कथित दहेज हत्या मामले में दूसरा पोस्टमार्टम किया। ये पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया। 33 वर्षीय ट्विशा की 12 मई को भोपाल में अपने ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस बीच सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में एक पीठ कल इस मामले की सुनवाई करेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने पर सहमति व्यक्त की है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए। इनमें 7 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के निकटतम परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। अगले 7 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी भीषण लू का प्रकोप जारी है। वहीं मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई इलाके इस समय भीषण लू की चपेट में हैं।
2: प्रदेश के ज्यादातर शहरों में पारा 43 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। मौसम विभाग ने आज टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में तेज लू का रेड अलर्ट जारी किया था। विभाग ने दतिया, निवाड़ी, सागर समेत 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत 22 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया। प्रदेश के कुल 37 जिले हीट वेव की जद में रहे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 दिनों तक गर्मी और लू से कोई राहत नहीं मिलेगी। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इन एपिसोड में हम प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कार्यक्रम के लिए कल सवेरे 9 बजकर

0: कर 10 मिनट से आकाशवाणी के एफएम गोल्ड से जुड़े रहें। वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। पुरुषों के ग्रीको रोमन वर्ग में सुमित दलाल ने 63 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में उजुदबेक खालिम्बेक को हराया और 55 किलोग्राम में नीरज पटेल ने, वहीं रोहित बोरा ने 87 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। मुंबई में आज हुए मुकाबले में राजस्थान ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। इस बीच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अंतिम लीग मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 150 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देबांशु पांडा ने 1 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल की। सरकार ने सीबीएसई पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए आईआईटी मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। देश के मध्य और उत्तर पश्चिमी भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. India and US outline trade agreement, energy security and mobility as key areas of cooperation in high-level talks in New Delhi. BJP candidate Debangshu Panda sweeps West Bengal's Falta Assembly repoll by over 1 lakh votes. TMC candidate forfeits deposit. West Bengal government directs all district magistrates to set up holding centers for suspected illegal foreigners. Government ropes in IIT Madras and Kanpur to experts to fix CBSE re-evaluation portal glitches. In Karnataka, 8 people swept away by strong currents in Tatte Hakalu River in Uttara Kannada district. President, Vice President and Prime Minister expressed grief over the loss of lives. Normal life affected due to severe heat wave in central and northwest India. Conditions to continue for next 7 days. And at the Asian Under 23 Wrestling Championships, Indian grapplers clinched 3 gold, 2 silver and 3 bronze medals in Vietnam. And now the news in detail. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and US Secretary of State Marco Rubio held wide-ranging discussions in New Delhi today. Both leaders reaffirmed the strength of the India-US strategic partnership and outlined key areas of cooperation including trade, energy, mobility and regional security. Addressing a press conference following delegation-level talks, Dr. Jaishankar highlighted the need to conclude a trade agreement at the earliest, welcomed the expansion in energy, trade and stressed that diversified energy supplies are vital for India's energy security.
2: Our government's fundamental responsibility is to address the needs of 1.4 billion people. Obviously, ensuring the accessibility and affordability of energy for them is our prime objective. Secretary and I therefore welcome the expansion in our energy trade in recent months. Diversified supplies are at the heart of energy security for India.
1: On the Iran conflict, Mr. Jaishankar said both India and the United States have a strong interest in ensuring that global energy prices remain low and that there is unimpeded commerce. India's position in favor of dialogue and diplomacy as well as safe and unimpeded maritime commerce was also reiterated. He also pointed out that India is one of the very few countries in the world which has strong relations with the US, Israel, Iran, as well as other Gulf nations. Dr. Jaishankar also highlighted the importance of people-to-people ties and said legal mobility should not be adversely affected.
2: People-to-people ties are at the heart of our relationship. I apprised Secretary Rubio of challenges that legitimate travelers face in respect of visa issuance. While we cooperate to deal with illegal and irregular mobility, our expectation is that legal mobility would not be adversely impacted as a consequence.
1: U.S. Secretary of State Marco Rubio strongly underscored the strategic dimensions of the partnership, describing India as one of the United States' most important partners in the world.

0: high-level talks in New Delhi. BJP candidate Debangshu Panda sweeps West Bengal's Falta Assembly repoll by over 1 lakh votes. TMC candidate forfeits deposit. West Bengal government directs all district magistrates to set up holding centres for suspected illegal foreigners. Government ropes in IIT Madras and Kanpur experts to fix CBSE re-evaluation portal glitches. In Karnataka, 8 people swept away by strong currents in Tate Hakalu River in Uttar Kannada district. President, Vice President and Prime Minister express grief over the loss of lives. Normal life affected due to severe heat wave in central and northwest India. Conditions to continue for next 7 days. And in Asian Under 23 Wrestling Championships, Indian grapplers clinched 3 gold, 2 silver and 3 bronze medals in Vietnam. And that's all in the news at 9. Good night.
1: You are just got entry to the service. आपको कमरे में बैठने के लिए नहीं बोला है. Go to the fields.
2: Oh my God.
1: So हम लोग जाते थे और fields में उस समय जैसे antenna tuning unit वगैरह ये सारे बहुत खेत टाइप की जगह में हुआ करते थे. बहुत बड़े बड़े घास हुआ करते थे. कई बार सांप वगैरह भी निकलते थे. तो यू वर सपोज टू गो देयर एंड लेकिन अच्छा लगता था. मैंने हमने एंजॉय किया है धूप में, कड़ी धूप में. और वो एक सेटिस्फेक्शन होता था कि आप कुछ कर रहे हैं वर्थ वाइल. तो आई एम इंडेटेड टू दोज पीपल हु हैव टॉट मी. मे बी इट वॉज अ डिफिकल्ट वे इनिशियली, लेकिन उन्हीं की वजह से शायद.
2: जी, आपने भी बीच में बात करी थी रिस्पेक्ट की. तो मैं इस बात पे आना चाहूंगी कि पहले जनरली लोग जब कोई प्रोफेशन की बात आती थी या करियर की बात आती थी तो डॉक्टर, इंजीनियर, इसी तरह से हम प्रोफेशन को लेते थे. तो उस समय आपके लिए कितनी मुश्किल हुई थी ये बताने के लिए घर में कि मुझे रेडियो ज्वाइन करना है? क्या उतना ही रिस्पेक्टफुल करियर ऑप्शन था या आसान था या मुश्किल था?
1: देखिए, उस समय की तो बात ही अलग थी. मे बी इट वॉज वेरी लॉन्ग लॉन्ग बैक. उस समय इंजीनियरिंग में भी लोग बहुत ज्यादा नहीं आते थे. हमारे क्लास में ओनली 4 गर्ल्स वेयर थे एंड रेस्ट ऑफ द पीपल वेयर बॉयज. एंड घर से भी थोड़ा सा वो रहता था कि अच्छा, इतने साल 4 साल का इंजीनियरिंग करेगी, फिर ये है. उस समय मतलब लोगों को बस ये रहता था कि लड़की बड़ी हो गई तो शादी कर दो. तो आई एम वेरी थैंकफुल टू माई फादर हु स्टूड बाई मी एंड आई एम द ओनली चाइल्ड. तो उन्होंने मेरे को पूरे समय सपोर्ट किया पढ़ाई में और मेरे को इंजीनियरिंग करने को दिया. लेकिन दादी ने फिर उन्होंने बोला कि नहीं, बस हो चुका पढ़ाई वढ़ाई. तो एग्जाम तो दे दिया था मैंने इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का, रिजल्ट नहीं निकले थे मेरे. तो मुझे उन्होंने शादी हो गई मेरी. शादी के बाद फिर रिजल्ट्स आए और मुझे आई एम वेरी थैंकफुल दैट आई गॉट द AIR इलाहाबाद. नहीं तो शायद नौकरी भी नहीं होती. एंड इसमें लेकिन सबसे बड़ी बात, मैं आई विल उस समय की मैं बोलती हूँ कि जॉइंट फैमिलीज होती थी. माय फादर इन लॉ जस्ट सेड वन वर्ड, वन सेंटेंस. ही केम टू ड्रॉप मी ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माय जॉइनिंग टू AIR इलाहाबाद एंड ही टोल्ड मी, यू वर्क सिंसियरली एंड डेडिकेटेड वे सो दैट यू बिकम indispensable for people. और वो बात तो मैंने गांठ बांध ली.
2: That was quite a support.
1: बिल्कुल. और इसमें आई थिंक फैमिली सपोर्ट, मेरे पेरेंट्स का, मेरे इन-लॉज का अगर नहीं होता तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुंच पाती.
2: आपकी लर्निंग्स की बात कर ली हमने, अब हम बात करते हैं क्या कोई ऐसा फनी मोमेंट है जो आपको अभी तक याद हो, जो आप भूले ही ना हो अपनी ज्वाइनिंग के बाद? कोई ऐसा दिन रहा हो? मुझे लगता है शायद ज्यादा ही रहे होंगे, बट कोई एक ऐसा बताइए हमें इंसिडेंट.
1: देखिए, बहुत सारे इंसिडेंट आज के जमाने में फनी लगती है लेकिन उस समय तो जान पे आई रहती है. एंड आई स्पेशली रिमेम्बर वन इंसिडेंट. हमारे उस समय आकाशवाणी के प्रोग्राम का लोग काफी आया करते थे, दर्शक भी बहुत होते थे. एंड हम लोग को समझिए, आज के जमाने में शायद आप लोग इसको सोच भी नहीं पाएंगे, 2 मिनट का भी ब्रेकडाउन होता था. दैट वॉज टेकन एज अ मेजर ब्रेकडाउन एंड द पर्सन जिसके अंतर्गत हुआ है उसको वो करना पड़ता था कि एक्सप्लेन करना पड़ता था कि क्यों मेजर ब्रेकडाउन. बेबी इट विल गो टू योर CR ऑल्सो.
2: बहुत स्ट्रिक्ट
1: हुआ करते थे. तो एक बार हमारे, और आकाशवाणी फेमस है अपने बिल्कुल टाइम से प्रोग्राम स्टार्ट करने पर, एक बार हमारे यहाँ पे इलाहाबाद में आए थे, एक गायक आए थे. रात के टाइम में करीब 8 बजे हम लोग की प्रोग्राम शुरू होने वाला था संगीत का, बाहर एक ऑडिटोरियम में सारे लोग बैठे हुए थे. अचानक उन्होंने रात 8 बजे डिमांड कर दी, मुझे गर्म दूध चाहिए और पान चाहिए, उसके बगैर मैं जाऊंगा नहीं स्टेज पे. हम लोग उस समय मतलब दौड़ रहे हैं कि कहाँ से गर्म दूध मिलेगा, बिल्कुल, बिकॉज ऑडियंस वाज देयर एंड वी हैड टू स्टार्ट द प्रोग्राम. सो उस समय जान सांसठ में आई होती है.
2: ड्यूरिंग द प्रोग्राम?
1: यस, इट वाज ड्यूरिंग, यस.
2: 90 years हमारे

0: आकाशवाणी के कंप्लीट हो रहे हैं जी, होने वाले हैं जल्दी ही, तो इन 90 इयर्स का जो पूरा टोटल मैसेज है वो आप क्या देना चाहेंगे जो हमारे न्यू कमर्स हैं उनके लिए, जो आरजेइंग के फील्ड में आना चाहते हैं या टेक्निकल फील्ड में आना चाहते हैं या आकाशवाणी से किसी भी तरह से जुड़ना चाहते हैं ब्रॉडकास्टिंग में, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप?
1: देखिए, मैं तो यही बोलूंगी कि यू कैन कम एंड लिव योर ड्रीम्स, क्योंकि तकनीक एक ऐसी जगह है जहां से आपको अपने भीतर की जो प्रतिभा है या जो भी आप करना चाहते हैं आप उसको बिल्कुल दिखा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ब्रॉडकास्टिंग का एक स्कोप है कि इतने सारे लोगों को इफेक्ट करने की क्षमता रखता है
0: जी,
1: तो मास कम्युनिकेशन इसीलिए कहा जाता है। और आज की डेट में जहां पे कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता जा रहा है और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आप तो जानते हैं, तो उसमें मुझे लगता है कि अगर किसी में वो पैशन है और कुछ करना चाहता है, अपने आइडियाज को प्रोपोगेट करना चाहता है या कुछ उस तरह की प्रतिभा है, तो बिल्कुल आना चाहिए इसमें।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8 करोड़ 85 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: एक सवाल मेरा और है आपसे, आप जब आपने ज्वाइन किया या आपके टाइम पर मास्कॉम इतना पॉपुलर नहीं था एज अ सब्जेक्ट, एज अ करियर?
1: अगर सच बताऊं, वास्तव में आप ठीक कह रहे हो सर, मास कम्युनिकेशन वाज नॉट अ वेरी पॉपुलर सब्जेक्ट, लेकिन वो कहते हैं ना कि जिंदगी आपको बहुत कुछ सिखा देती है।
0: बिल्कुल,
1: एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट इन दैट वे बिकॉज आई कम फ्रॉम प्रयागराज इलाहाबाद एंड इट वॉज अ वेरी वेरी वाइब्रेंट आर्टिस्टिक सीन देयर।
0: ट्रू,
1: क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे और
0: नेचर से जुड़े हुए हैं।
1: हाँ, नेचर से भी, और बहुत सारे फंक्शन हुआ करते थे आपके, ड्रामा कंपटीशन से लेके म्यूजिकल फेस्टिवल। तो और मेरी फैमिली में मेरे पेरेंट्स एज वेल एज मेरे माय इन लॉज दे वर इनटू दैट फील्ड, तो मुझे बहुत कुछ एक्सपोजर मिला उनकी वजह से, ये सब देखने का और सुनने का और जानने का। तो एक वो आप कह सकते हैं नेचुरल प्रोसेस में वो धीरे धीरे धीरे धीरे
0: रमता गया
1: आप जानते गए, प्लस हमारी नौकरी तो है ही, तो प्रोफेशन में भी जब लोग फील्ड स्टेशन में रहते हैं तो यू आर सपोज टू डू, क्योंकि यहाँ पे तो देखिए डायरेक्टरेट या बड़ी जगह में आपको स्पेसिफिक काम होते हैं, लेकिन जब आप स्टेशन पे जाते हैं आपको मतलब कहते हैं ना कि ईंट से लेके और पूरा स्टूडियो तक सब देखना पड़ता है, मल्टीटास्क।
0: मैं वही आपसे अब क्वेश्चन पूछना चाह रही थी कि पहले क्या, अब तो स्पेसिफिकली हमको एक टास्क असाइन कर दिया जाता है ना कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन वाली बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन उस समय तो यही चलता था और मुझे लगता है सब कुछ आना बहुत अच्छा होता था कई बार। तो वो सारी चीजें मल्टीटास्किंग आपको यहाँ आकर सीखने को मिली या आप में पहले से ही इतनी काबिलियत थी कि आप मल्टीटास्किंग करने के लिए तैयार थी?
1: नहीं नहीं, पहले से तो नहीं पता होता है किसी को भी, फ्रॉम जस्ट रॉ फ्रॉम स्कूल एंड कॉलेज। तो आई एम वेरी थैंकफुल दैट प्रोफेशन ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, मतलब क्योंकि मुझे आते ही इंस्टॉलेशन ऑफिसर बना दिया। हमारे झूंसी में एक हाई पावर ट्रांसमीटर इंस्टॉल हो रहा था और मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि किस तरह से चीजें होती हैं या किस तरह से कंस्ट्रक्शन होता है, तो माई बॉस टॉट मी, और बहुत डांट के सिखाते थे कि ईंटों को समझना सीखो, ये ऑरेंज वाली ईंटें होती है और कच्ची ईंटें होती है, वो नहीं लगनी चाहिए।
0: आजकल स्कूल्स में भी डांट बंद हो गई है, ऑल्दो डांटना वेरी गुड, थोड़ा हम
1: बहुत
0: जरूरी है। बिल्कुल, अब हम आते हैं, हमने इतनी सारी बातें कर ली है, मैं एक चीज और पूछ लू फिर हम आखिरी आपसे बात करते हैं कि इन सारे प्रोसीजर के दौरान क्या कभी आपको ऑन एयर जाने का भी मौका मिला, कभी ऐसा हुआ? क्योंकि मुझे लगता है मल्टीटास्किंग में वो भी शामिल है।
1: जी हाँ, मुझे कई बार मिला है बिकॉज आई वॉज अ स्टेशन इंजीनियर इन दूरदर्शन शिमला, तो वहाँ पे जैसे बड़े शहरों से थोड़ा डिफरेंट होता है क्योंकि गुवाहाटी या इवन शिमला में भी दूरदर्शन का, आकाशवाणी का तो बहुत लोग सुनते थे और बहुत उसमें चार्म था लोगों का, तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आते थे कि कहाँ पे क्या नहीं आ रहा है, कहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, तो टेक्निकल एंड प्रोग्राम रिलेटेड चीज़ों में हमारे स्टेशन डायरेक्टर और मुझे कई बार वो व्यूअर्स के क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए हम लोग को बैठना
0: पड़ता था। मुझे थोड़ा सा एक एग्जांपल देके यहाँ पर बताइए प्लीज।
1: ऐसे तो रैंडम कुछ याद नहीं, लेकिन हाँ उस समय थोड़ा सा क्योंकि आप बैठे हैं जनता के सामने और जनता पूछ रही है, तो यू हैव टू बी वेरी

0: हम्बल
1: और
0: अलर्ट ऑल्सो. जैसे हमारे यहाँ पे वो जनरेटर चलता था एंड यू नो जनरेटर टू ट्रांसमीटर तक ऑन करने में थोड़ा सा गैप चला जाता है, टेक्स टाइम बिकॉज एक के बाद एक चीजें ऑन होती हैं और उसी तरह से. तो आम लोगों को नेचुरली ये समझ में नहीं आता है, तो उनको गुस्सा आता था कि हम ये प्रोग्राम देख रहे थे और बीच में से ये कट गया और इतना सारा मेरा मिस हो गया और ये हो गया वो हो गया. तो उनका गुस्सा भी वाजिब है, हम कुछ नहीं कर सकते. लेकिन वहां पे ये भी फैक्ट है कि टेक्निकली अगर मान लीजिए लाइट गई है, जनरेटर आपका तुरंत ही ऑन हुआ है, लेकिन सारे सिस्टम को ऑन होने में देयर वुड बी अ डिले, तो उसको आपको थोड़ा सा समझाना पड़ता था, बोलना पड़ता था अच्छे से कि हम लोगों ने अपनी तरह से कोशिश की, ये इनेविटेबल है.
1: हमारे पास अभी समय की कमी है तो हमको अब जल्दी से इसको रैप अप करना पड़ेगा. लेकिन मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगी, क्योंकि हमने सिक्के के एक पहलू की बात करी है, हमने आपकी ड्यूटीज की बात कर ली है, अब दूसरा पहलू आता है. हमने सुना है आप बहुत मधुर आवाज की मलिका है और क्लासिकल सिंगिंग में ट्रेंड है, तो दो लाइन जो भी आपको पसंद हो जाए.
0: मुझे ऐसे ही रैंडमली कुछ याद आ रहा है, एक बहुत पहले मैंने आई थिंक व्हेन आई वाज इन स्कूल मैंने ये सीखा था, एक भजन है

0: क्या बात है आपकी इस गायकी ने आज के हमारे पॉडकास्ट में ना दिन में ही चार चांद लगा दिया. ऑल्दो हमारी लाइट्स काम कर रही हैं, लेकिन इसने जो रोशनी बिखेरी है उसके क्या ही कहने
1: हैं. ये कुछ ज्यादा
0: नहीं हो गया. थैंक यू सो मच.
1: चलिए थैंक यू सो मच.
0: थैंक यू सो मच टू यू टू बिकॉज आपने हमें ज्वाइन किया और इतनी सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमारे लिसनर्स तक, हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाई है, उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका.
1: और आकाशवाणी अपने 90 साल संपूर्ण करने जा रहा है, उस बारे में आकाशवाणी को बहुत बहुत शुभकामनाएं. और मेरे लिए तो आकाशवाणी हमेशा से ही दिल के करीब रहा है और आशा करती हूँ कि ये उत्तरोत्तर और प्रगति करता रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा. बहुत धन्यवाद.
0: आज के लिए हम इजाजत देते हैं आपसे. बहुत बहुत शुक्रिया आपका.
1: थैंक यू सो मच.
0: और साथ के साथ हमारी पूरी टीम जो यहाँ पर काम करती है उसको भी शुक्रिया कहना चाहते हैं हम, क्योंकि उनके बिना ये पॉडकास्ट अधूरा है. शालिनी चाहती है आपसे इजाजत. नमस्कार.
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प.
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको.
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं. अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें.

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में

0: 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
4: अभी आप सुन रहे थे द आकाशवाणी पॉडकास्ट। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में रिकॉर्ड किया गया और दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: दिल दस्तरखान बिछाया, दावत इश्क है।
3: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन।
4: हैंगओवर तेरी यादों का, हैंगओवर तेरी बातों का।
3: ओनली 100.7 FM रेनबो।
2: कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे।
5: इंटरटेनमेंट और इंफॉर्मेशन रहेगा संग संग।
6: जब छाएगा 100.7 FM रेनबो का सतरंगी रंग।

0: सुबह 6 से रात 12 बजे तक।
1: नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई।
2: Stay tuned. 100.7.
3: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: सुबह की खूबसूरत शुरुआत से भरा दोपहर,
5: पुरानी जींस और गिटार,
4: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद, शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर
6: है, के जगा।
4: फिर रात को फुर्सत के वो पल,
7: ये रातें ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा,
4: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए FM रेनबो 100.7 MHz FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: प्यार, इश्क, मोहब्बत और जिंदगी के फलसफों की सौगात होगी हर रोज आपके साथ।
1: तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है।
2: रात 10 बजे रजनीगंधा में सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।

0: स्टे ट्यून्ड 100.7 एफएम रेनबो,
1: धड़कन लखनऊ की।
2: और जो थाप है ये आपको इशारा कर रही है कि प्रोग्राम शुरू हो चुका है पॉप टाइम। हालांकि हमने कहा था कि थोड़ा सा वक्त लगेगा और मैं उस वादे को पूरी तरह से निभाते हुए एक बार फिर आपके साथ जुड़ा हूं, जमशेद हूं आपके साथ। और प्रोग्राम की शुरुआत कुछ इस गाने के साथ, कुछ इस तरह से।

अजी जो मजबूरियां हैं उनको करिए दरकिनार, और जो दिल पर छुरियां चलाने वाली बात है उसको पूरी तरह से रखिएगा बरकरार, क्योंकि अगले गीत में भी कहीं ना कहीं दिल पर छुरियां जरूर चलने वाली हैं।

और जब नैना लड़ते हैं, जब दो दिल मिलते हैं, आंखें चार होती हैं, तो दिल कहता है डिंग डोंग डिंग डोंग, जैसा कि है इस गीत में।

और वादे के मुताबिक मैंने कहा ना दिल डिंग डोंग डिंग डोले, और पॉप टाइम में अगर दिल डिंग डोंग डिंग नहीं डोलेगा तो फिर मैं क्या बोलेगा। मैं तो ये बोलूंगा कि 9:47 साथ में कुछ सेकंड्स में हूं जमशेद आपके साथ, और अगला प्रोग्राम जो है वो किसी खास पर होगा आधारित, यानी रजनीगंधा। और कौन होगा खास? खूबसूरत से गीत होंगे, उसकी कुछ बातें होंगी, उसकी जिंदगी के में हम झांकने की कोशिश करेंगे। फिलहाल पायल गाना लेकर आ रहे हैं कौन, यो यो हनी सिंह, और ये गाना भी काफी मकबूल है। तो भाई जो रिदम है उसको बिल्कुल टूटने नहीं देना है, और इस रिदम में कुछ ये है पायल गाना।

और कुछ मेल आपके हैं अब तक पहुंचा दूं? उन मेल को अगर नहीं पहुंचाऊंगा तो आपको कहीं ना कहीं बुरा लगेगा, लगता है ना। चलिए, अमृत साहब ने आपने मेल हमें कहाँ से किया है? अमृत साहब ने मेल किया है हमें अच्छा भट्टा।

बाबा से, क्या बात है, मुझे देखिए ढूंढना पड़ गया। और कई सारे नाम लिखे हैं, अमृतपाल और परमिंदर, सचनूर और मरिंदर, ये आपके कई नाम हैं और प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं। अमन नवाब का भी मेल आ चुका है संडीला से, और कह रहे हैं गाने बहुत अच्छे लगे, मज़ा आ गया, एक गाना इनको बहुत अच्छा लगा, बहुत दिन के बाद सुना। गुड इवनिंग रेनबो पॉप टाइम, ये हैं भानपुर हरौआ जिला लखीमपुर खीरी से मुनेश कुमार राज, और प्रोग्राम को पूरी तरह से कर रहे हैं एंजॉय। साथ साथ रणधीर गुप्ता जी का मेल आ चुका है, सप्रेम नमस्कार, कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, गाने पसंद आ रहे हैं। रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता, सत्यम गुप्ता और सुंदरम गुप्ता, आपने संगम विहार दिल्ली से हमें किया है मेल, लगातार हमारे साथ जुड़े रहते हैं। और विनीत कुमार ग्राम अर्थापुर पोस्ट रामगढ़ चीनी मिल जिला सीतापुर से, गुड इवनिंग, पॉप टाइम आपको अच्छा लग रहा है, गाने आपको पसंद आ रहे हैं। और कुछ आपने और भी लिख दिया है कि सुरभि सीतापुर, ओमकार सीतापुर, क्षमा परवीन अंसारी, कई सारे नाम इन्होंने लिख दिए हैं, सभी को इन्होंने बधाइयाँ दे दी इधर से कि प्रोग्राम को एंजॉय कीजिए। सावित्री देवी जी का भी मेल आ चुका है बरगदी अर्जुनपुर से, और प्रोग्राम को एंजॉय कर रही हैं पूरी तरह से। सासा जावेद अख्तर का भी मेल आ चुका है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और चंदीराम सिंह का भी मेल आ चुका है, आपने कहाँ से हमें मेल किया है, ओहो आपने हमें फरुखाबाद से मेल कर दिया है, और प्रोग्राम को पूरी तरह से कर रहे हैं एंजॉय। वकील अहमद का भी मेल आ चुका है, और वक्त तेजी से आगे बढ़ता हुआ 9:55 यानी अब से कुछ देर के बाद एक छोटा सा न्यूज ब्रेक होगा, और उसके बाद होगी फिर मेरी आपसे मुलाकात। लेकिन हाँ, मैंने कहा ना कि आज का रजनीगंधा होगा कुछ खास, किसी खास की बात करूंगा, उसकी ज़िंदगी में झांकने की कोशिश करेंगे, उसके लिखे हुए गीतों की बात होंगी, क्या क्या उतार चढ़ाव रहे ज़िंदगी में, सारी बातें होंगी, नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा। फिलहाल आपसे ही कहूंगा कि आप बने रहिए 100.7 FM रेनबो के साथ, अपने दोस्त जमशेद के साथ।

0: डियर रेनबो लिसनर्स, आपका और हमारा रिश्ता है बड़ा पुराना, पर इसे और भी गहरा बनाने आ रहा है एक खास बहाना।
1: जी हाँ, FM रेनबो कानपुर के कार्यक्रमों पर अब आपकी राय, आपकी पसंद और आपके सुझावों का रहेगा हमें इंतजार। लेकर आ रहे हैं हम अपना फीडबैक शो मेल मिलाप।
0: हमें बताइए आपको हमारे प्रोग्राम्स कैसे लगते हैं, क्या और सुनना चाहते हैं आप। तो नोट कीजिए, हर महीने के चौथे बुधवार दोपहर 3:45 पर होगा हमारा आपका मेल मिलाप।
1: अपनी प्रतिक्रियाएं हमें लिखकर भेजें इस पते पर, कार्यक्रम मेल मिलाप, विज्ञापन प्रसारण सेवा, आकाशवाणी कानपुर, बेना झाबर रोड, कानपुर, पिन कोड है 208002।
0: और अगर पसंद है आपको डिजिटल जमाना तो हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस है fmmelmilaap@gmail.com पर, यानी कि fmmelmilaap@gmail.com। भूलिएगा मत, हर महीने का चौथा बुधवार दोपहर 4:45 सिर्फ FM रेनबो कानपुर पर।
2: अनु गुप्ता, प्रदेश उपाध्यक्ष कमलावती सिंह, विधायक सरिता भदौरिया समेत कार्यकर्ताओं ने योग किया। पूर्व सांसद डॉ. रामशंकर कठेरिया ने कहा कि भाजपा का आधार एकात्म मानववाद और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। रायबरेली के जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में जनपद में अवैध खनन एवं अवैध परिवहन के विरुद्ध गठित टास्क फोर्स द्वारा विशेष सघन अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान जनपद के बछरावा, लालगंज व डलमौक क्षेत्र में व्यापक स्तर पर जांच एवं चेकिंग की गई। कार्रवाई के दौरान अवैध खनन सामग्री के परिवहन में संलिप्त पाए गए कुल 28 वाहनों को सीज किया गया। हमारा अगला समाचार बुलेटिन रात्रि 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन।
1: हैंगओवर
0: Only 100.7 FM Rainbow.
2: कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे।
3: Entertainment और information रहेगा संग संग।
4: मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ाए।
0: जब छाएगा 100.7 FM Rainbow का सतरंगी रंग।

0: Stay tuned.
1: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: सुबह की खूबसूरत शुरुआत से भरा दोपहर,
3: पुरानी जींस और गिटार,
2: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद, शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर
4: है, जगा।
2: फिर रात को फुर्सत के वो पल,
5: ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा,
2: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए FM रेनबो 100.7 MHz, FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
6: दिल चाहता है कि तुमसे एक मुलाकात हो, खामोश तरारे हो और प्यारी सी बात हो, और फिर उस मत भरी रात में तुम्हारी मेरी बात हो, और तुम बस मुझसे यही कहो कि तुम ही मेरी जिंदगी और तुम ही मेरी कायनात हो।

0: प्यार, इश्क, मोहब्बत और जिंदगी के फलसफों की सौगात होगी हर रोज आपके साथ।
1: तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है।
2: रात 10 बजे रजनीगंधा में सिर्फ और सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।

0: स्टे ट्यून्ड 100.7 एफएम रेनबो,
1: धड़कन लखनऊ की।
2: और वादे के मुताबिक मैं यानी जमशेद एक बार फिर जुड़ चुका हूँ रजनीगंधा में। ये गीत पहचानिए, आज मैं किसकी बात करने वाला हूँ, सुनिए और इस गीत के बाद बात की बात।

दीवाना लेकर आया है दिल का तराना, फिल्म मेरे जीवन साथी का ये गीत। किशोर साहब की खूबसूरत सी आवाज और राजेश खन्ना साहब पर फिल्माया गया गीत। मैं बात आज किस पर करने वाला हूं, गेस किया आपने? चलिए डिस्क्लोज करता हूं और मैं बताता हूं कि आज किसकी बात करने वाला हूं मैं। रजनीगंधा में आज मैं बात करूंगा असरारुल हसन खान यानी मजरूह सुल्तानपुरी की। अल्फाज सुन लिए आपने, कैसी है लेखनी, एक एक अल्फाज बड़ी खूबसूरती से गीतों में, अपने शेरों में, अपनी गजलों में पिरोया करते थे मजरूह सुल्तानपुरी। और आज उनकी बात क्यों, ये भी सोचिए आप। 1 अक्टूबर साल 1919 को हमारे साथ जुड़े थे, जगह थी उत्तर प्रदेश का सुल्तानपुर जिला। लेकिन आज ही के दिन यानी 24 मई साल 2000 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा था। एक श्रद्धांजलि, उनकी बातें आज के दिन रजनीगंधा में। मजरूह सुल्तानपुरी यानी भारतीय हिंदी सिनेमा के मशहूर शायर और गीतकार, इनके लिखे कलाम जो है जिंदगी के अनछुए पहलुओं को रूबरू कराने की एक जबरदस्त क्षमता थी इनके अल्फाजों में। यानी यूं कहेंगे कि मजरूह की कलम की स्याही नज्मों के रूप में एक ऐसी गाथा के रूप में चारों तरफ फैली जिसने उर्दू शायरी को महज मोहब्बत के सब्ज बागों से निकालकर दुनिया के दीगर स्याह सफेद पहलुओं से भी जोड़ा। और उसकी बानगी ये गीत है। अब जितने भी गीत होंगे इन्हीं की लेखनी से निकले हुए, और ये जो अगला गीत है इसमें भी अल्फाजों की खूबसूरती

पुकारता चला हूं मैं गली गली बाहर की। बुजरू साहब जो रुमानियत की एक जो रंग था उसका नया रंग था उसको ताजगी देने की भरपूर कोशिश की और जिसमें वो काफी हद तक कामयाब भी हुए। मजनू सुल्तानपुरी ने 4 दशक से भी ज्यादा अपने सिने करियर में करीब 300 फिल्मों के लिए लगभग 4000 से भी ज्यादा गीतों की रचना की। इस गीत के बाद हम उनकी निजी जिंदगी पर नजर डालने की कोशिश करेंगे कि कैसे शायरी की दुनिया में आए, क्या उनके ख्वाब थे, क्या उन ख्वाबों को पूरा कर पाए। कई सारी चीजें आई जिंदगी में, वो सारी बातें ये गीत उन्हीं की लेखनी से निकला हुआ।

तुझे संग लेके नए नए रंग लेकर। तो चलिए, गीत से पहले मैंने कहा था कि नजर डालेंगे इनकी जिंदगी पर। मजरू सुल्तानपुरी, वालिद साहब एक पुलिस मैन यानी पुलिस उपनिरीक्षक, और पिता मजरू सुल्तानपुरी को ऊंची से ऊंची तालीम देना चाहते थे। मजरू ने लखनऊ से यूनानी पद्धति से मेडिकल में एग्जाम पास किया और उसके बाद एक हकीम के रूप में वो काम करने लगे। दवाइयों की दुकान चलाने के साथ साथ मजरू को शायरी का भी जबरदस्त शौक था। एक मुशायरे में एक तरफा कुछ ऐसा हुआ। क्या हुआ, चलिए वो बातें करेंगे, फिलहाल ये गीत आप तक पहुंचाएं। क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे धीरे धीरे वो शायरी की तरफ रुजू हुए और आगे बढ़ते चले गए।

इस वक्त 28 मिनट साथ में कुछ सेकंड्स मैं जमशेद आपके साथ प्रोग्राम रजनीगंधा में, और आज मैं बात कर रहा हूं बेहतरीन गीतकार मजरू सुल्तानपुरी की। और मैंने कहा ना कि उन्होंने हकीम के रूप में काम करने की ठानी, हकीम के रूप में काम करने लगे क्योंकि उन्होंने यूनानी मेडिकल कॉलेज से परीक्षा उत्तीर्ण की थी। दवाओं की दुकान चलाने के साथ साथ मजरू को शायरी का जबरदस्त शौक था, यह भी मैंने बात की। तो आगे की बात यह है कि एक मुशायरे में एक तरफा मोहब्बत की वजह से उनका दिल टूट गया, जिसके बाद उन्होंने अपना तखल्लुस यानी उपनाम मजरू रखा। मजरू का मतलब जानते हैं ना? बिल्कुल जानते हैं आप। मजरू का मतलब होता है घायल। तखल्लुस हो गया, और क्योंकि वो सुल्तानपुर जिले से जुड़े हुए थे इसलिए उन्होंने तखल्लुस के आगे सुल्तानपुरी लगा लिया और बन गए मजरू सुल्तानपुरी। धीरे धीरे उनकी शायरी इतनी कामयाब हुई, इतनी मशहूर हुई कि उन्होंने हकीमी को छोड़ दिया और अपना पूरा ध्यान मेहनत और लगन के साथ मुशायरों की तरफ कर दिया। वो अक्सर सुल्तानपुर में हो रहे मुशायरों में हिस्सा लिया करते थे और इस दौरान उन्होंने काफी नाम और शोहरत कमाई। जब उन्होंने अपनी मेडिकल की प्रैक्टिस बीच में छोड़ दी और अपना पूरा ध्यान शेर व शायरी की तरफ लगाने लगे,

0: तुम्हारा नहीं है वल्ला
1: जवाब। ओ दिल दस्तरखान बिछाया दावत इश्क है।
2: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन।
3: हैंगओवर
2: Only 100.7 FM Rainbow.
4: कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे।
5: दिल चाहता है कि तुमसे एक मुलाकात हो, खामोश तरारे हो और प्यारी सी बात हो, और फिर उस मत भरी रात में तुम्हारी मेरी बात हो।

0: प्यार, इश्क, मोहब्बत और जिंदगी के फलसफों की सौगात होगी हर रोज आपके साथ।
1: तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है।
2: रात 10 बजे रजनीगंधा में सिर्फ और सिर्फ 100.7 FM।

चलिए बात करते हैं कि कैसी मजूर सुल्तानपुरी पहुंचे थे मुंबई यानी उस दौर के बंबई में। तो यह था कि साल 1945 में एक मुशायरे में हिस्सा लेने के लिए मजरू सुल्तानपुरी पहुंच गए थे उस दौर के बंबई। मुशायरे के प्रोग्राम में उनकी शायरी सुनकर मशहूर निर्माता ए आर कारदार साहब बहुत मुतासिर हुए थे और उन्होंने मजरू सुल्तानपुरी से अपनी फिल्म के लिए गीत लिखने की पेशकश की। मजरू साहब ने कारदार साहब की इस पेशकश को स्वीकार नहीं किया क्योंकि उनके अनुसार फिल्मों के लिए गीत लिखना शायद अच्छा नहीं था और उसे वो बेहतर नहीं मानते थे। उसके बाद क्या हुआ चलिए गीत सुनिए, फिल्म अभिमान का है और उसके बाद फिर बातें करता हूं।

जवान अलावदी साहब ने मजदूर सुल्तानपुरी को सलाह दी कि फिल्मों के लिए गीत लिखना कोई बुरी बात नहीं है, गीत लिखने से मिलने वाले धन से वो कुछ पैसे अपने परिवार के खर्च के लिए भेज सकते हैं। फिर क्या था, जिगर मुरादाबादी की सलाह पर मजरू सुल्तानपुरी फिल्म में गीत लिखने के लिए राजी हो गए।

भाई जिगर मुरादाबादी के कहने पर राजी तो हो गए। और एक से बढ़कर एक गीत भी उनकी लेखनी से निकले, जैसे कि मैं लगातार अब तक पहुंचा रहा हूं। संगीतकार नौशाद ने एक धुन सुनाई मजरूह सुल्तानपुरी को और उसे उस धुन पर एक गीत लिखने को कहा। मजरूह साहब ने उस धुन पर गेसू बिखराए बादल आए झूम के गीत की रचना की। मजरू के गीत लिखने के अंदाज से नौशाद साहब काफी मुतासिर हुए थे और उन्हें अपनी नई फिल्म शाहजहां के लिए गीत लिखने की पेशकश कर दी। साल 1946 में आई फिल्म शाहजहां के लिए गीत जब दिल ही टूट गया लिखा, जो काफी मशहूर हुआ था। उसके बाद मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार नौशाद की सुपरहिट जोड़ी बन गई और उस जोड़ी ने अंदाज, साथी, पाकीजा, तांगे वाला, धर्म काटा, गुड्डू जैसी फिल्मों में एक साथ काम किया। फिल्म शाहजहां के बाद महबूब खान की अंदाज और एस फाजिल की मेहंदी जैसी फिल्मों में अपने रचित गीतों की कामयाबी के बाद मजरूह सुल्तानपुरी बतौर गीतकार फिल्म जगत में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो गए थे। और उसके बाद एक से बढ़कर एक गीत, एक बहुत लंबी सी फहरिस्त है। मैंने ना 400 से ज्यादा गीत, एक लंबी सी गीत फहरिस्त है, 4000 से ज्यादा गीत। और उन गीतों में अब के जो दौर के गीत हैं, अगर हम बात करेंगे फिल्म कयामत से कयामत तक के गीत की बात करेंगे और भी नई फिल्मों की बात करेंगे, उन फिल्मों में भी शामिल रहे उनकी लेखनी से निकले हुए गीत, और भी ढेर सारी बातें हैं। कुछ अशआर हैं, कुछ गजलें हैं, कुछ बातें हैं, वो बातें करूंगा मैं एक छोटे से

ब्रेक के बाद। जी यही प्रोग्राम रजनीगंधा का आधा वक्त खत्म होने को आया और मैं कुछ देर के लिए आपसे लूंगा इजाजत और उसके बाद जब वापस लौटूंगा तो फिर मेरे साथ होंगी ढेर सारी बातें मजरूह सुल्तानपुरी साहब की और साथ में जुड़ेंगे उनकी लेखनी से निकले हुए खूबसूरत से गीत। तो बस मैं आपसे कहूंगा आप बने रहिए 100.7 FM रेनबो के साथ, प्रोग्राम रजनीगंधा के साथ, अपने दोस्त जमशेद के साथ। और ये गीत उन्हीं की लेखनी से निकला। मैंने कहा ना पाकिजा में भी उन्होंने खूबसूरत से गीतों की रचना की, उनमें से एक गीत ये भी है।

नमस्कार, सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कानून व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने जनता की विभिन्न शिकायतों के

नमस्कार, सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कानून व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने जनता की विभिन्न शिकायतों के